मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 45 सेकेंड्स हुए हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम शुरू हो रहा है नमस्कार लखनऊ। स्वीकार करें अनुमेहा गुप्ता का सादर अभिवादन।

आइए शुरुआत करते हैं नमस्कार लखनऊ से। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार। हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे

0: बीतते समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम शुरू हो रहा है नमस्कार लखनऊ। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज सुनिए सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर उपेंद्र नाथ सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों की व्यावसायिक खेती आप कर रहे हैं तो नर्सरी कैसे डालें, नर्सरी का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र नाथ सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सब्जियों की नर्सरी के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जो किसान भाई बहन जरूर ध्यान में रखें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, सब्जी का पौधशाला प्रबंधन या नर्सरी प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि आज लगभग 65-70% सब्जियां जो हैं या तो हाइल्डिंग वैरायटी हैं या हाइब्रिड प्रजातियां प्रयोग की जाती हैं, जो 2000 रुपए किलो से लेकर 2 लाख रुपए किलो तक उनका रेट होता है
1: जी।
2: इसलिए यदि सीधे सब्जियों की खेत हम बुआई करते हैं तो हो सकता है कि पौधे जमाव प्रभावित हो जाए या कीड़े बीमारियों से प्रभावित हो जाए तो पौधों का गैप हो जाता है, इसलिए सब्जी प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी चीज है कि यदि 1 हेक्टेयर आपको रोपण करना है, सब्जी तैयार लगानी है, तो उसके लिए अलग अलग जैसे होता है कि अधिक से अधिक

0: 60 से लेकर के और 80 वर्ग मीटर में सब्जी हम तैयार कर लेते हैं, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, तो इनके लिए 60 से 80 वर्ग मीटर जमीन पर्याप्त हो जाती है।
1: अगर एकड़ की बात करें तो
0: यदि प्रति एकड़ की हम बात करें तो एक एकड़ जमीन में यदि सब्जी लगाना हो तो उसके लिए 15 से 25 वर्ग मीटर जमीन आवश्यक होती है, जिसका कि प्रबंधन आसान होता है।
1: डॉक्टर साहब, तकनीकी विकास की बात करें तो आजकल नर्सरी पोर्ट्री के माध्यम से या लो टनल पाली हाउस में या पाली हाउस में भी की जा रही।
0: जी बिल्कुल, आजकल बरसात का जो मौसम होता है तो उसमें सब्जियों को नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए लो टनल से तैयार कर सकते हैं या पाली हाउस में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इनका जो तैयारी का जो प्रोसेस होता है वह लगभग सब एक तरह का ही होता है। एक सामान्य किसान के रूप में देखा जाए तो जो सब्जी पौधशाला जहां हम तैयार करते हैं उसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि सूर्य का प्रकाश वहां मिलता रहे और पानी का साधन वहां पर उपलब्ध हो, दूसरे जल निकास की व्यवस्था भी वहां उचित होनी चाहिए।
1: और स्थान के चुनाव में,
0: स्थान के चुनाव में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मिट्टी हम सब्जी नर्सरी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं वो दोमट या बलि दोमट प्रकार की हो, या यदि हम पाली हाउस में करते हैं, नेट पर करते हैं, तो उसमें जो होता है एक भाग मिट्टी, एक भाग गोबर की खाद और एक भाग रेत मिला करके जो हम जमीन तैयार करते हैं, भूमि तैयार करते हैं, उसमें सब्जी की नर्सरी हम अच्छी प्रकार कर सकते हैं, उसमें नुकसान होने का चांस बहुत ही कम होता है।
1: और जहां पोल्ट्री में तैयार करना है या प्लग में,
0: जो पोल्ट्री में तैयार करना होता है उसके लिए भी तरीका वही होता है कि उसमें जो मिट्टी, बालू और गोबर की खाद का 1:1 हम तैयार करते हैं, या कोकोपीट का भी प्रयोग किया जा रहा है
1: जी,
0: उसके माध्यम से भी हम उसमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
1: कोकोपीट, परकोलाइट, इस तरह की चीजें, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है।
0: वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। जैसे हम सामान नर्सरी करते हैं तो एक वर्ग मीटर के लिए कम से कम 2 किलोग्राम गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं, तो 0.5 किलो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, उससे पौधे जो निकलते हैं वो हेल्दी तैयार होते हैं पौधे हमारे।
1: डॉक्टर साहब, अब पौधशाला की तैयारी यानी नर्सरी की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: नर्सरी की तैयारी में ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के दिनों में कभी कभी होता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण से पौधे नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए जो बेड तैयार किया जाता है वह जैसा मैंने बताया कि 60 से लेकर 80 वर्ग मीटर या 15 से लेकर 25 वर्ग मीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है, उसमें हम जो बेड बनाते हैं वह जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जहां भी नर्सरी हम कर रहे हैं तो 2 क्यारी के बीच में 1 फीट के जो गैप होता है उसमें की मिट्टी निकाल कर 2 बेड पर हम डाल देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जो बेड हमारा तैयार होता है वो लगभग 15-20 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है और बीच में नाली बन जाती है जो ड्रेनेज का काम करती है। साथ ही साथ यदि सिंचाई भी करना हो तो शुरू में तो हम फुहारा सिंचाई करते हैं, लेकिन बाद के समय में जो सिंचाई करना हो तो उसी नाली में हम पानी लगा देते हैं जिससे पूरे बेड को मिल जाती है। दूसरा, बेड का जो तैयारी करें हम तो उसकी जो चौड़ाई हो वो कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, ताकि दोनों सिरा पर बैठ करके हम उसके अंदर के घास पात निकाल सकें, दवाओं का प्रयोग आसानी से कर सकें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों के नर्सरी प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 94155-34704, 94155-34704, 94155-34704।
1: सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना डॉक्टर उपेंद्र नाथ सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता, विषय था सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन की शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, आइए सुने सुविचार।
3: एक बार समुद्र की सभी लहरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आपसी मोह के कारण उन्होंने सोचा कि यदि वे आगे बढ़ेंगी तो बिछड़ जाएंगी, और वियोग से दुख तो होता ही। समुद्र ने काफी समझाने का प्रयास किया। मिलन का आनंद जड़ता में नहीं गति के साथ जुड़ा है, अतः गतिशील बनो। परंतु लहरें अत्यंत भयभीत थीं। तभी कुछ आगे बढ़ती हुई लहरों ने उन्हें समझाया, देखो हम सब भी तो उद्गम से बिछुड़कर अनंत की ओर जा रही हैं। सीमित से असीम

बनने में और अधिक आनंद है। इस रहस्य को सुनकर सूर्य की किरणों ने भी समर्थन प्रकट किया और कहा कि हमें अपने प्रियतम की विशालता में विचरण करते हुए अब अधिक उल्लास प्राप्त हुआ है। फूलों की सुगंध ने भी कहा, पुष्प की गरिमा को विस्मृत करने में मैं बिछवन नहीं पुलकन का अनुभव करती हूँ। समुद्र ने गतिशील होने हेतु मेघों का आह्वान किया और वाष्प बनकर सुदूर यात्रा पर चल पड़ा। किसी ने समुद्र के इस वियोग पर दुख प्रकट किया, परंतु समुद्र ने कहा, भद्रे, यह बिछुड़न नहीं नवीनीकरण है। जीवन इसी का नाम है। गति का परित्याग करने पर तो मरण हाथ रह जाएगा। लहरों की आंखें खुल गईं और वे भी अनंत यात्रा पर बढ़ चली। हेलेन किलर ने कहा है, यह विश्वास हमें बल देता है कि जीवन यात्रा चाहे कितनी ही कठिन हो, उस पर हम बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारे ऊपर, नीचे और अगल बगल में शाश्वत आत्मा के स्रोत हैं। बहुधा जब हृदय शोक से विदीर्ण होता है, तब आत्मिक दृष्टि से हम जैसे जंगल में राह भटके यात्री की तरह भटकते रहते हैं और राह पाने के प्रयत्न में पेड़ों और पत्थरों से टकराते फिरते हैं। मगर रास्ता मिलता है आस्था से, जो हमें कठिनाइयों के जाल से निकालकर उसी खुली सड़क पर पहुंचाता है जिसकी हमें तलाश है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार, जब व्यक्ति सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, उठ बैठता है तो उसका भाग्य भी उठ जाता है, व्यक्ति चलने लगता है तो साथ ही साथ उसका भाग्य भी चलने लगता है। एक बुभुक्षु ने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज, मैं कौन सी साधना करूं? गुरु ने बताया, तुम वेग से दौड़ो और दौड़ने से पहले यह निश्चित कर लो कि मैं अपने लक्ष्य के लिए दौड़ रहा हूं। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या मेरे लिए बैठकर करने की कोई साधना नहीं है? गुरु ने फिर कहा, है क्यों नहीं, बैठकर यह निश्चय करो कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे कहां जाना है। शिष्य ने पूछा, फिर क्या क्रिया की कोई महत्ता नहीं? गुरुदेव ने बताया, क्रिया के बिना तो सब कुछ निरर्थक है। क्रिया से भाव और भाव से क्रिया होती है। यदि तुम गतिशील रहोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ही लगा रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति ही जीवन का सार है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन की शुरुआत प्रभु की वंदना से हो तो पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। आइए करते हैं प्रभु वंदना कार्यक्रम आराधना में।

आराधना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, दरस दिखाओ, आओ प्रभुवर, पथ निहारू साथ ले लो।

कर्म का तो खेल है, लौट के वो आएगा। कर्म का तो खेल है, लौट के वो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा।

मन को निराश न कर, बस कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का तो एहसास कर।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का योग दिवस पर विशेष संदेश।
1: मैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष उत्तर प्रदेश। आने वाले आगामी 21 जून विश्व योग दिवस, जिसकी मान्यता संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयासों से योग आज जन जन तक पहुँचा है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हमारे बढ़ती हुई उम्र के लोगों के लिए यह आह्वान है प्रधानमंत्री जी का कि उन लोगों को विशेष तौर पर स्वस्थ और निरोग रखने के लिए उनको योग से जुड़ना है। और मुझको लगता है कि भारत ही नहीं, संसार का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा देश नहीं, चाहे वो न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो, लंदन की बिग बेन घड़ी हो, चाहे वो पेरिस का एफिल टावर हो, संसार में हमारे माइनॉरिटी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें भी जब हम योग करते हुए लोगों को देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा होता है कि भारत की इस विधा को, योगियों, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, संतों की इस विधा को आज कैसे जन जन ने स्वीकारा है। और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना है उसी को सारी दुनिया से जोड़ा है योग के रूप में। सारा संसार निरोग रखने के लिए अपने शरीर को, ये कोई व्यायाम नहीं है बल्कि अपने शरीर को, मन को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की एक ऐसी विधा है कि जिसका उपयोग करके आप अपने को बहुत ही निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, संपूर्ण संसार के स्वस्थ और निरोग रखने की इस विधा को आप सभी अपनाएं अपने जीवन में और योग करें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ आप सबको योग दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
0: अभी आपने सुना माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का योग दिवस पर विशेष संदेश। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। राम से बड़ा राम का नाम, जिसे जीवन में अपनाने से जीवन सुंदर हो जाता है और जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। तो आइए जपते हैं राम का नाम और सुनते हैं श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर के स्वर और सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरितमानस गान भाग 208। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारत अमेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुःशताधिक द्विसहस्रकोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एम ए चिदम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रभु आराधना के बाद होनी चाहिए कुछ स्वास्थ्य की बात, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है विश्व योग दिवस, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग शक्ति, और जानकारी दे रही है नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और समग्र कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, एक दिन जो हमें योग के महत्व को समझने और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। ये दिन न केवल योग के शारीरिक लाभों के बारे में है बल्कि ये मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी योग के महत्व को रेखांकित करता है। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जिसे जीवन के हर पहलू को संतुलित करने के लिए विकसित किया गया था। ये केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी है। जब हम योग की बात करते हैं तो हम केवल आसनों की बात नहीं करते, ये जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। योग का अभ्यास करने से न केवल हमारे शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ता है बल्कि मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था भी उत्पन्न होती है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब तरह तरह के तनावों, चिंताओं और अनिद्रा से जूझ रहे हैं। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक अपेक्षाएं, ये सब मिलकर हमें मानसिक थकावट और शारीरिक समस्याओं का सामना कराते हैं। ऐसे समय में योग एक प्रभावी उपाय के रूप में सामने आता है। योग हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ये हमारे अंदर एक प्रकार का संतुलन और सुकून लाता है जिससे हम अपने रोजमर्रा के जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। योग के आसन और प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार। ये सभी आसन

0: शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत बनाते हैं, रक्त संचार को बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। इसके अलावा ये हृदय, फेफड़े और आंतों को भी स्वस्थ रखता है। प्राणायाम यानी श्वसन नियंत्रण मानसिक शांति को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये तनाव और चिंता को कम करता है और व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता और संतुलन प्रदान करता है। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में योग की भूमिका और भी बढ़ जाती है। तनाव और चिंता, नींद की समस्याएं और अनियमित जीवन शैली, ये सब मिलकर हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को प्रभावित करते हैं। योग इन समस्याओं से निपटने का एक प्राकृतिक तरीका है। योग न केवल हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। जब हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में एक तरह की ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान। योग का अभ्यास मानसिक स्पष्टता और ध्यान को भी बढ़ाता है। जब हम किसी ध्यान के आसन में बैठते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और खुद को वर्तमान में पूरी तरह से केंद्रित करते हैं। ध्यान से मानसिक तनाव और चिंता को कम किया जा सकता है और ये आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। ध्यान में मस्तिष्क को आराम मिलता है और शरीर की ऊर्जा सही दिशा में प्रभावित होती है, जिससे पूरे दिन की सकारात्मकता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये याद दिलाता है कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें अपनी जड़ें याद दिलाता है। ये भारतीय दर्शन जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को जोड़ता है। यदि हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो ये न केवल हमें शारीरिक रूप से फिट रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी हमें संतुलित बनाता है। इस दिन का उद्देश्य ये भी है कि हम दुनिया भर में योग के लाभों को फैलाएं और इसे एक सार्वभौमिक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दें। विभिन्न देशों में लोग इस दिन योग के अभ्यास में भाग लेते हैं और इसका महत्व समझते हैं। योग कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो केवल एक विशेष धर्म या संस्कृति से जुड़ी हो। ये मानवता की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए एक प्रकृति का उपहार है जो किसी भी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता से परे है। श्रोताओं, इस विश्व योग दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम योग को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करेंगे। चाहे सुबह की ताजगी के साथ कुछ आसन करें, प्राणायाम से श्वास को नियंत्रित करें या ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें। ये सभी योग के अंग हैं जो हमारी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। इस यात्रा में योग हमारा सबसे अच्छा साथी हो सकता है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आपने सुना नीना सोनकर को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब आपको दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रात 11:10 से सुनिए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला हमारे दिल्ली केंद्र से। आज का विषय है संस्कृति। रात 8 से सुनिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 10 हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल का प्रसारण होगा जिसमें आज आप सुने कासगंज और कौशाम्बी जिलों की खबरें। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में सुनिए सेहतनामा। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:50 से और दोपहर 2:45 से। आज आप सुन सकेंगे सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा के गाए अवधि युगल लोकगीत।

दोपहर 1:15 से बहनें सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन। दोपहर 2:30 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज सुनिए हरीश कुमार वर्मा से सफलता की कहानी, केला, अमरूद व तरबूज उत्पादन विषय पर डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5:00। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवा तरंग सुने 5:25 से। शाम 5:10 से सुनिए कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम नई उड़ान का समय रहेगा शाम 5:45 से। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में श्रोता सुनेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान विषय पर यशोवर्धन तिवारी की वार्ता। शाम 6:50 पर कार्यक्रम खेती किसानी में श्रोता सुनेंगे खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कार्यक्रम विज्ञान जगत का समय रहेगा शाम 7:31 से, जिसमें आज आप सुनेंगे करोड़ों बोल्ट का करंट और सूरज से ज्यादा तापमान, क्या है आकाशीय बिजली का सच। इस विषय पर डॉक्टर आलोक सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ से प्रवीण कुमार की भेंट वार्ता। रात 8:15 से श्रोता आनंद ले सकेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम का, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की आवाज में कबीर वाणी। इसके साथ ही समय समय पर हम प्रायोजित कार्यक्रम और फिल्म संगीत के कार्यक्रम प्रसारित करते रहेंगे। इसके साथ ही आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी यहीं समाप्त हुई।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, विविध जानकारियों और रंगों से भरा कार्यक्रम विविधा। सुनिए बस कुछ ही पलों में, प्रेजेंटर हैं अनुमेहा गुप्ता और विषय है विश्व शरणार्थी दिवस।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त अनुमेहा विविधा के आज के अंक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास कभी अपना घर था, आंगन था, अपने खेत थे, अपने सपने थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने कमरे में सो रहा है, उसकी दीवार पर पसंदीदा चित्र लगे हैं, स्कूल की किताबें मेज पर रखी हैं और अगले दिन परीक्षा है, लेकिन रातों रात युद्ध शुरू हो जाता है, सायरन बजते हैं, गोलियों की आवाज़ें आती हैं और परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ता है और कुछ ही घंटों में वह बच्चा नागरिक से शरणार्थी बन जाता है। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। सोचिए इनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी, सिर्फ इतना कि वे एक दिन फिर सुरक्षित जीवन जी सके। 20 जून एक ऐसा दिन जो लाखों करोड़ों लोगों के साहस और धैर्य को सम्मान देने के लिए समर्पित है, जिसे पूरी दुनिया विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाती है।

राष्ट्र के अनुसार शरणार्थी वे लोग हैं जिन्हें अपने देश में जीवन, स्वतंत्रता या सुरक्षा के खतरे के कारण दूसरे देश में शरण लेनी पड़ती है, जबकि प्रवासी बेहतर रोजगार, शिक्षा या जीवन स्तर के लिए स्थान बदल सकता है। लेकिन शरणार्थी के पास ये विकल्प नहीं होता, वह मजबूरी में अपना घर छोड़ता है और भविष्य की अनिश्चितता के अंधेरे में कहीं खो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने बड़े पैमाने पर विस्थापन देखा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस देश के नागरिक हैं, और इसी पृष्ठभूमि में 1950 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR की स्थापना हुई। इसके बाद 1951 में शरणार्थी सम्मेलन अस्तित्व में आया, जिसने तय किया कि शरणार्थियों के अधिकार क्या होंगे, और सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। UNHCR को शरणार्थियों के लिए किए गए कार्यों के कारण 2 बार नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यह सम्मान 1954 और 1981 में दिया गया। इस दिवस का उद्देश्य है शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके संघर्षों के प्रति जागरूकता फैलाना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।

लेकिन सोचने की बात यह है कि इस विस्थापन का आखिर कारण क्या है। युद्ध, गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक उत्पीड़न और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख कारण हैं। सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, म्यांमार जैसे देशों में संघर्षों ने लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया। शरणार्थी शिविर के आंकड़ों से समाचार पत्र पट गए, लेकिन हर संख्या के पीछे एक इंसान है, एक माँ, एक पिता, एक बच्चा, एक सपना। इन शिविरों में जीवन आसान नहीं होता। सीमित भोजन, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार की कठिनाइयाँ, फिर भी लाखों लोग उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते।

शरणार्थी संकट का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, कई अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं, कई मानसिक आघात का सामना करते हैं। यूनिसेफ और अनेक संस्थाएं इन बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। शरणार्थी महिलाओं को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक निर्भरता, बच्चों की जिम्मेदारी, फिर भी अनेक महिलाएं कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभालती हैं और नई शुरुआत करती हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त दुनिया भर में शरणार्थियों की सहायता करता है, जैसे भोजन और आश्रय उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, कानूनी सहायता प्रदान करना, पुनर्वास कार्यक्रम चलाना। दोस्तों, भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। इतिहास में भारत ने अनेक समुदायों को आश्रय भी दिया है, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में हम क्या अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं? हमें चाहिए कि इन लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित करें, भेदभाव से बचें, जागरूकता फैलाएं, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दें, बच्चों की शिक्षा का समर्थन दें, साथ ही सम्मान देना न भूलें, क्योंकि शरणार्थी केवल सहायता के पात्र नहीं बल्कि ये साहस और धैर्य की जीवंत मिसाल हैं। दोस्तों, विविधा के आज के अंक में बस इतना ही। अब मुझे यानी अनुमेहा को दे अनुमति और आप सुनते रहिए आकाश।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम विविधा। ये
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
3: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी

0: के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17

0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रूपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: जो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है, अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
1: मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की बैठक की और प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरीघाट ओडियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना

0: ना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा कल वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की वर्षा को तो कहीं पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आज सुबह, जिसे लेकर आ रही हैं प्रेजेंटर अनुमेहा गुप्ता और प्रीति श्रीवास्तव।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग लखनऊ। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम

0: आज सुबह में मैं आपकी रेडियो दोस्त अनुमेहा
1: और मैं प्रीति श्रीवास्तव
0: और हम करते हैं आपका स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यूं तो रेडियो पर हम बात करते हैं आवाज की, लेकिन आज का सुविचार है मौन।
1: दोस्तों, मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। मन में कोई विचार लाने से पहले, वाणी से कुछ कहने से पहले, कोई क्रिया करने से पहले अगर इंसान कुछ पल मौन में जाए तो विचार नियम के जादू को समझ पाएगा।
0: इसलिए दोस्तों, कुछ देर मौन में जरूर बिताइए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। दोस्तों, स्वस्थ रहना हम सभी का अधिकार है, पर उसके लिए हमें ही कुछ कर्तव्य भी करने पड़ते हैं।
1: और अनुमेहा, वो कर्तव्यों में सबसे पहले आता है व्यायाम, सही आहार और सही दिनचर्या। और कल 21 जून को योग दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। इसी अवसर पर हम आपको सुनवाते हैं श्री रंजन कुमार, प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश से सुमोना पांडे की भेंट वार्ता।
2: स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और जब हम कोई भी चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं वो हमारे कितने अनुरूप है इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तो आज इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री रंजन कुमार जी। रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हम जानना चाहेंगे कि आयुष विभाग इसमें किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो बुलाने के लिए
2: जी।
3: मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये नया विभाग जब से खुला है, इसमें राज्य सरकार के स्तर पे प्रयास हो रहे हैं कि एक्सेस टू फैसिलिटी, जो क्वालिटी सर्विस बढ़े। तो आप सुन के हर्ष होगा कि अभी हम लगभग 4114 हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंच गए हैं, जिसमें 19 मेडिकल कॉलेज है। ये आयुष चिकित्सा पद्धति जो है होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, सोया, रिग्पा, योगा, नेचुरलपैथी सभी शामिल है इसमें,
2: यूनानी
3: सभी शामिल है। और उसमें सभी तरह के अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल भी हैं, 4 बेड के भी हैं, 15 बेड, 25 बेड, 50 बेड के भी, इंटीग्रेटेड अस्पताल 50 बेड के, एक नई इनोवेशन है जो भारत सरकार के आयुष मिशन के अंतर्गत ये चालू की गई, जिसमें तीनों विधा एक साथ वहाँ पे रहते हैं
2: जी।
3: साथ ही साथ हमारे योगा वेलनेस सेंटर लगभग 225 है, और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासकर जो गैर संचारी रोग हैं, खासकर जो आधुनिक जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनके उचित परामर्श देना, उनको आहार के बारे में बताना, उनको चिकित्सा भी देना, और वहाँ पे हर्बल गार्डन भी हम लोग उपलब्ध कराए, जिससे कि लोगों को समझ में आया फर्स्ट हैंड कि किस प्रकार से आयुष चिकित्सा पद्धति नेचर से जुड़ी हुई है
2: जी। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कितना ऑर्गेनिक है, आजकल ये जो टर्म चल रहा है, तो हमें ये जरूरत है कि हमें इस तरह की सुविधाएं आपके सारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं। ये आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी,
3: सोया रिग्पा भी।
2: अच्छा, तो इन सब का समावेश है आयुष विभाग में, और आप बता सकते हैं कि खास तौर पे किस तरह से ये युवाओं के लिए प्रभावी हो रहा है।
3: देखिए, आज की युवा जो है उसका स्क्रीन टाइम बढ़ गया
2: जी,
3: और वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने में वो अपने मोबाइल पे लगा रहता है, तो उससे उसकी मानसिक तनाव बढ़ रही है, नींद कम हो रही है, खाना भी अनिश्चित है, कब खाएगा नहीं खाएगा। हम लोग भी एज ए गार्जियन परेशान रहते हैं, बच्चे को प्रेरित करते रहते हैं कि खाना जरूर खा लो। इस समय सबसे जरूरी है योगा का। योग में आप देखेंगे तो क्या है कि नियमित प्राणायाम, जिसमें आप अपनी चीजों को समझते हैं कि चक्र कहाँ पे है, कुंडली कहाँ पे है, उसके एक तरीके होते हैं, उसके बाद ध्यान करना, जिससे कि आप अपने बारे में अवेयर हो कि अगर आप मोबाइल पे पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो आपके शरीर का क्या हो रहा है
2: जी।
3: ये पूरा समझना, अपने आप को सेल्फ अवेयर होना, आपका उद्देश्य क्या है जीवन में, आप चाहते क्या है, किस उम्र में क्या करना चाहिए। उसके बाद आसन हैं कई, जिसके अंतर्गत आपके जो विभिन्न हमारी प्रक्रियाएं हैं शरीर का, ऑटोमेटिकली एक नेचुरल प्रक्रिया है शरीर को स्वस्थ रखने का, उसको एक्टिवेट करने का योग सबसे बहुत ही प्रभावी माध्यम है। साथ ही साथ ये जितनी चिकित्सा पद्धति अभी बात हुई उन सभी को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है
2: जी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि वृद्ध जनों के लिए भी ये उतना ही लाभदायक है, और सभी के लिए ये लाभदायक,

0: तो किस तरह से वो ये सुविधा ले सकते हैं अगर वो इन अस्पतालों में लेना चाहें तो?
1: तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस बार का योगा का थीम भी है
0: जी
1: कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो इसमें जो वृद्धावस्था है उसमें सबसे शरीर की जो एक्टिविटी है कम हो जाती है
0: तंत्रिकाएं भी
1: और
0: कमजोर।
1: सामाजिक प्रतिभागी कम हो जाता है। तो
0: जी
1: योगा जो है आपके शारीरिक सक्रियता बढ़ाता है, मानसिक संतुलन अवसाद कम करता है, आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व बनते हैं।
0: जी
1: तो उसके लिए सभी जगह हमारे काउंसलिंग भी है, उनके लिए चिकित्सा सेवा भी है और सब तरह की सुविधाएं।
0: तो क्या वो वहां पे रहकर भी अपना उपचार करा सकते हैं? क्या ऐसी
1: हमारे
0: फैसिलिटीज भी हैं?
1: अस्पतालों में आईपीडी की भी सुविधा है।
0: जी
1: हम लोग एक कारुण्य योजना भी चला रहे हैं
0: अच्छा।
1: जिसमें घर पे जाके इनकी जो आइडेंटिफाइड लिस्ट हैं उनको हम लोग कई तरह की सुविधा दे रहे हैं।
0: जी तो अगर इसमें कोई जाना चाहे, लखनऊ की ही बात करें, तो कहाँ कहाँ सेंटर्स
1: नौ
0: हैं?
1: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है,
0: जी
1: एक 50 बेड का जो सेंटर है वो हमारा कली पश्चिम में है,
0: जी
1: तुड़ियागंज में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, उसी तरह होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज सभी लखनऊ में है।
0: हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष तौर पे योग दिवस पर? क्योंकि हम योग दिवस इसी उद्देश्य से तो मनाते हैं कि उनको जागरूक करें और इसके लिए मोटिवेट करें।
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा योग को,
0: जी
1: इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए थे और पूरा विश्व आधुनिक जीवन शैली से जो गलत चीजें हो रही है, मधुमेह की संख्या बढ़ रही है,
0: जी
1: मानसिक अवसाद बढ़ रहा है, तो सभी लोग स्वस्थ जीवन शैली की ओर जाना चाह रहे थे। तो जब प्रस्ताव गया तो 177 देशों ने इसका समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया। ये हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का सम्मान भी है, साथ ही जो वसुधैव कुटुंबकम का भावना का भी एक उत्सव है। हम यही प्रेरित करेंगे, पूरा विश्व इस बात को मान लिया है कि योगा जो है उससे रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो हम सबको अपील करेंगे कि अपने जीवन से 20-30 मिनट रोज जरूर निकालें योगा के लिए और साथ ही साथ अपने परिवार को भी प्रेरित करें, अपने समाज को भी प्रेरित करें और संकल्प लें कि स्वस्थ शरीर और शांत मन और सशक्त राष्ट्र के लिए योगा को अभिन्न हिस्सा बनाएं।
0: जी बिल्कुल। और इंटरनेशनल योगा डे जो मनाते हैं 21 जून को, उसमें यही उद्देश्य रहता है प्रधानमंत्री जी का भी और हम सभी का, जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने कहा, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने आसपास भी आप इस बात को जरूर फैलाएं कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप एक अच्छा जीवन, एक सफल जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्री रंजन कुमार जी, और आपका बहुत बहुत आभार रंजन जी कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं से बात की, उनको ये संदेश दिया, और हमें उम्मीद है कि हर व्यक्ति इससे जरूर प्रेरित होगा। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, मन हो या ना हो, आपका मन लगाइए, ख्याली योगा ना करिएगा, योग करिए, व्यायाम करिए, कुछ नहीं तो हास्य योग करिए, हंसिए।
1: और कल है 21 जून योग दिवस। योग दिवस एक कोशिश है कि सभी योग करें और निरोग रहें।
0: इसीलिए हम अपने सभी श्रोताओं से ज़रूर कहते हैं कि आप इसके लिए अपना 15 मिनट का समय निकालें। जैसा कि मैंने कहा कि ख्याली में नहीं, वास्तव में अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, डांस करें, मूवमेंट करें।
1: और योग और जीवन विषय, इस विषय पर आज आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुलरतन सिंह से रमनप्रीत सिंह की भेंट वार्ता आपको हम सुनवाते हैं।
2: कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमनप्रीत सिंह। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी सुकून देता है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं योग की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुलरतन सिंह, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सर। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, कोई खास कारण है इस दिन मनाने का?
3: जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि 21 जून जो 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है, और 21 जून इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एक समर सोलिटाइस जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो सबसे बड़ा दिन होता है ये, और इसके बाद से ही ये आदान काल की ऋतु है आयुर्वेद के अनुसार, उसमें होता है। उसके बाद से यहीं से आपका विसर्ग काल शुरू होता है, जहां पर हमारी शारीरिक क्षमताएं बढ़ना शुरू होती हैं। इससे पहले आदान काल में हमारी शारीरिक क्षमताओं का ह्रास होता रहता है, और इसी से हमारा यहां से विसर्ग काल जो स्टार्ट होता है, वो उससे हमारी शक्तियों का विस्तार होता है। और इसके अलावा यह भी माना जाता है पौराणिक उससे, शिव जी जो हमारे आदि योगी थे, उन्होंने ही इसी काल में जो है पहली शिक्षा योग की देना प्रारंभ किया था।
2: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि आखिर योग है क्या?
3: योग एक्चुअली इसलिए बनाया गया था ताकि आयुर्वेद में और योग एक ही चीज है, और उन्होंने उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये साधन लिया गया था। इसमें अंतिम जो लक्ष्य था वो मोक्ष था, और उसके बीच में कई अंग आते हैं योग के, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें कि हम मुख्यतः योग के उसमें आसन को ही देखते हैं। जो हम देखते भी हैं कि शारीरिक जितनी भी पोज बनाए जाते हैं उनको आसन के अंडर में लेते हैं। योग उससे काफी अलग है और काफी बड़ा और काफी विस्तार रूप में है, जिसमें कि ये काफी अंग आते हैं, और यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा फिजिकल, मेंटल, सोशल और इसके साथ स्पिरिचुअल सारी वेलबींग्स को हम ग्रहण करते हैं। इसमें ये भी बताना चाहूँगा, योग का शाब्दिक अर्थ जैसे होता है जुड़ना या संयोग होना, जैसे कि आत्मा का परमात्मा में संयोग होना, जिसे मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है, वो उसका ही अंतिम लक्ष्य है। और परिभाषाएं दी गई हैं जैसे भगवद गीता में कि योग समत्वम योगम उच्यते, यानी सम की भावना प्राप्त करना, यानी कि शारीरिक मानसिक उसमें समता आना, यानी कि कंट्रोल्ड और बैलेंस फॉर्म में होना। और इसके अलावा एक और परिभाषा है योगस चित्तवृत्ति निरोधा, यानी योग के द्वारा चित्त यानी मन, उसकी वृत्तियां यानी कि जो उसके सेंसरी ऑर्गन के जो विषय हैं उनको निरोध करना, यानी कि उनको रोकना या कंट्रोल करना, ताकि जो मन की लोलुपता है या लालच है वो कंट्रोल रहे, और आदमी जो है अपनी इंद्रियों को इंट्रोवर्ट कर सके, जिससे कि अपनी सारी शक्तियों को जो अपनी इंद्रियों के द्वारा उसका ह्रास हो रहा है, वो इंद्रियों के विषयों में ह्रास ना होकर अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने में

0: मिले,
1: संयम मतलब उस चीज
0: जी हाँ। जी
1: आम इंसान के लिए योगासन और समान एक्सरसाइज में
0: जी
1: क्या अंतर है?
0: देखिए जो एक्सरसाइज है या व्यायाम है जो मुख्यतः शारीरिक रूप से ही लेवल पर है, यानी कि सिर्फ जो हम अपनी एक ऊर्जा समाप्त करके मांसपेशियों को जो है हम डेवलप करते हैं वहीं तक जो है व्यायाम का रोल है, पर योग जो है वो सिर्फ शारीरिक ना होकर जैसे मैंने पहले ही बताया शारीरिक मानसिक सामाजिक और स्पिरिचुअल लेवल पे भी उसका काम है। जब हम यम नियम शुरू करते हैं, यम नियम वेज वो चीज़ें हैं जो हमें कहती हैं कि उसके पांच पांच अंग हैं यम के, जैसे कि सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अस्ते, यानी कि आपको अपनी इंद्रियों में लोलुपता नहीं रखनी है। ये नहीं होना है कि अगर आपके पास शक्ति आ गई है तो आप उसका अनकंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करें, तो वो वहीं पर आपको जो है मानसिक जो है आपको बैलेंस देता है ताकि आप उसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों में करें और उसकी एनर्जी को कंजर्व करें। और क्या कहते हैं, इससे हमें सिर्फ शारीरिक लाभ ना होकर मानसिक लाभ भी प्राप्त होता है जो हमें एंटी स्ट्रेस जैसे देना जाता है। इसमें जब हम प्राणायाम जानते हैं, प्राणायाम भी सुनते हैं हम काफ़ी शब्द, प्राणायाम भी इसी का अंग है योग का, आसन के बाद आता है जो जिसके द्वारा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉर्म में देखते हैं, उसके द्वारा हम जो है अपने मन को कंट्रोल करते हैं और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से हम जो है मानसिक लाभ प्राप्त करते हैं, एंटी स्ट्रेस फील करते हैं। उसके अलावा जो मॉरल वैल्यूज़ भी इससे जुड़ी हुई हैं उससे जो हम सामाजिक लाभ भी पाते हैं, यानी हम जो सोशल वेलबींग है वो भी पाते हैं, क्योंकि हम जब हमें एक पर्टिकुलर एक रीजन में किया जाता है कि आप ये चीज़ें नहीं करनी है तभी हम योग के लिए अग्रसर होंगे, तो वो हमें सामाजिक जो है स्तर पर वेलबींग प्रस्तुत करता है। और अंतिम लक्ष्य जो स्पिरिचुअल है वो पहले ही बताया कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, यानी कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, आत्मा का संयोग होना परमात्मा से, वही जो है अंतिम लक्ष्य जो प्राप्त करना है वो भी स्पिरिचुअल है। इसलिए ये सिर्फ व्यायाम जो है सिर्फ शारीरिक लेवल तक ही है।
1: डॉक्टर सिंह, हमारे बहुत से श्रोता हैं जो बुजुर्ग हैं
0: जी,
1: तो उनमें बीपी डायबिटीज, वैसे तो आजकल ये किसी भी उम्र में लोगों को हो रहा है, लेकिन अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बीपी डायबिटीज और ज्वाइंट पेन की एक आम बात होती जा रही
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: तो खास उनके लिए कुछ ऐसा योगासन है?
0: मैंने कहा ना कि जो आसन वाले हैं वो उनके साथ प्राणायाम का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें ये सारे इनमें लाभ मिलते हैं। जैसे कि हम आसन में मयूर आसन लेते हैं, मयूर आसन जो है मधुमेह में काफी उपयोगी है, लेकिन ये है कि उसको हाथ के बल जो है खड़े होने के लिए सक्षम ताकत चाहिए होती है, इसलिए अगर जिनसे मयूर आसन नहीं हो सकता वो मॉडिफाइड वे में भी कर सकते हैं, किसी कुर्सी या किसी मेज का सहारा लेकर भी उसको कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेकर भी कर सकते हैं। और धनुरासन है, यानी कि एक धनुराकृति बनानी होती है वो कर सकते हैं, या फिर सूर्य नमस्कार जो काफी आजकल पॉपुलर है, सूर्य नमस्कार जिसमें 12 अंग होते हैं वो भी किए जा सकते हैं।
1: लेकिन जिनको जॉइंट्स पेन है क्या उनके लिए सूर्य नमस्कार करना सेफ है?
0: सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही कहा जिनको ये देखते हुए कि अगर जिनको ज्यादा बॉडी एक है, ज्यादा दिक्कत है, जैसे स्लिप डिस्क वगैरह है, या ऐसी कंडीशन में ना करें, अगर हल्का फुल्का बैक एक है तो उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
1: ठीक।
0: और ये प्रिकॉशन लेते हुए करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक कितना आपको झुकना है, कितना क्या करना है, और अगर हो सके तो किसी योग प्रैक्टिशनर के सर्विलेंस में करें।
1: सामान्यता यह धारणा रही है कि योग सुबह ही करना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ समय को लेकर भी जो भ्रम है इस बारे में थोड़ा सा क्लियर करें?
0: एक्चुअली क्या है, दो काल बताए गए हैं, शाम और सुबह, लेकिन सबसे जो प्रातः काल है वो सबसे उत्तम समय बताया गया है योग के लिए, क्योंकि ऐसा कहा गया जैसे हम लोगों के में आपने वर्ड सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त काल जो होता है उसमें करने से लाभ अधिक मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जिसमें जब अभी सूर्य की उदय नहीं हुआ होता है, वहाँ पर ऐसा होता है कि उस समय कुछ सूर्य की ऐसी रेज आती हैं जो हमारे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं, यानी कि जो हमें अध्यात्म या ध्यान या धारणा या समाधि जैसी प्रक्रियाओं को करने में योग की हमें बहुत आसानी मिलती है, क्योंकि उस समय हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो कम होता है जो स्ट्रेस हार्मोन है।
1: तो मतलब सुबह के समय योग करना ज़्यादा बेहतर है,
0: सबसे अधिक उपयोगी है। अगर सुबह नहीं मिल पाता है तो आप शाम का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त यही रहेगा सुबह के समय अपनी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप ये कार्य कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, मोबाइल टीवी लैपटॉप इन सब की वजह से, तो उनकी जो आंखों पर एक प्रेशर है और एक मेंटल कॉन्सेंट्रेशन की समस्या जो आ रही है बच्चों, इस विषय पर आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि योग कैसे उनकी सहायता कर सकता है?
0: आयुर्वेद में एक षटकर्म शब्द आता है, उसमें एक त्राटक प्रक्रिया है, त्राटक में एक से डेढ़ फीट की दूरी पे मोमबत्ती जला के रख दी जाती है, या फिर कोई और भी चीज जो है वस्तु रख सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती ज्यादा उपयोगी है, उसको रख के एक से डेढ़ फीट की दूरी पर बच्चे को बैठने के लिए बोले और इतना मोमबत्ती जो है आंखों के समांतर में रहे और उसको तब तक

0: देखते रहें जब तक कि आंखों से अश्रु न बहने लगे, यानी आंसू न आने लगे, तब तक देखते रहें। आंसू आने के बाद धीरे धीरे जो है आंखें अपनी बंद कर लें, और फिर उसके बाद आंसू पहुंचने के बाद फिर से वो प्रक्रिया 3 से 4-5 बार कर सकते हैं, जिससे कि नेत्र ज्योति जो है वो बढ़ती है, प्लस कंसंट्रेशन जो है वो बच्चों में बढ़ता है। और ये प्रक्रिया 3 से 5 दिन में, लेकिन 8 से 10 साल के बच्चों के लिए ही ये ज्यादा उपयोगी है।
1: जी, समय की कमी है इस वजह से हम बहुत लंबी बातचीत को नहीं ले जाएंगे। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस योग दिवस के उपलक्ष्य पर?
0: देखिए, मेरा संदेश जो है दर्शकों को यही होगा कि योग मात्र आसन नहीं है, योग एक संपूर्ण जो है शैली है, और उसमें सिर्फ शारीरिक ही लाभ नहीं प्राप्त होते हैं, उसमें मैंने जैसे पहले ही बताया शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पे और आध्यात्मिक लेवल पे भी उनका उपयोग है। लेकिन वो तभी हैं जब आप उन्हें किसी की योगा प्रैक्टिशनर से ज्ञान लेके अर्जित करके ही अगर उसको करें। सिर्फ आसन से करना है तो हमें ये जरूरी है कि आज के युग में जो है लोग एक्सरसाइज और योगा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो है अगर उसका हम पूर्ण संपूर्ण लाभ चाहते हैं तो हमें उसके सारे अंग, जो 8 अंग हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें सिर्फ शारीरिक ना ही मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम बेहद रोचक लगा होगा, आप अपने जीवन में योग को उतारेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आपको रमनप्रीत सिंह का नमस्कार।
2: अभी आपने सुना योग और जीवन, इस विषय पर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुलरतन सिंह से रमनप्रीत सिंह की भेंट वार्ता।

0: दोस्तों, बात योगा की हो रही है तो योगा करते समय अपने शरीर की अवश्य सुने और उसी के अनुसार योगा भी करें। साथ ही मौसम का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे आजकल बेहद गर्मी है तो व्यायाम का समय थोड़ा और पहले करें और पानी खूब पिए।
1: और अब आपने मौसम की बात की है तो आइए जान लें कि अनुमेह आज के मौसम का हाल मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानी जी से।
0: बिल्कुल।

0: बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
1: जी गुड मॉर्निंग।
0: सर, हमारे श्रोता और हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में।
1: जी मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। हालांकि हल्की फुल्की बादलों की आवाज आ ही रहेगी, लेकिन जैसा कि गर्म पछुआ हवाओं का दौर जारी है तो तापमान कहीं ना कहीं
0: जी
1: गर्मी का सबब बना रहेगा। और आने वाले दिनों में एक आध दो दिन कल परसों थोड़ा हीट वेव का भी अलर्ट है। बाकी प्रदेश के जो सदर्न पोर्शन है वहां पे हीट वेव का अलर्ट आने वाले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर आने वाले 4-5 दिन तक अभी रहेगा। तो कुल मिलाकर अभी हम कहें तो गर्मी का सबब आने वाले दिनों के लिए बना रहेगा।
0: जी सर, आपने हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दी और हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार सर। दोस्तों, समय हो चला है कि हम इस कार्यक्रम को वाइंड अप करें। तो आपके लिए बस इतना ही कहना है कि कल है योगा डे, तो योगा डे पे आप सब योग जरूर करें, व्यायाम करें और प्रयास करें कि आप स्वस्थ रहें।
2: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, धूप से बचिए और अपना सिर वर ढककर चलिए। और इसी के साथ दीजिए हमें और अनुमेहा को
0: इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आज सुबह। इसके साथ ही आज का नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44

0: 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India now.
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है।

0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
3: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashvani News.
2: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45

0: records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. But now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में BJP के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैनुल अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50 लाख किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत

0: हर नीत 50,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अवलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूले
4: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के मेल और पत्र पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। और आज इस कार्यक्रम में मैं अनुमेहा गुप्ता आपके साथ हूँ। शुरू करते हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो सबसे पहले नोट करें हमारा ईमेल आईडी, ताकि आप भेज सके हमें ईमेल और लिख सके अपने पसंद के गीत जो आप रेडियो पर सुनना चाहते हैं। हमारा मेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। एक बार फिर से नोट करें apkepatraapkemail@gmail.com।

श्रोताओं, हमारे पास लगातार ईमेल आ रही हैं और सबसे पहला ईमेल जो हमने लिया है वो हमें लिख भेजा है विजय पाल यादव जी ने। ये लिखते हैं, जीवन तब सरल होगा जब आप समझ जाएंगे कि क्या बदलना है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ देना है। आदरणीय बहन जी, सादर चरण स्पर्श। आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसमें नमस्ते लखनऊ के कार्यक्रम नियमित सुनता हूँ। आज का स्वास्थ्य चर्चा विविधा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। आपसे निवेदन है कि हम सभी को फिल्म बड़े घर की बेटी

ये गीत इन्होंने फरमाइश लिख भेजी है कि ये गीत सुनना चाहते हैं, और कई मेल ऐसे भी हैं जिसमें लोगों ने फरमाइश की है कि बस हमारा नाम शामिल कर दें और कोई भी गीत हमें सुनवा दें। तो वो ईमेल हमें लिख भेजा है रश्मि पांड्या जरना भारत कुमार राजकोट गुजरात से, और एक ईमेल हम और शामिल करेंगे इनके साथ ही, सतेंद्र चंचोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया ग्राम पजौनिया जिला जालौन से। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म बड़े घर की बेटी का ये गीत।

तो लक्ष्मण की भक्ति को संसार गीतों में गा।

अगली मेल हमें लिख भेजा है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर ने मेरठ कैंट से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म 16वां साल का गीत। और इसके साथ ही मोहम्मद वकार जी की मेल आई है हमारे पास मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, ये लिखते हैं हमें भी शामिल कर लीजिए, धन्यवाद। और एक और मेल हम इसमें शामिल करेंगे जो लिख भेजा है भागवत वर्मा जी ने। भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा जी की मेल आई हुई है जो किसी भी गीत के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
6: दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, और ये मेल हमारे पास आई है मास्टर अशोक कुमार वर्मा जी ने लिख भेजी है, जिला खरखौद सनावद मध्य प्रदेश से। और श्रोताओं, आपसे एक बात हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपकी एक मेल भी हमें मिल जाती है और हम उस पर बिल्कुल उस पर गौर फरमाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी मेल शामिल हो, बजाय इसके कि आप दसियों मेल एक साथ एक ही फरमाइश और एक ही नाम से भेजते रहें, ये अच्छी बात नहीं। ताकि जिससे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे श्रोताओं के मेल नीचे चले जाते हैं या उनकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाती, तो आप सबका ध्यान रखें और केवल एक मेल भेजें। अशोक वर्मा जी की फरमाइश हम लेते हैं और ये मेल हमें इन्होंने लिख भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, ये सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का ये गीत।

अगली मेल हमें लिख भेजा है अनवार साबरी जी ने। ये लिखते हैं, प्रसारक जी प्यार भरा आदाब नमस्कार, हमें किसी भी गीत में शामिल करें। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, ज़रीफ अंसारी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसके साथ ही एक और मेल है, मुकेश कश्यप जी ने लिख भेजा है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरे

सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये इन्होंने कहा है कि हमें किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें। और आज की जो फरमाइश है वो हमें लिख भेजी है राम खिलावन कुरसठ जी ने। ये लिखते हैं, ये सभी आकाशवाणी लखनऊ को सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छा लगता है। राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव, राम प्रसाद, देवी शंकर शुक्ला, कृष्ण कुमार कुरसठ, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म साजन से कोई भी गीत। तो आइए सुनते हैं साजन फिल्म का ये गीत।

0: फिल्म साजन के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त अनुमेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
2: कासगंज जनपद में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। जनपद के सभी विकास खंडों नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर जन चौपाल संगोष्ठियां लाभार्थी संपर्क अभियान तथा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उज्ज्वला योजना स्वच्छ भारत मिशन डिजिटल इंडिया तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जबकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद कासगंज में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक योगाभ्यास के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष सप्ताह के दौरान जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों तहसील

0: परिसरों, विकास भवन, विकास खंड कार्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग सप्ताह का भव्य समापन 21 जून को नवीन पुलिस लाइन कासगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस बारे में कासगंज की साहित्यकार और समाज सेवी पारुल वंसल ने बताया।
1: योग हमारे ऋषि मुनियों की वह अमूल्य देन है जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने का काम करता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहे। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी है और मानवता के कल्याण का संदेश।
0: कासगंज जनपद में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडी परिसर में 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सोरों, साहबर, गंज डुंडवारा, अमापुर और सिरपुरा में 1-1 केंद्र तथा पटियाली में 2 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। जनपद में आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID अभियान 2026 के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीला रानी ने बताया कि आगामी 28 जून को जनपद के 336 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी।
2: कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए तहसील सिराथू, चायल और मंजनपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलों पर उप निबंधक कार्यालय की स्थापना होने से किसानों और व्यापारियों को अपनी जमीनों को बेचने और खरीदने में समय की बचत होगी। लोगों को कार्यालय में बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध होगी। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू तहसील परिसर में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। 213 स्वयं सहायता समूहों को 63,90,000 और 338 स्वयं सहायक समूहों को 5,07,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित जन जागरूकता 56 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 7 कुंतल से अधिक प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया गया। कौशाम्बी जिले में 12 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत संकल्प ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव और भरोसा दिलाता है। जिले की प्रभारी मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने कहा कि 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव, जो 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताता है। 2019 से पहले बड़ा बहुमत देकर जनता ने मोहर लगाई और फिर 2024 में तीसरी बार जनता ने चुनकर साफ कर दिया कि देश में सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के हित में किसान सम्मान निधि जारी किया। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दी गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर स्वच्छता की नई क्रांति लाई गई। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से 74,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक ऋण बांटे गए। पीएम विश्वकर्मा योजना से 30,00,000 लोगों को लाभ पहुंचाया गया। धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसानों के

कृषि योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक 10 लाख करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी छूट दी गई। माताएं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। बेटियों की सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। कौशाम्बी जिले में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से प्रारंभ कर दी गई है। कौशाम्बी जिले में साइबर सेल द्वारा 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ऐप के माध्यम से चोरी और गायब हुए 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया गया। लोगों को जागरूक किया गया। बैंक खातों से गायब धनराशि 20 लाख से अधिक बरामद कर बैंक खातों में वापस किया गया। मिशन शक्ति योजना के तहत स्कूल

0: के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: आप सुन रहे थे जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सलाम कबूल फरमाए। सामिन सेहतनामा के एक नए एपिसोड के साथ आप सभी का खैर मकदम है। सामिन, कभी सोचा है आपने कि सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, फिर भागते हुए अपने काम पर जाते हैं। कई बार नाश्ता भी छूट जाता है और लंच तो दोपहर के बजाय शाम के तकरीबन 3-4-5 बजे ही होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो नींद के वक्त नींद कहाँ? ये है हमारी तर्ज ज़िंदगी जो कितना बदल चुकी है, और इस बदली हुई तर्ज ज़िंदगी का असर कहाँ दिखता है? यकीनन हमारी सेहत पर। कभी कमर दर्द, माइग्रेन, शुगर, बीपी, हत्ता की 30 की उम्र में 60 वाली बीमारियाँ, फिर भी हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं। इसीलिए आज के सेहतनामे की खसूसी थीम है हमारी तर्ज ज़िंदगी और सेहत। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड ENT, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
1: आदाब, अस्सलामु अलैकुम।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल इंटरनेशनल योगा डे है, योगा की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है?
2: योगा को अगर आज की जो आपने बात की जदीद तर्ज ज़िंदगी
0: जी,
2: जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उसमें तो अब योगा को अपनाना हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई।
0: बिल्कुल,
2: योगा को एज एन एक्सरसाइज लें, अपने दिमागी सुकून के लिए लें, या इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर हम अपने आप को योगा को दें तो उसके तमाम फ़ायदे हैं
0: जी।
2: और अगर एक्सरसाइज के तौर पर देखें तो ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमें तमाम जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके रिस्क को कम करता है, और जिनको है उनके मेडिसिन की डिपेंडेंसी को कम करता है
0: जी।
2: जो ज़रूरी चीज़ है कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक, क्योंकि योगा जो है वो एक्सरसाइज अपने शरीर को दिमाग से जोड़ने का भी काम करता
0: बिल्कुल,
2: है।
0: बिल्कुल,
2: सुकून से करने वाली चीज़ है
0: जी।
2: देखा जाए तो ये सबसे सस्ती एक्सरसाइज है, ना कहीं आपको जाना है, एक छोटा सा योगा मैट लिया,
0: बैठ गए
2: किसी कोने में, डाल दिया और अपने योगा किया,
0: बिल्कुल
2: बहुत अच्छी चीज़ है।
0: अच्छा, देखते हुए डॉक्टर साहब, हुकूमत हिंद ने इसको प्रमोट किया है और अच्छा किया है, क्योंकि हमने देखा है हमारी ऐसी तर्ज ज़िंदगी हो गई है कि हम घर में रहें, बाहर रहें, गर्मी के मौसम में एसी में रह रहे हैं और गाड़ी में है तो एसी चल रही है, मेहनत का कोई काम रह नहीं गया, पसीना निकल नहीं रहा, तो हुकूमत हिंद ने जो इसको एक इनिशिएटिव जो लिया है वो बेहद ज़बरदस्त थे और मेरे ख्याल से सबके लिए बेहतर होगा। आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस पे इसका रोल किस तरह से पड़ता है? हाँ, आपकी बात वो अधूरी रह गई थी डॉक्टर साहब।
2: नहीं, मेंटल स्ट्रेस जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने या कहना चाहिए कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने हमें रफ्तार तो दी है जिंदगी को,
0: बिल्कुल
2: बहुत आसानियां भी बहुत पैदा करी है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो है मेंटल स्ट्रेस। इंसान स्ट्रेस में चला गया,
0: बिल्कुल
2: इंसान ज़हनी तौर पे थक जाता है दिन भर काम करके, तो उसमें जो ये आप आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट जो एक्सरसाइज को अपने देते हैं या योगा को देते हैं, तो उसमें जो एक सुकून ज़िंदगी को आपके आपके जहन को मिलता है योगा से, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर जो साइंटिफिक तौर से प्रूफ है कि हमारे जो शरीर में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं,
0: बिल्कुल,
2: तो योगा करने से एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है
0: जी जी जी,
2: तो जो हमें एक फील गुड फैक्टर फील कराता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात करें
2: जी,
0: और एक परसेप्शन भी है और मेरे ख्याल से ये सबको करना चाहिए, सुबह की जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग एक्सरसाइज, वो इतनी अहम क्यों है?
2: सुबह की एक्सरसाइज जो सबसे पहले अहम अगर है किसी वजह से, तो वो ये है कि सुबह का जो वक्त होता है वो साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि सबसे ताज़ी हवा होती है
0: जी,
2: पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो उस वक्त जब आप काम करते हैं और जो हमारे इंसान की जो जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो सही वक्त होता है कि अगर हम उसको एक्सरसाइज से शुरुआत करें तो हमारा दिन बहुत बेहतर बन जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो बड़ी बात है मैं बताना चाहूँगा कि सुबह के वक्त जो एक्सरसाइज करने का एक जो फ़ायदा ये भी है कि ये जो ज़रूरी काम होते हैं या जो इमरजेंसी आती है तो ये सुबह के वक्त थोड़ी कम होती है। अगर आपने अपना एक्सरसाइज का या योगा का टाइम आपने मान लीजिए रात के 8 बजे सारे काम खत्म करने के बाद शुरू किया, अब वो 8 बजे के करीब घर पे कोई मेहमान आ जाए,
0: मेहमान आ गया,
2: आपको किसी जरूरी काम से कहीं जाना है, किसी शादी पार्टी में जाना है, तो वो मिस हो जाएगी,
0: मिस हो जाएगी।
2: मॉर्निंग टाइम को अगर आप अपनी फिटनेस के लिए देते हैं तो वो उसमें मिस होने के चांसेस कम होते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपनी बात करें तो डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी बारे में, तो सुबह फजर के बाद अक्सर 3-4 दोस्त हैं और लेकर क्रिकेट के पूरा किट लेकर पहुंच गए, खेत में सामने मैदान है और वहां पर 1-1.5 घंटा हम लोगों ने जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग जैसी करनी कर ली,
2: अच्छा
0: वापस आए पूरे पसीने से लथपथ,
2: बेहतरीन।
0: लेकिन मुझे लगता है उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज का ये उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन।

0: आगे मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे।
1: आए है क्या बात है?
0: मत

0: जाए इत्तेफाक।
1: मुझे यकीन है कि हमारे सामीन बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। जितना जबरदस्त मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने शेर को लिखा है और उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारे डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब ने किया, और बहुत ही आवाज और अच्छी क्लासिकल अंदाज में आपने पढ़ा, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है जब आप डॉक्टर साहब रात में लेटते होंगे और कभी ये गुनगुनाते होंगे तो आपको तो नींद जबरदस्त आती होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नींद आजकल लोगों को आ नहीं रही है, नींद ना आने की बड़ी वजह क्या है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये नींद ना आने की जो समस्या जो आज के जमाने में ये बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल,
1: बिल्कुल,
0: और एक हमारी जिंदगी में जो भाग दौड़ के साथ साथ एक जो कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन तक तो ठीक है, एक शॉर्टकट जो है ना, ये हम जो ये सोशल मीडिया देखते हैं, आप देखते होंगे कि इसमें जो रील्स आती हैं या जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये मोस्टली कामयाब लोगों के होते हैं, कामयाब जिंदगी के बारे में होते हैं, तो उसको देख के ये खासतौर से बच्चों में और सारे यूथ में भी होता है कि ये हम कैसे यहाँ पहुंच जाएं, या वो कोई एक रील डालता है या वो कोई कंटेंट डालता है तो वो उसके अंदर वो डोपामिन लूप बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें होता क्या है कि वो हार्मोन बार बार निकलता है इस बात के लिए लाइक्स कितने आए, आए कि नहीं आए,
1: राइट राइट,
0: कमेंट्स आए कि नहीं आए, कमेंट्स अच्छे आए कि बुरे आए, अच्छे आए तो खुश हो गया, और अगर उसमें किसी ने एक बुरा कमेंट डाल दिया तो वो टेंशन में आ गया, तो ये बहुत सारी चीजें हमारे स्ट्रेस लाती हैं, और जो स्ट्रेस में इंसान रहेगा तो फिर नींद तो रात में गायब हो जाना है। अगर आप अच्छी नींद बेहतर लेना चाहते हैं तो अपने सोने के टाइम से एक घंटा पहले मोबाइल को ऑफ करके रख दें, मोबाइल से दूरी बना लें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें, बेहतरीन नींद आएगी, करके देखिए।
1: नहीं, ये आपकी बात डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक बेहद खतरनाक होता जा रहा है, हमारे जिस्म के लिए, हमारी नींद के लिए, हर चीज के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने खान पान की बात करी दी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात और कर ली जाए सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में। बहुत सारे ब्रांड इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, अलबत्ता इतना जानना जरूर चाहूंगा कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मशरूबात हो सकते हैं जो हम घर पर तैयार करें और वो हमारे सेहत के लिए काफी मुफीद साबित हो सकते हैं, जैसे नींबू पानी या वगैरह। डॉक्टर साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ हमारे सामने को इस बारे में जरा बता दें।
0: सॉफ्ट ड्रिंक्स वो किसी नाम से आते हो, ये ब्रिवरेज ड्रिंक्स या जो सोडा वाटर हैं, ये किसी भी सूरत में आपके शरीर के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है,
1: बिल्कुल
0: कोई रिफ्रेशमेंट नहीं देते हैं, कहीं से गर्मी को कम नहीं करते हैं, और एक जो मिथ है कि हम ये सोडा पी लेंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा, बिल्कुल मिथ है सर, ये गलत है। इससे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक से एसिडिटी बढ़ती है, गैस्ट्राइटिस ट्रबल करता है, ये इससे तो दूर ही रहना है, इसका कोई फायदा नहीं।
1: बिल्कुल, बाकी चीजें तो आप घर पे,
0: वो जो नींबू पानी है, नींबू का शरबत बना के पिए, आम का शरबत बना के पिए, बेल का शरबत पिए, जितने मौसमी फल हैं उनको खाएं, उनका शरबत बना के पिए,
1: बिल्कुल सही बात है। और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, काफी हद तक आप हेल्दी रह सकते हैं। खान पान की बात करें तो बाहर के खाने से जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का खाना पता नहीं चलता कि किस तेल में बनाया गया, कैसा तेल है, इसलिए इन चीजों से बचाव जरूरी है। डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने मोबाइल की बात की, फिर उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, बच्चे क्या, मैंने बुजुर्गों को अब देखना शुरू किया कि गाड़ी पर राइड के दौरान वो ईयरफोन का इस्तेमाल करना, नेक बैंड का इस्तेमाल करना, ब्लूटूथ का रेगुलर इस्तेमाल करना, इसका हमारे कान के साथ साथ और क्या परेशानी होती है, किस तरह की बीमारियां इससे बढ़ती हैं?
0: कान की बीमारियों में डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऊंचा सुनाई देने लगता है लोगों को, और ये हियरिंग लॉस तक जाता है बच्चों में। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे, अगर कान में ये जो गैजेट्स लगा करके जो बच्चे आजकल म्यूजिक सुनते हैं, जिम करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये हमारे कान को खराब कर रहा है, हियरिंग लॉस ला रहा है, जहन में स्ट्रेस ला रहा है, और इससे एक बड़ा खतरा ये है कि अगर इस तरह के हियरिंग साउंड सिस्टम को कान में लगा करके, जिसको ईयरफोन कहते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हुए हैं, लोग गाड़ियों से कट गए हैं, ट्रेन को देखा नहीं, पता नहीं चला, पार कर गए और ट्रेन आके चल गई।
1: जी डॉक्टर साहब,

0: जदीद टेक्नोलॉजी, हम जदीद तर्ज ज़िंदगी पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का हमारी सेहत पर, हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालें।
1: दोनों बातें करूंगा, जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदे की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो हाँ, फ़ायदे इससे वाकई बहुत हुए हैं। आजकल लोग स्मार्ट वॉच से, अपने गैजेट से, ऐप से अपने स्टेप को, अपने SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और टेली मेडिसिन का आजकल बड़ा चलन बढ़ा है, अपनी बीमारियों को लोग नहीं डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, दूर हैं, वक्त नहीं है, तो वो टेली मेडिसिन के थ्रू उनकी अर्ली डायग्नोसिस बन जा रही है, उनको सही राय मिल जा रही है, मशवरा मिल जा रहा है, अपनी रिपोर्ट्स को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
0: जी।
1: बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अलार्मिंग गैजेट्स होते हैं, वो आपकी हार्ट रेट को या आपके O2 लेवल को बता देते हैं, अलार्मिंग होते हैं, तो उससे इंसान, तो ये सारी चीज़ें तो ये फ़ायदेमंद हैं, हमारे जो गैजेट्स हैं ये तो काम किए हैं, और ये जदीद टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि इससे बहुत फ़ायदा उड़ रहा है।
0: चलते चलते आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद आप एक पैगाम आप हमारे सामने को देंगे। हमारा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त नौजवानों में दो बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं, एक है BP और दूसरा है शुगर। इसकी बड़ी वजह क्या है और इससे वो कैसे बच सकते हैं?
1: देखिए, ये BP और शुगर, ये दोनों बीमारियां आमतौर पे कहते हैं खानदानी है, ठीक है, लेकिन इनको बढ़ावा मिल रहा है हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी जो जदीद तर्ज जिंदगी है, इनको बढ़ावा मिल रहा है, ये जल्दी होने लगी है। जैसे आर्थराइटिस तो होता है, लेकिन ये अर्ली आर्थराइटिस क्यों हो रहा है? ये हमारे अमल से हो रहा है, हमारे काम काज करने के तरीके से हो रहा है, हमारी जो लाइफस्टाइल, हमारे ज़िंदगी का जो टाइम टेबल है, इसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ये हो तो किसी को भी सकती हैं, लेकिन जो आपने कहा ये जल्दी हो रही हैं, उसका यही है, हमारा रात भर जगना, दिन भर सोना, वक्त की पाबंदी ना करना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, और हमारी अगर बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं और हम जंक फूड और ये पैक्ड फूड पे अगर हम जी रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए फिर आप तैयार रहें कि मोटापा भी आएगा, वज़न भी बढ़ेगा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारियां, इनसे बचना है तो इन चीज़ों से दूरी करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी को सिस्टम में लाना पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे सामईन को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में?
1: बिल्कुल, पैगाम मेरा फिर वही है कि ज़िंदगी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जदीद तर्ज ज़िंदगी की बात हो रही है और सेहत की, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसने हमारी ज़िंदगी को रफ्तार दी है, हमें कामयाबी की तरफ आसानी पैदा की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा पैगाम यही है कि अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल बनाएं,
0: बिल्कुल,
1: रात में सोना, सुबह में जल्दी उठना,
0: बिल्कुल,
1: एक्सरसाइज को वक्त देना,
0: जी,
1: आप अच्छी सेहत के बिना कोई कामयाबी, कोई पढ़ाई आपके लिए बेकार है।
0: बिल्कुल,
1: एक बीमार इंसान कामयाब हो के क्या करेगा?
0: बिल्कुल सही बात,
1: कामयाब हो भी नहीं सकता, हो भी जाएगा तो क्या हो?
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई,
0: बिल्कुल,
1: लिखाई, कैरियर बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी सेहत को आप प्रायोरिटी दें, पहली प्रायोरिटी दें,
0: जिसमें सब
1: बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी कर।
0: बिल्कुल सही बात है, ये पैगाम आपका बेहद खूबसूरत है और कारामत भी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए।
0: सामिन, ये थे जनाब डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब, जिनसे अभी आप करामत गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपना पैगाम हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुन लें, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफ़ीन को दें इजाज़त। आदाब।

अभी आपने सुना उर्दू कार्यक्रम। मीडियम वेव के 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

श्रोताओं, समय हो चला है जिंदगी के तमाम झंझावातों से दूर मिट्टी के सौंधी खुशबू में सराबोर होने का, और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं लोकगीतों की ओर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा के गाए अवधि।

मुगल लोकगीत और इनका साथ दे रहे हैं ढोलक पर इफ्तिखार आलम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पे दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा के स्वरों में सोहर।

अभी आपने सुना सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा की आवाज़ में सोहर। आइए अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज़ में मेला गीत।

बैलगाड़ी में जियरा हमार सनन सनन हो गए। इस मेला गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। इनके गाए कुछ और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अगला कार्यक्रम सुनिए फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से ये गीत, जिसे आवाज दिया है लता मंगेशकर ने।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और

0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वार्ता के अगले दौर के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बना। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। विदेश में स्थित भारतीय दूतावास 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को हराकर पहली जीत दर्ज की। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को हराकर नॉकआउट चरण में। और भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने 2026 दोहा डायमंड लीग में चौथा स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के नए दौर की तैयारियों के बीच अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच हाल में पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद वार्ता संभावित परमाणु समझौते पर केंद्रित होने की उम्मीद है। ये वार्ता कल होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के कारण स्थगित कर दी गई थी। कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता पर अपना समर्थन दोहराया है। कतर ने कहा है कि संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। ये बयान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस के बीच कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हुई बैठक के बाद आया। कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों तथा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे राजनयिक प्रयासों की भी समीक्षा की गई। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बन गया है। वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे।
1: विवेक अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी विजय बताया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कार्यबल के लिए भारतीय शिष्टमंडल के पूर्व प्रमुख के रूप में उनके अनुभव से संस्था की क्षमता और मजबूत होगी। कार्यबल की पूर्ण बैठक में धनशोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बोस्निया, हर्जेगोविना और इराक पर निगरानी बढ़ाने तथा अल्जीरिया और नामीबिया को कार्यबल के ग्रे लिस्ट से हटाने का भी निर्णय लिया गया। श्री गाइल्स थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ। मेक्सिको की एलिसा डिएंडा मद्राजो का स्थान लेंगे। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल धनशोधन और आतंकवाद के खिलाफ धन मुहैया कराने पर अंकुश लगाने वाली मानक वैश्विक संस्था है। भारत 2010 से ही कार्यबल का सदस्य रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्मित एयरफोर्स वन विमान का अनावरण किया है। अगले महीने की शुरुआत में प्रेसिडेंशियल सर्विस में आने से पहले इस विमान की उड़ान शुरू होने की आशा है। प्रेसिडेंशियल बेड़े के मुख्य केंद्र ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस विमान का बड़ा आकार सर्वाधिक प्रमुख बदलाव है। उन्होंने घोषणा की कि एयरफोर्स वन विमान अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर नेशनल मॉल में आयोजित समारोह में फ्लाई पास्ट में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की में अगले महीने

0: सम्मेलन के लिए भी इसके उपयोग पर विचार किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। बोर्ड ने इस वर्ष 1 अगस्त से शोधित समय सीमा और सख्त अनुपालन नियमों के साथ ओपन मार्केट शेयर खरीदने की व्यवस्था फिर शुरू करने को भी मंजूरी दी है। दुनिया भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।
1: संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में 210 से अधिक भारतीय दूतावासों की भागीदारी सामूहिक कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में योग की भूमिका को दर्शाती है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। इससे पहले ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर ली। कैमरन बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर की बदौलत अमरीका ने पहले हाफ में ही मैच पर पकड़ बना ली। मैक्सिको के बाद अमरीकी टीम नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली बार अमेरिका ने एक मैच बाकी रहते हुए ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स का सामना स्वीडन से 10:30 पर होगा। दोहा डायमंड लीग में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में 4th स्थान पर रहे। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रीलंका के रूमेश थरंगा पथिराज ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। नीरज चोपड़ा ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा निर्धारित 82.61 मीटर के लक्ष्य को पार कर लिया है। नीरज चोपड़ा को पहले ही 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 32 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उबरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने धर्मशाला में पहला एक दिवसीय मैच 7 विकेट से जीता था और इसके बाद भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में भी जीत हासिल की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वार्ता के अगले दौर के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बना। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। विदेश में स्थित भारतीय दूतावास 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को हराकर पहली जीत दर्ज की। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को हराकर नॉकआउट दौर में। और भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने 2026 दोहा डायमंड लीग में 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

दोस्तों, कार्यक्रम चित्रपट से मैं अनुमेहा आपका स्वागत करती हूँ और मैं लेकर आई हूँ आज चित्रपट से नए तराने। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम चित्रपट से।

इश्क ने हमसे कुछ ऐसी साजिशें रची हैं, इश्क ने हमसे कुछ ऐसी साजिशें रची हैं, मुझ में मैं नहीं हूँ, बस तू ही तू बसी है।

कितना खूबसूरत है उसका मेरा रिश्ता, कितना खूबसूरत है ना उसका मेरा रिश्ता, ना उसने कभी बांधा ना हमने कभी छोड़ा।

अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी शाम के साथ।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। हर दिन अपना हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर दिन अपना हो ये ज़रूरी तो नहीं, मोहब्बत से यूं रूठा नहीं करते।

0: हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
3: एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम चित्रपट से। मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं।

कोई पूछ रहा था मुझसे मेरी ज़िंदगी की कीमत, कोई पूछ रहा था मुझसे मेरी ज़िंदगी की कीमत, और मुझे याद आ रहा था तेरा हल्के से मुस्कुरा देना।

दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए। कैसे हो? बस इन दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। दोस्तों, कोई आपकी परवाह करे ना करे, अपनी परवाह आप ज़रूर करें और खुद से कहें लव यू ज़िंदगी। बस इसी पैगाम के साथ मुझे यानी अनुमेहा को दीजिए अनुमति, मैं छोड़े जाती हूँ आपको इस आखिरी गीत के साथ।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 11 बज चुके हैं। लीजिए आप सुनिए फरमाइशी फिल्म नगमों का फोन इन प्रोग्राम। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ ठंडी ठंडी हवा से जगह से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और हमारा शिमला का मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है।
0: शिमला का कहने क्या, नाम सुनते ही वहाँ की खूबसूरती और मौसम का अंदाजा होने लगता है। बाकी घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ जी, गाना बताइए भाई, कौन सा सुनवाना है आज?
1: जी जी, गाना आप सुना दीजिए, जानी मन चुपके चुपके।
0: अच्छा, किस फिल्म का है
1: ये? मुस्कान।
0: अच्छा, सुनवाया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुना दीजिएगा। धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। लीजिए गाना सुनिए।
2: तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे
1: हैं? जी सर नमस्ते। सर जी मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी रघुवंशी जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम दो बढ़िया सर जी, आप बताएं कि आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपके, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं बिजली ऑफिस में हूँ सर, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। और सब ठीक है?
1: और तो सब ठीक है सर जी, और आकाशवाणी का आनंद ले रहा है सर जी लखनऊ।
0: बहुत शुक्रिया। आपका गाना कौन सा सुनवाए?
1: गाना सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है सर साथी, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, हुई आप नाम और ये दिल मुस्कुराया, याद है साथी कोई भूला याद आया।
0: अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ।
0: हेलो,
1: फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: हाँ जी, क्या नाम बताया आपने?
1: मैं बढ़िया हूँ, आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपसे मेरी राजेश्वरी सर से बात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
1: क्योंकि काफी दिन से अंतराल के बाद बात हुई है आपसे।
0: जी जी, गाना कौन सा
1: हो रही है? आप इतना मीठा भी बोलते हो, पता नहीं।
0: बहुत शुक्रिया आपका। गाना कौन सा सुनवाए भाई?
1: आज गाना की समाज है तहकीकात, गाने बोले प्यार झूठा सही दुनिया को मिलाने के आज आटा, क्योंकि इस मौसम में जैसे कलीने खरबूजा ककड़ी खीरा इनका सेवन करना चाहिए, पत्ते को पानी रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। 21 तारीख को है वो, तो उसका जो
0: हाँ योगा दिवस
1: है,
0: हाँ
1: तो उसका भी राष्ट्रीय पर्व है, तो अच्छा लगेगा। कल
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मैसेज दिया है वो भी सुनने वालों तक पहुँच गया। अब ये गाना आप तक पहुँच रहा है।

हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मसला दोनों तरफ एक सा ही हो रहा है। चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनवाएं? शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हाँ सर
0: हेलो हाँ जी, कौन बोल रही?
1: जी, मेरा नाम है रिहाना मंसूरी
0: जी। रिहाना जी, कहाँ से फ़ोन किया है आपने?
1: कैसर बटोरा, कैसरगंज जिला बहराइच से
0: वाह,
1: फोन किया है मैंने।
0: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज किस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद।
0: गाना कौन सा सुनवाना है?
1: ना कजरे की हार, मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: वाह,
1: और पंकज उदास की आवाज़ है, लता मंगेशकर है सर,
0: जी,
1: लेकिन फिल्म का नाम नहीं जानते हैं।
0: फिल्म का नाम है मोहरा।
1: क्या नाम है?
0: मोहरा फिल्म का गीत है ये।
1: जी सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिहाना जी आपको। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: Hello, good morning.
0: Very good morning. कौन बोल रहे
1: हैं? सर, आपका आवाज थोड़ा धीमी से आ रहा है.
0: हाँ, कई सुनने वाले पिछले प्रोग्राम में भी इस बात को कह चुके हैं. हेलो,
1: सुनाई दे रहा है मेरा
0: आवाज? हाँ जी, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है, बताएं.

0: जी जी तो गुड मॉर्निंग आकाशवाणी लखनऊ के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना?
1: जी जी अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में।
0: जी जी, तो एक बात कहूँ?
1: हाँ जी बताएं।
0: पतझड़ में ही हर रिश्तों की परख होती है साहेब, पतझड़ में ही हर रिश्तों की परख होती है साहेब, नहीं तो बारिश में हर पत्ता हरा ही दिखता है।
1: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनूप जी।
0: हेलो,
1: बहुत धन्यवाद अनूप जी, गाना बताएं।
0: जी जी, और गाने का बोले से फिल्म का नाम है कभी हाँ कभी ना, गाने के बोले से है एकाश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐसे करके गाने हैं
1: जी
0: सानू जी ने।
1: जी जी
0: है, कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
1: हाँ जी बताएं।
0: हेलो
1: जी, बताएं नाम बताएं।
0: जी पहले है हमारे बहुत अच्छे सिस्टर है जिसका नाम है बबीता शर्मा जी है, और अमीना अविनाश जी, बसंती लाल सूर्यवंशी जी, और श्रीकांत जोशी जी, सतीश भाई, और है हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी, अमर सिंह साहू जी, और है प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, और है हमारे उसका नाम है अनवार बिहारी भाई के लिए, और श्रीकांत जोशी के लिए।
1: अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी,
0: और लुकेंद्र वर्मा जी के लिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपको कौन साहब बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: जी भगवान जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है सर, अच्छे हैं सर। आप आ जाते हैं जब और अच्छे हो जाते हैं सर।
0: ये बात है।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया आपका भगवान जी।
1: जी सर,
0: गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: सर फिल्म का नाम है जवाब और गाने के बोले आजा मेरी जान। ये है जून का महीना। और
0: अच्छा।
1: सर कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: हाँ बिल्कुल बताएं।
1: रमेश प्रजापति जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, भरत सिंह अहिरवार जी, मांगेलाल चंदेल जी, गंगाधर सावनकर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, पूनम दीदी कानपुर से, बहन संगीता देवना जी, अशोक देवना जी, अविनाश तेली जी, गुंजन तिवारी, स्वाता सिंह जी, स्वाती सिंह जी और तनुश्री और राहुल खान जी।
0: बहुत लंबी फेहरिस्त है आपके दोस्तों की।
1: जी
0: बहरहाल बहुत शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

0: जा आजा
1: जा जा जा
0: अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना।
2: हेलो
3: हेलो सदी आदाब।
2: आदाब, कौन बोल रही?
3: सर कहते हैं तेरी मेरी दोस्ती यही है मेरा प्यार, तेरी मेरी दोस्ती यही है मेरा प्यार, रहने वाली हूँ खंडिया की, शबनम अब्बासी है मेरा नाम।
2: क्या बात है शबनम जी, कैसी हैं आप?
3: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो, परिवार में स्टाफ के लोग?
2: हाँ सब लोग बहुत अच्छे से हैं। आपकी फोन कॉल आती है तो फिर उसका इंतजार रहता है हमें।
3: जी सर, आज हमने आपको याद करा, आपकी जब आवाज सुनी तो दिल बाग बाग हो गया।
2: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शबनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गाना बताइए कौन सा सुनवाना है?
3: सर उससे पहले दो लाइनें कहूँगी। मुझे छोड़कर वो खुश है तो क्या शिकायत करें, मुझे छोड़कर वो खुश है तो क्या शिकायत करें, अब उन्हें खुश भी ना देखें, ये हमारी ही मोहब्बत है।
2: वाह, बहुत शुक्रिया
3: जी। सर मेरा नाम है बाहर आने तक, वो गाने के बोलें काली तेरी चोटी पर आने तेरा ले आने लगे, ये गाना सुनना, ये आपके लिए और शायद मेरे भाई के लिए।
2: बहुत शुक्रिया आपका शबनम जी, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं देवी शंकर शुक्ल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज बेसणी फतेहपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी जी गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं सर।
0: वाह, घर में सब लोग ठीक हैं?
1: रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं।
0: ये बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक अनवरत और बेहतरीन सेवा के बाद अगर अवकाश प्राप्त होता है तो ईश्वर का वाकई बड़ा धन्यवाद है, उसका शुक्राना भेजिएगा गुरु जी। अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम की सरपरस्ती की, आपने हमें याद किया है। गाना कौन सा सुनवाना है गुरु जी?
1: गाना जो है मेरा गांव मेरा देश का, आया आया अटरिया पे कोई चोर।
0: क्या बात है, वाह धन्यवाद जी। गुरु जी बताएं, बताएं
1: जो है सभी सभी मित्रों को डेडिकेट रहेगा, आपको विशेष करके
0: धन्यवाद गुरु जी। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: शायर और कद किसी घराने के नहीं होते, जो जलते हैं वो परवाने नहीं होते, जिनको मिलती है ख्यात उस बीड़ा वादनी से, उसके सामने कोई फसाने नहीं होते।
0: क्या बात,
1: काबिले सद एहतराम जनाब सुरेंद्र राजेश्वरी साहब को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब।
0: वाह वाह विजय जी, आपको भी बहुत बहुत आदाब और इस्तकबाल करते हैं अपने इस फोन इन प्रोग्राम में। जी हुजूर फरमाएं।
1: जी कहा गया है, अजीम है वो लोग जो दूसरों का ख्याल रखते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते। और 15 जून को उर्दू प्रोग्राम में शमसुल आबदीन और आसिफ इकबाल साहब ने मशहूर शायर गोपी चंद नारंग और सहरयार के बारे में तमाम उनके तहरीर के बारे में नश्र किया गया
0: जी,
1: जो निहायत ही वो काबिले तारीफ रही।
0: बहुत शुक्रिया विजय जी।
1: तहरीर,
0: अच्छा,
1: उनके किताबों पर बहुत अच्छी रोशनी डाली गई। फिल्म उमराव जान का जिक्र किया जाए तो ये अपने जमाने के मशहूर फिल्म रही, जो आज भी उनके गाने को सुनकर अपने को सुकून महसूस करते हैं।
0: जी जी जी।
1: इसके सभी गीत सहरयार ने लिखे थे।
0: जी जी,
1: उनका असली नाम था अखलाक मोहम्मद खान, जो गजल के बादशाह माने जाते थे।
0: जी जी जी जी।
1: बाद में इनका नाम सहरयार रखा गया।
0: जी जी।
1: सहरयार की लिखी गई गजलें आज भी हर सुनने वालों के दिलों में उतर कर खास एहसास पैदा करती।
0: बेशक बेशक जी। फरमाएं आज उमराव जान का कौन सी गजल आप तक पहुंचाई जाए।
1: गीत के बोल है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
0: वाह।
1: और ये गीत अयोध्या के बेस्ट एंकर अमरजीत सिंह साहब और आपके लिए समर्पित रहेगा।
0: बहुत शुक्रिया विजय जी, लीजिए सुनिए ये गजल।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: वाह लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी, आप सुनाइए घर में कैसे हैं सब लोग?
1: आप लोगों का आशीर्वाद है सर।
0: देखिए वाकई इस वक्त तो एक दूसरे को सबके लिए, सबकी पूरे पूरे कुलालम के लिए दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। और सुनाए करते क्या हैं आप?
1: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
0: वाह ठीक हो रहा है, सब फसलें ठीक हो रही?
1: हाँ सर, अभी बस बोनी अब चालू होगी सर, पानी की मतलब सोयाबीन की बोनी लगेगी।
0: बहुत धन्यवाद आपका। गाना बताएं
1: सर। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। मुकेश जी की आवाज में सर, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, अपनी हस्ती लुटाने चला।
0: क्या बात, बहुत धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी नमस्कार सर जी, कौन सर बोल रहे हैं पहले आप बताइए।
0: सर मुझे राजेश्वरी कहते हैं, सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: अच्छा सर, आज का आइटम बहुत अच्छे, एक नंबर का आइटम जा रहा है।
0: अच्छा
1: अधिक से अधिक खोल ली जा रही है।
0: हाँ कोशिश रहती है, हालांकि बहुत सारे दोस्तों को ये भी लगता होगा कि भाई गाना कम सुनवा रहे हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा लोगों से बात हो जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा है ना
1: जी जी बहुत
0: ठीक
1: बेहतर
0: लगेगा।
1: रहता है।
0: बहुत शुक्रिया। कहाँ से
1: और
0: फ़ोन किया
1: मुझे तो
0: आपने?
1: आपकी आवाज़ राज सर की आवाज़ थी ना, उन्हीं से मिलती जुलती आवाज़ थी, तो मुझे लग कन्फ्यूज हो रहा था मैं कि शायद राज सर आ गए क्या इसमें।
0: वो तो हमारे लीजेंड रहे हैं, बड़ा अच्छे उद्घोषक रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जी गाना बताएं, फिल्म का नाम बताएं।
1: जी आज आप मुझे सुनवा दीजिए। फिल्म का नाम है कड़ी पार, और गीत के बोले अब तक मैं चुप रहता था, तुझसे कुछ नहीं कहता था, आज पहली बार दिल की बात की है। और श्रोता मित्र को याद कर लूँ सर जी,
0: जी जी जी
1: विजय पांडे जी हैं, रामजी गर्ग जी हैं, और मांगीलाल चंदेल जी हैं, गजाल लोधी जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, सभी जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: सारे हरियाणा से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ राजेश्वरी जी।
0: जी राजेंद्र जी बहुत बहुत प्रणाम है आपको।
1: जितना सुंदर नाम उतनी ही सुंदर वाणी। और राजेश्वरी जी आते हैं तो फोन मिल ही जाता है हमारा, अच्छा लगता है। आज काफी दिनों बाद मिला,
0: हाँ,
1: दो तीन बार कार्यक्रम आपका सुन।
0: जी जी जी राजेंद्र जी, घर में कैसे हैं सब लोग? आपके स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है?
1: आपकी दुआ है, आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो गम दूर ही हो जाता है, खुशी होगी, खुशी मिलती है आपकी जैसे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: ईश्वर करे आपकी लंबी और बड़ी दोनों उम्र हो और खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
1: हम भी यही दुआ चाहते हैं कि आप भी राजेश्वरी खुश रहें और अच्छे रहे, अच्छा बीते और सालों साल भी अच्छा बीते।
0: बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। गाना कौन सा सुनवाना है?
1: आन मिलो सजना का यहाँ वहाँ सारे जहाँ पे।
0: आए, आए, आए, आए, क्या बात, क्या फरमाइश की आपने, कमाल कर दी, वाह वाह, बहुत अच्छा गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो जी नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं जिला रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: जी रामराज जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: दुआएं आपकी, ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है। क्या करते हैं आप
1: जी? आपका नाम सुना जिस समय तभी फोन लगाने, हमने सोचा आज लगेगा जरूर। विश्वास था, विश्वास वही पूरा हो गया।
0: देखिए ईश्वर का बहुत धन्यवाद कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई।
1: जी हाँ, ईमेल से तो होते थे लेकिन हम भी आपसे बात

0: नहीं कर पाए
1: जी जी जी जी, ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। रामराज जी, कैसे हैं घर में सब लोग?
0: जी हम लोग तो घर पर सब कोई ठीक ठाक है।
1: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है।
0: घर पर है, बैठे थे, रेडियो लगाए थे तो हमने सोचा कि फोन लगाए, जब आपकी आवाज सुना तो हम कहा राजेश्वरी जी से बात जरूर होगी।
1: धन्यवाद। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
0: जी फिर मेरा घर मेरे बच्चे, क्या होती है ऊंची जात लोग बड़े और छोटी बात।
1: वाह, सुनवाया जाए फिर
0: जी। दो चार लोगों के नाम ले लें।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बताएं नाम बताएं।
0: सबसे पहले राम शंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, श्री राम सागर साहू रसूलपुर वाले, मिर्जा तुरादे के रामचरण प्रजापति, पप्पू पासी मजहरगंज।
1: बहुत धन्यवाद। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: जी सर जी नमस्कार।
0: कौन सा बोल रहे हो, कहाँ से फोन किया है आपने?
1: जी हम ग्राम सिलनी जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से जितेंद्र पाल बात कर रहे हैं सर जी।
0: अच्छा जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो किराने की दुकान कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: हैं।
0: ठीक चल रहा है काम धंधा?
1: जी बढ़िया चल रहा है।
0: धन्यवाद आपने फोन किया है। गाना बताएं कौन सा सुनवाना है?
1: सर जी मूवी रहेगी किस्मत और गाने के बोल रहेंगे तेरे किस्मत व तेरे किस्मत में मेरा प्यार लिखा है और सर जी कुछ हमारे मित्र रहेंगे।
0: हाँ नाम बताएं।
1: सबसे पहले तो आप रहेंगे।
0: अच्छा थैंक यू।
1: भाई हैं सुनील पाल हैं और अच्छा। बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मलकाई से फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं और प्रेमदास बाबा जी हैं और वो सर जी जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों के लिए और हमारा छोटा भाई है यश त्रिपाठी जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: ओ सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी हुजूर,
1: भाई।
0: आपकी
1: यार मैं
0: इसमें।
1: फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: अच्छा, जी, फूलचंद जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। गाना बताएं।
1: फिल्म का नाम है मुकदमा। गीत के बोले के रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे, रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे को चुरा लेंगी।
0: अच्छा, सुनवा जाए।
1: हाँ बिल्कुल, आपको डेडिकेट रहेगा। प्रेमनाथ बाबा जी हैं, मांगीलाल
0: शुक्रिया।
1: चंदे जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, और जो है राहुल कुमार जी हैं, पूनम जी हैं कानपुर से, और सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को
0: थैंक
1: डेडिकेट
0: यू,
1: रहेगा एक
0: थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम जलालपुर जिला बांदा से श्रीचंद निषाद बोल रहा हूँ। ठीक
0: जी, निषाद जी कैसे हैं आप?
1: ठाक हैं सर जी।
0: वाह, गाना बताएं।
1: दिल धड़कने का बहाना ढूंढता।
0: वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हाँ साहब नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम मुन्ना बोल रहे हैं सुरैचा से।
0: वाह वाह, मुन्ना जी कैसे हैं आप?
1: चंदापुर तहसील सिधौली।
0: वाह वाह, कैसे हैं आप?
1: अरे ठीक है, बूढ़े हो चुके हैं।
0: अरे बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है उम्र को केस पड़ाव में आना भी, ये बड़ी भाग्यशाली बात है ये। आप बहुत बड़ी बात है। अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे आपका। बस आशीर्वाद है आपका। गाना बताएं।
1: होना चाहिए आप।
0: गाना बताएं।
1: रेशमी सलवार कुर्ता जाली सारू सहा नहीं जाए नखरे वाली का।
0: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लीजिए गाना सुनिए।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म नामों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12 बजे हैं। चित्रपट संकेत।

आराधना। इस फिल्म में भी आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुन रहे थे। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत राहुल देव बर्मन का है। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं और फिल्म का नाम है आपकी कसम।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए नील कमल फिल्म का एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत के बोल लिखे हैं रवि ने, धुन बनाई है साहिर लुधियानवी ने।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म थी नील कमल। कार्यक्रम का अगला गीत प्रेम कहानी फिल्म से है जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्श की है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हम शक्ल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन राहुल देव बर्मन के। आइए अब लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार का गाया हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म दूसरा आदमी के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे पी जी आई एम एस और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: वीडियो वेव 401.6 मीटर।

747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमों के प्रोग्राम।

आशा फिल्म के गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ही वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है नागिन।

अभी आपने जानी दुश्मन और इंतकाम फिल्मों के गीत सुने। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थी। आइए अब इन्हीं आवाज़ों में ये गीत सुनिए। फिल्म का नाम है चरस।

चरस फिल्म का एक गीत आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थीं। आइए अब किशोर कुमार और आशा भोसले का गाए हुए गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गए फिल्म जुदाई किस गीत के साथ ही अब सदाबहार नगमों का प्रोग्राम ख़त्म होता है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, अब कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और

0: शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोई हुई व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। देवेंद्र सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी मॉडल टाउन थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर से हमें सूचित करते हैं कि विजय जिसको उम्र 32 वर्ष है, कद 5'6", रंग गेहुआ है। विजय पिछले 20 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी विजय के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री देवेंद्र सिंह पुत्र श्री बाबूराम निवासी मॉडल टाउन थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर। श्री रमाकांत पुत्र श्री कल्लू निवासी ग्राम रेहरिया थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर से हमें सूचित करते हैं कि विकास जिसको उम्र 22 वर्ष

0: कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला है, चेहरा गोल है। विकास पिछले 29 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को भी विकास के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री रमाकांत, पुत्र श्री कल्लू, निवासी ग्राम रेहरिया, थाना सिधौली, जनपद शाहजहांपुर। लक्ष्मी, पत्नी श्री कृष्णपाल, निवासी नदैया रामपुर, पुलिस थाना कटरा, जनपद शाहजहांपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, रूबी, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। रूबी पिछले 30 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को रूबी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। लक्ष्मी, पत्नी श्री कृष्णपाल, नदैया रामपुर, पुलिस थाना कटरा, जनपद शाहजहांपुर। चमेली देवी, पत्नी श्री सुमेर लाल, निवासी सुभानपुर, पुलिस थाना बंडा, जनपद शाहजहांपुर से हमें सूचित करती हैं कि परवेश, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। प्रवेश पिछले 26 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को प्रवेश के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। चमेली देवी, पत्नी श्री सुमेर लाल, निवासी सुभानपुर, पुलिस थाना बंडा, जनपद शाहजहांपुर। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। लीजिए अब कुछ कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुनिए। दिन में 3:55 से आप सुन सकेंगे हुगली में तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का सजीव प्रसारण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समय याद रखिएगा, अपराह्न 3:55 से। रात 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का कार्यक्रम। आज का विषय है संस्कृति। समय याद रखिएगा, रात 11:10। रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आयुष विभाग, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज रात 8 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:10 होने को है। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं।
2: दुनिया भारत

0: के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4901 करोड़ 65 लाख रुपए के 1000 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकतदार ममालिक को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदाद की गई। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3 अरब 94 करोड़ डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जानें, जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विजन को पूरा कर रही हैं।
2: सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर मॉक ड्रिल करेगी। ये मश्क इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियस्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान 2 जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियस्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुन अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम के सब श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी की आर नमस्कार। आशा करिथन हमरे सब श्रोता हो रहे स्वस्थ और प्रसन्न हुई हैं और यह गर्मी में अपने स्वास्थ्य के निकेतान देखभाल करत हुई हैं जो उन्हें हारी बीमारी से बचे रही। और पंचो अपने शरीर के स्वस्थ राखब, स्वास्थ्य के रक्षा करब हम सब के पहला कर्तव्य आए, काहे कि यह मानव तन जो उन्हें बड़े भाग से मिलत है और कहा भी जात है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यही के खातिर सदैव ईश्वर के धन्यवाद देवे का चाहिए, अपने महतारी बाप के आभार प्रकट करे का चाहिए जौन हमार देखभाल करिन, कठिन तप और त्याग से हमार लालन पालन करिन। यह से देखो माता पिता का ईश्वर के दर्जा दिन जाते हैं जौन निस्वार्थ भाव से हमेशा हमार हित चाहत हैं। तो हम सब का भी हमेशा अपने माता पिता के सम्मान करे का चाहिए, सेवा करे का चाहिए। अगर हम उनके उपकार का याद रखी, यह से देखो मातृ दिवस पिता दिवस भी मनावा जाते हैं और जोने का कि अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो मदर्स डे और फादर्स डे कहा जाते हैं, काहे कि हम याद दिवस के रूप में एक तरह से याद दवाई थन कि हम आपके उपकार का हमेशा ध्यान रखी थन, वही के ऋण हमेशा हमका याद है। वैसे तो देखो एक बात हम यह कहा चाहिए थे कि भाई माता पिता का हर दिन याद करे का चाहिए, मूल या दिन विशेष रूप से अपने माता पिता के प्रति अपने स्नेह और सम्मान का प्रकट करे के होते हैं, उनका याद दबावे का होता है कि हम उनके त्याग तपस्या का सम्मान करी थन। और बतावत चली कि जून के तीसरे रविवार का फादर्स डे के रूप में मनावा जाते हैं जो उनकी काल यानी कि 21 जून का पड़ी। तो देखो या मौका पर अपने पिता का अपन प्यार और सम्मान के उपहार जरूर दो। अच्छा एक बात और है, आप सब भी महसूस करे हुई हो कि जो हमारी महतारी होती हैं तो वही अपनी भावना का व्यक्त कर लेती हैं, फिर चाहे वही नाराजगी हो, कोनो शिकायत हो, चाहे प्यार हो, लेकिन पिता जो है वही अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनका कुछ अगर कहे का भी होते तो वही महतारी के सहयोग लेते हैं, उनका भाई बीच में ले आवत है कि भाई बेटवा से यह बात कही दो या बिटिया से यह बात कही दो, मैंने सीधे सीधे बात नहीं करते हैं। और हमका सबका का लागत है कि हमारे पिता जो उन्हें बहुत सख्त हैं, बहुत कड़क मिजाज के हैं। तो भाई देखो आप एक काम करो कि एक बार आगे बढ़ के अपने पिता का गले लगाओ, उनका हाथ अपने हाथ में ले के बस यह एहसास कराओ कि हम आपसे बहुत प्यार करी थन, हम आपका ध्यान रखी थन, हमका पता है कि आप हम पंचन के लिए काका किए हो, कितना त्याग किए हो। और फिर आप ऐसा करके देखो तो आप देखियो कि पिता की जौन आँखी का आप सख्त समझत रहे हो, बड़ी कठोर आँखी लगत रही, उनके कोर जौन है वही नम हो गए हैं। तो भैया ज़रूर आप करके देखियो। और बस माता पिता जो ना वही हमसे कुछ नहीं चाहते ना, जब या भाई फादर्स डे की हम बात कर ही रहे हैं तो काल आप एक काम है जरूर करो कि अगर आप उनके नगीचे रह रहे हो, पास में हो, तो जाए कि बस उनके लगे बैठ जाओ, उनका कुछ समय दो। और अगर दूर हो तो कम से कम एक फ़ोन कर लियो, उनसे बात कर लियो, बस उनका इतने चाहत है, वही हमसे और कुछ नहीं मांगते, बस हमका हमार समय चाहत है, हमार साथ चाहत है। और एक बार अपने पिता से उनके बचपने की बात करके देखो तो आपका जो पिता बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, जो कमज़ोर नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर उनके अंदर एक बच्चा दिखाई पड़ी, एकदम चमक उनके चेहरे पर आ जाए। तो यह अवसर पर यह काम जरूर करो। और पंचो हम बताइए आपसे कि कहूँ हम दुई लाइन पढ़े रहें और आज हमका वही लाइनें बड़ी सार्थक लग रही हैं, बड़ी उपयुक्त लग रही हैं कि धूप में पिता और चूल्हे पर माँ जलती है तब औलाद पलती है। बिल्कुल सही बात है कि माता पिता के ऋण से कबो उऋण तो नहीं हुआ जा सकत, मुल्हाँ जौन भी हम पंचन कही सकी थन तो भाई अपने मातारी बाप का खुश रखे खातिन हमका वही जरूर करे का चाहिए। और यह से देखो हम समय रहते आप सबका याद भी दवाए दिए हैं तो अब आप बिल्कुल भूलियो ना, काल का याद दिवस बहुत ही अच्छे तरह से मनायो। और चलो जैसन की पता है आज शनिवार के दिन है, हमरे श्रोता पंचन की फरमाइशी मेल हमारे पास आए हैं गवनई सुनवावे खातिन, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो मेल हमारे पास आए हैं तो एक का शामिल कैली। या पहला मेल जो हमका मिला है यह है ग्राम लखन पोस्ट मलके गांव जिला राय बरेली से, भेजे वाले हैं पंकज गुप्ता, तुलसीराम गुप्ता, शिवा, आकांक्षा, अंशिका, देवता दीन। और यह लिखे ने कि इनका 16 मई के कार्यक्रम बहुत नीक लाग रहा, वही में जो भेंटवार्ता सुनवाई गई रही डॉक्टर चमन लाल रावत जी से डेंगू के कारण लक्षण और उपचार के विषय में वही बहुत उपयोगी लगी। और साथ ही लिखे हैं कि कोनो भी लोगी सुनवाई दिया जाए। एक साथ एक और ईमेल हमारे पास है जो उनकी आवा है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से, भेजे वाले हैं विजय पाल यादव, शिखा, शुभम, ऋचा, गुड़िया, बाबू यादव, विजय पांडे। और इन्होंने लिखे हैं कि कोई भी गीत सुनवा दें। तो देखो भैया हम तो कहे थे ना कि मौका भी है, दस्तूर भी है और माता पिता की इतनी बात किया है तो काहे ना जो पहला

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता पंचो, काल यानी कि 21 जून का मनावा जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और जैसन कि देखो नामे से पता लगत है, योग जो उनकी हमका जोड़त है, जन से जन का, तन से मन का, प्राणी से प्रकृति का, आत्मा से परमात्मा का और स्वास्थ्य से समृद्धि का। सचो योग जौन है वही हमका हर तरह से भाई उत्तरोत्तर जो है प्रगति की तरफ ले जाते है। और हर तरह की प्रगति वही में शामिल है, तन मन धन सब की। और खाली तन की ही बीमारी का नहीं दूर करत, बल्कि हमारे मन का भी स्वास्थ्य राखत है। और आप सोचे थोड़ी हो कि भाई मन का कैसे स्वास्थ्य राखत है, मन की कौन सी बीमारी है, तो मन की बहुत तेरी बीमारी होती जो उनका कि हमका पता नहीं लागत, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मकता, यह सब मन की बीमारी हैं। और योग के द्वारा यह सब मिटत है। तब तो देखो आप सब नोटिस किए हो भाई, ध्यान दिए हो कि जोन मन ही

0: का नहीं दूर करत, बलुक हमरे मन का भी स्वास्थ्य राखत है। और आप सोचते हो कि भाई मन का कैसे स्वास्थ्य राखत है, मन की कौन सी बीमारी है, तो मन की बहुत तरी बीमारी होती जो उनका कि हमका पता नहीं लागत, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मकता, या सब मन की बीमारी हैं, और योग के द्वारा यह सब मिटत है। तब तो देखो आप सब नोटिस किए हो भाई, ध्यान दिए हो कि जौन मनई नियमित रूप से योगाभ्यास करत हैं उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती। काहे कि उनका मन स्वस्थ होते है। और कहा जाते हैं ना कि हमारा चेहरा जो है वही हमारे मन के दर्पण है। तो जब हमारा मन स्वस्थ है, मन साफ है, मन में सकारात्मक ऊर्जा है, तो चेहरे पर चमक तो आवे करी है। तो भाई यह लिए कहा जाता है कि अगर हमका संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, हमका जीवन में खुशी चाहिए, जीवन में प्रगति करे का है, तो योग से जरूर जुड़े का चाहिए। हाँ, और आज के समय की अगर बात करी, बहुत लोगों सोचते हैं कि भाई हमका तो कोनो बीमारी नहीं ना, तो आपका हो सकता है कि पता ना लागत हो, लेकिन एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी कह लो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है जो ने से कि हर को ग्रसित है, और वह है तनाव, जो ने कहा कि अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाते हैं ना। तो यह तनाव से हर को ग्रसित है, फिर चाहे वही घरेलू महिला हों, चाहे कामकाजी महिला हों, चाहे लड़कन बच्चन हैं पढ़े लिखे वाले, चाहे नौकरी करे वाले युवा हैं, हर को जो उन्हें आज तनाव से ग्रसित है। और आपका बताइए कि तनाव का बहुत बढ़िया इलाज जो है वही योग के द्वारा होता है। और जब हम योग का अपने जीवन में शामिल करी थन, तो यह हमारे तनाव का कम करत है, हमारे काम करे की क्षमता और गुणवत्ता दोनों का बढ़ावत है। तो कैसे हम योग द्वारा तनाव प्रबंधन कर सकी थन, यह विषय पर आज हम अपने श्रोता पंचन का एक भेंटवार्ता भी सुनवा रहे हैं, जो उनके विषय भी यह है कि योग और तनाव प्रबंधन, यह के बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नजमुस सहर, और इनसे बातचीत करी नहीं देवाशीष भैया। तो चलो सुना जाए यह भेंटवार्ता, योग और तनाव प्रबंधन।
1: श्रोताओं, आज के आधुनिक युग में हमारे साथ अक्सर यही चीज़ का सवाल खड़ा रहता है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आजकल दौड़ भाग की जीवन है, हमें समय नहीं मिल पाता है एक अच्छे जीवन शैली को अपना पाना, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के सामने घंटों बताते हुए कभी न कभी हमें एक तनाव हो जाता है कि कैसे हम घर पहुँचेंगे, कैसे हम ये काम करेंगे, इन सब चीज़ों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है। और योग और तनाव प्रबंधन, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम योग के माध्यम से तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नजमुस सहर जी, जो कि उप निदेशक हैं केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान लखनऊ से। मैम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कार्यक्रम में कुछ बोलने का मौका दिया।
1: तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम कि जो हमारी यूनानी पद्धति है ये क्या होती है, और योग से इसको कैसे जोड़ सकते हैं, कि अगर जोड़ा जाए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति और योग में क्या समानताएं हैं, तो कैसे इसको समझना चाहेंगे।
2: यूनानी चिकित्सा पद्धति एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो शरीर के चार अखलात खून, बलगम, सफरा और सौदा के संतुलन पर आधारित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार इन अखलात के संतुलन की अवस्था ही स्वास्थ्य है, जबकि असंतुलन रोग का कारण बनता है। इस पद्धति में इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल यद यानी कि सर्जरी के द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति एक समग्र उपचार पर बल देती है। योग भी शरीर और मन को संतुलित करके स्वस्थ बनाए रखने का नाम है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। हम यूनानी चिकित्सा पद्धति और योग को जोड़ के पूर्ण स्वास्थ्य को अपना सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस वर्ष योग हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ये है कि व्यक्ति अपनी बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और संपन्न रह सके। आज की भागदौड़ बड़ी जीवन शैली में तनाव, अनियमित दिनचर्या और असंतुलित आहार के कारण कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। योग एक प्राकृतिक और सरल समाधान के रूप में हमारे सामने आता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं और रोग की प्रतिरोधक क्षमता वो भी बढ़ती है। इससे हम अपने स्वस्थ होने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति भी शरीर और मन के स्वस्थ रखने का नाम है, इसलिए ये दोनों मिलके हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता कर सकते हैं।
1: अगर एक आम इंसान की बात की जाए तो कैसे वो यूनानी चिकित्सा पद्धति को समझना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास आज के समय में बहुत सी चिकित्सा पद्धति हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक हो गया, हमारे पास एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में

0: अच्छा बताइए।
1: जैसा कि मैंने अभी बताया, इस यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है चार अखलात वाले सिद्धांतों पे काम करता है, लेकिन इसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फोर एसेंशियल फैक्टर्स हैं, असबाब से तय ज़रूरी है, जिसको अपना के हम अपने शरीर, अपने समाज और अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हवा। हमारा अगर वातावरण हवा शुद्ध रहेगा तो हम शुद्ध सांस लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रखेगा। उसी तरह पानी, पानी भी शुद्ध होना चाहिए पीने का, तो पानी की ज़रूरत है। योमो यक्जा, नींद को भी पूरी तरह से जागना और सोने का भी दिनचर्या हमें तय करनी चाहिए कि हमारे शरीर को कितना सोना चाहिए और कितना आराम करना चाहिए। उसी तरह हरकत सुकून बदनी है, यानी हमारे शरीर को कितना हरकत देना चाहिए और कितना आराम करना चाहिए। पांचवा है हरकत सुकून नफसानी, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य की बात आज के दौर में हम करते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी इसका बहुत बड़ा अहम रोल है और जिक्र है। तो एक पूरा एसेंशियल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है हरकत सुकून नफसानी। जब हम सही समय पर सोएंगे और जितना हमें सोना चाहिए 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, तभी हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारा जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। उसके बाद है इस्तबास व इस्तफराग। ये 6 एसेंशियल इस्तबास इस्तफराग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर मटेरियल है, यानी जो ऐसी चीज़ें जिनको शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो हमारे मल और मूत्र और पसीने के द्वारा जो बाहर निकलते, इनका निकलना भी एक बैलेंस में होना चाहिए। किसी को पसीना ज़्यादा निकल जाएगा या अगर ज़्यादा यूरिन भी होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो इन सब का एक बैलेंस जो है वो असबाब सित्ते ज़रूरिया कहलाता है, और योग भी जो है शरीर और मन और आत्मा को बैलेंस में रखने का नाम है। तो हम योग करें और यूनानी चिकित्सा पद्धति के इन 6 एसेंशियल फैक्टर्स को अपनाएं और अपने शरीर, अपने समाज और अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में मदद करें।
0: अच्छा, जैसे योग के माध्यम से तो हम सब जानते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एक अच्छी दिनचर्या हमें अपनानी होती है। तो जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बड़े होकर के युवा बनेंगे और हमारे देश को आगे लेकर के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही योग को अपनाना चाहिए। तो ऐसे में आप माता पिता से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, पर अगर वो योग सीख लेंगे और प्रारंभिक से ही योगाभ्यास को करेंगे, या यूँ कहा जाए कि वो कम बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी अच्छी बात है कि लोग कम बीमार होंगे। तो ये एक जो स्वास्थ्य का एक जो बर्डन है समाज के ऊपर कि काफी पैसे खर्च होते हैं लोगों के अपने आप को स्वस्थ रखने में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: योग की आदत हम बचपन से ही डाल दें तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। और हमारे हॉस्पिटल्स में आजकल जितनी भीड़, जितनी रश हो रही है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात हो रही है, वो नहीं उत्पन्न होगी। बच्चों का शरीर और मन चंचल होता है जैसा आपने बताया, तो योग हमें संयम और स्वस्थ और स्थिरता की तरफ ले जाती है, जोड़ती है हमें हमारे शरीर को आत्मा से। तो हमारे माता और पिता से ये कहना चाहेंगे कि वो खुद भी योग करें और अपने साथ अपने बच्चों को बैठा के भी योग कराएं, योग की शिक्षा दें, और स्कूल और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनसे भी ये कहेंगे कि योग का एक क्लास करें वो, ताकि उस क्लास में बच्चे योग की साधना करें, योगाभ्यास करें, और ताकि उनको धीरे धीरे योग करने की आदत हो जाए। एक बार जो आदत जो न्यू बचपन में पड़ जाती है तो सारा जीवन हमें उसको करने में कोई असुविधा नहीं होती है। तो इसलिए अगर बचपन से ही योग को अपना लिया जाएगा तो सारे जीवन योग को अपनाएंगे और उनका शरीर, उनका स्वस्थ और उनका मन जो है वो कहीं आगे भटक ही नहीं पाएगा और अस्वस्थ नहीं हो पाएगा। इससे हमारा वातावरण, हमारा समाज स्वस्थ बनेगा, और जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो भीड़ बढ़ रही है, जो अटेंडेंस बढ़ रहे हैं क्लिनिकल, वो भी कम होंगे और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। योग जो हमारी प्राचीन जीवन शैली को अपनाने की बात करता है, तो वो जैसे प्राणायाम है, हल्के फुल्के आसन है, ताड़ासन है, भुजंगासन है, व्रजासन है, ये सब करेंगे बच्चे तो उनका शरीर लचीला बनेगा। शरीर लचीला बनेगा तो हमारे रोग क्षमता भी बढ़ती है, तो वो बढ़ेगी, तो हमारे बच्चे जो हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, वो स्वस्थ रहेंगे। और एक जब बच्चे करेंगे तो माता पिता भी सोचेंगे कि जब हमारे बच्चे जो मैंने सिखाए वो योग को रेगुलर कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, तो इससे हमारा स्वस्थ समाज जो है वो स्वस्थ बनेगा। तो हम ये उन लोगों से, माता पिता से, शैक्षणिक संस्थान से ये आग्रह करेंगे कि वो योग का क्लास लें और माता पिता घर में बच्चों को योगासन करने का की आदत डाल दें बचपन से।
0: तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे हम जो योग है और यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे एक स्वस्थ समाज

0: राज्य का हम निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोग कम से कम बीमार पड़ें, शारीरिक और मानसिक रूप से सबल रहें, स्वस्थ रहें, जिससे हमें जो बीमारियाँ हैं वो कम से कम हो। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे हम योग को अपना सकते हैं और कैसे यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अभय श्रोता पंचन सुनिन या भेंट वार्ता योग और तनाव प्रबंधन जानकारी देते रहीं डॉक्टर नजमुस सहर और इनसे बातचीत करें देवाशीष भैया, और हमका आशा है कि हमरे श्रोता पंच इन या भेंट वार्ता से जरूर प्रेरणा ली हैं और प्रेरणा लेत भय कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर या संकल्प ली हैं कि भाई योग का हम अपने दिनचर्या में शामिल करी, अपने आप का स्वस्थ रखी और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपन योगदान दी। और पंचो आपको बताई कि देखो योग से हम स्वस्थ तो रहबे करी थन, साथ साथ योग और भी काम करत है कि या जो हम हाई गर्मी कही रहे हैं ना, तो बहुत से ऐसे प्राणायाम है जो उनकी हमका गर्मी से भी राहत देते हैं, जैसे कि शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम या हमारे तन का अंदर से जो उन्हें शीतलता प्रदान करत है। तो भाई यहो का अपनाए कि आप देखो, और फिलहाल चलो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो ईमेल है वही का शामिल कर ली, या ईमेल हमारे पास आवा है दुर्गेश नागनपुरे के ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, साथ में है राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई दिव्यांश सूरज कुमार ढाक से, और या लिखेंगे कि कोई भी गीत सुनवा दें। तो चलो हम आपका गीत सुनवाए रहे हैं, और जैसे कि हम बताएं कि भाई योग से हम जो ने गर्मी पर राहत पाई सकी थन, तो यह तरह से गर्मी में और का किया जा सकत है यही के बारे में या लोकगीत में बताए रही हैं शिखा श्रीवास्तव के स्वर में। तो आप सब सुनो या लोकगीत।

पुरुषोत्तमपन जो कार्यक्रम में जो अगला फरमाइशी मेल हमारे पास आवा है या आवा है ग्राम खैगांव तहसील महेसर भेजे वाले हैं प्रेमलाल वर्मा, देविका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदनी, हर्षिता और ममता बाई। और यह सब लोगों ने लिखी नहीं कि कार्यक्रम इनका नीक लागत है और साथ ही में फरमाइश लिखी नहीं कि प्रीति लाल के स्वरमा इनका कोनो लोकगीत सुने का है। तो चलो आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं आपका प्रीति लाल के स्वरमा या लोकगीत।

और श्रोता बंजो देखो समय भाई बहुत तेजी से भागे लागत है, तो बस हम जल्दी से रफ्तार पकड़ ले और जल्दी से अगला ईमेल शामिल कर ले कार्यक्रम में। यह आवा है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से भेजे वाले हैं राम राज, राजू, भानु, राम शंकर, रक्षा मौर्य, राम सागर, रामचरण, और लिखेंगे कि 18 जून के जो कार्यक्रम सुनवावा गया वो इनका बहुत पसंद आवा। साथ में जो सरस्वती तिवारी की भेंट वार्ता रही वही इनका बहुत निक लगी कि बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा दें, दहेज ना भेंट करें। तो भैया अच्छी ही बात है, आपका पसंद आवा। और साथ में लिखी नहीं कि कोई भी गीत सुनवा दें, तो चलो आपका हम सुनवा रहे हैं एक बढ़िया से लोकगीत, आप आनंद उठाओ या लोकगीत क्या।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lk तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: और देखो भाई, डॉक्टर भक्ति शुक्ला की आवाज़ में जो लोकगीत आप सुनियो तो हम वही क्या हुई हैं। और गलका के तो मौसम भी चल रहा है, तो आप सब गलका बनाओ। यह के साथ आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी अनुमति लें, लेकिन चले से पहले आपका अपन पता बतावत चले भाई। ईमेल आईडी gharanganairlko@gmail.com पर आप हमका मेल कर सकते हो, और साथ ही अगर पाती लिखा चाहते हो तो आप हमका पाती लिख सकते हो, घर आंगन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ 18 विधानसभा मार्ग, पिन संख्या है 226001। और यह के साथ आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी दो अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
2: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, यह आकाशवाणी लखनऊ है। 1:50 हुए हैं। अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत है जवानों के लिए।

दिल है बेताब। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी उदित नारायण की, गीतकार थी रानी मलिक और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब उदित नारायण के साथ अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ गीत फौजी भाइयों आपके लिए। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, धुन बनाई है आनंद मिलन ने, और फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

0: बात बोलूं? शादी के जोड़े में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि तुम्हारे एक एक अंग को अपने प्यार के जेवर से सजा दूं, दुल्हन की तरह।
1: दुल्हन का सबसे बड़ा जेवर उसकी मांग का सिंदूर होता है, और देखो ना, वही नहीं है मेरे पास।

आई मिलन की रात। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। बोल समीर के थे और धुन बनाई थी आनंद मिलन ने। तुम मेरे हो, आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक गीत। आवाजें उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे की हैं।

उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे के गाए फिल्म तुम मेरे हो के इस गीत के साथ ही फौज भाई आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़

0: रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा

0: का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं।

0: प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी

0: सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: वीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सफलता के कहानी क्रम में केला, अमरूद और तरबूज उत्पादक श्री हरीश कुमार वर्मा के साथ की एक भेंट वार्ता सुनिए। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे सफल बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के रामपुरवा गांव के केला, अमरूद और तरबूज उत्पादन से जुड़े हरीश कुमार वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार, किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय मेरे पास केला है, तरबूज अभी लगभग 15 दिन पहले ख़त्म हो चुका है और ताइवान पिंक अमरूद है।
2: रकबा कितना कितना है?
3: मेरे पास 5 एकड़ केला है, 4 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद है और 3 एकड़ मेरे पास तरबूज था।
2: तो अमरूद से शुरुआत करें कि कहाँ से मन में जगा कि आप तो केला उत्पादन से हमेशा से जुड़े रहे
3: जी,
2: ताइवान पिंक अमरूद की तरफ रुझान कैसे हुई?
3: इसलिए हुआ क्योंकि केला में लगातार कुछ दिन से करते हुए मिट्टी में कुछ ऐसे फंगस डेवलप हो गया जिनसे केले के पौधों को नुकसान हो रहा था, फसल को नुकसान हो रहा था। तो केला के विकल्प में मुझे अन्य कोई फसल चाहिए थी। तमाम इधर उधर विचार करने के बाद चूँकि धान गेहूँ में हमको उतना उत्पादन या प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे केला में मिल रहा था, तो उसके विकल्प स्वरूप मैंने देखा कि ताइवान पिंक की आज बाजार में मांग बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड है, रेट भी अच्छा है, तो मैंने ताइवान पिंक अमरूद लगा दिया।
2: तो आपने लगाया कब?
3: ये हमने, मेरे पास 4 एकड़ अमरूद है जिसका 2 एकड़ मैंने 2023 में लगाया था। 2023 में लगाने के 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में उसकी मैंने बिक्री शुरू करी, उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैंने नया 2 एकड़ और लगाया।
2: यानी लगभग 4 एकड़?
3: 4 एकड़ जी।
2: और केला?
3: केला मेरे पास 5 एकड़ है। चूँकि मैं पहले तो केला का कुछ बड़ा काम करता था लेकिन ज़मीन में वही फंगस के कारण क्षेत्रफल काफ़ी कम कर दिया और ये जो 5 एकड़ केला भी मेरे पास है वो नई ज़मीन में है, यानी कि जहाँ पर हमने इसके पहले केला का उत्पादन नहीं करा था।
2: यानी फफूंद जनित बीमारी

0: लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है
1: जी।
0: हरीश भैया, केला उत्पादन में जो 5 एकड़ है आपका, उसकी रोपाई और उसके पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फलत की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
1: केला रोपण के पहले गर्मियों में जब हमको धूप मिलती है, गर्मी होती है, बहुत ही ध्यान देना होता है कि जितनी गहरी और अच्छी जुताई हम करेंगे उतना मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा। जहाँ थोड़ा सा वातावरण में नमी आती है, यानी कि वो मौसम करीब जून का होता है, तो जून में पौधे को, जून से मध्य जुलाई तक पौधे को रोपित कर देना होता है। उस बारिश के समय, जाड़ा आने के पहले लगभग 4 महीने का जो समय होता है, उसमें जितनी अच्छी हम देख रेख कर लेंगे, चूँकि डॉक्टर साहब जाड़े में मौसम का दुष्प्रभाव, जाड़ा के कारण, पाला के कारण हमारे केला का विकास सही नहीं होता है, तो इसके लिए जाड़ा शुरुआत होने के पहले हम अपने पौधे को 3-4 फीट का बढ़ा लें और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब अच्छी जल निकास व्यवस्था हो, समय समय पर उसको जो भी फर्टिलाइजर देना हो, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, तब उसकी हम ऐसा 4 फीट का वो कर सकते हैं।
0: अभी आपकी फसल किस हालत में है केला?
1: लगभग 70% फूल आ चुका है, 30% में अगले 10-15 दिन में फूल आ जाएगा।
0: यानी आपकी अगेती फसल है?
1: हाँ, थोड़ा सा अगेती है और इसकी कटाई लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगी।
0: उस समय भाव अच्छा रहेगा?
1: बहुत ज्यादा संभावना होती कि शुरुआत में लाभ अच्छा मिले।
0: और अमरूद में कौन कौन सी बारीकी आपने किया?
1: अमरूद में अभी 1-2 साल से फ्रूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, थोड़ा सा होता था, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा हुआ, मौसम का दुष्प्रभाव हो सकता है, तो फ्रूट फ्लाई की बहुत समस्या आ गई। तो इसके लिए अब अमरूद के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उसकी बैगिंग की जाए, फल की बैगिंग की जाए।
0: तो आप अमरूद की बैगिंग की तैयारी में हैं?
1: जी, मेरी बैगिंग मैं राजस्थान से मंगवा चुका हूँ, मेरी बैगिंग मेरे घर पे आ गई है। अभी जैसे ही मेरा नींबू के आकार का जो फल होगा तो उसकी बैगिंग हम शुरू करवा देंगे।
0: अमरूद की बागवानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसकी रोपाई से लेकर के पूरे साल?
1: जी, अमरूद की फसल में ये जो ताइवान पिंक प्रजाति है, ये चूंकि घना लगता है, 8x10 की हमारी दूरी है, और इन जो थोड़ा सा दूसरी प्रवृत्ति का होता है, मतलब जो हमारे जो पहले के पौधे होते थे उनकी अपेक्षा इसको नमी सब कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, तो पर्याप्त नमी देना होता है कभी भी। और जब फूल, चूंकि ये ऐसी प्रजाति कि इसमें साल भर फूल से फल बनते रहते हैं,
0: जी
1: थोड़ा सा साल भर में 2 समय ऐसा होता है कि तब थोड़ी सी हैवी फ्लावरिंग होती है या फ्रूट बनता है, वैसे फल मिलेंगे पूरा साल, तो उस समय जिस समय फूल से फल बन रहा हो या फल का विकास हो रहा हो, उस समय हमारे पौधे को नमी का बहुत ही ध्यान देना जरूरी
0: और
1: होता है।
0: खुराक भी?
1: जी, फर्टिलाइजर खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हमारा फूल से फल बन रहा हो उस समय जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो, जिन भी फर्टिलाइजर में, जैसे हमको इसमें यूरिया का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, NPK आप डाल सकते हो, पोटास से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप उसको ऐसे दे सकते हो, मतलब पोटास की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए
0: ताकि मिठास रहे, क्वालिटी
1: जी,
0: रहे,
1: क्वालिटी, पोटास
0: रोग धोख और कीड़ा मकोड़ा न
1: जी,
0: लगे।
1: उनका थोड़ा प्रभाव कम होगा।
0: और तरबूज में इस साल क्या स्थिति रही?
1: तरबूज का तो बहुत अच्छा रहा, पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा अच्छा रहा, जिन लोगों का शुरू में तैयार हो गया, यानी कि जिन्होंने बीज की बुआई अपने फरवरी के लास्ट में करी थी।
0: आपने कब की?
1: मैंने फरवरी के लास्ट में करी थी।
0: और 15 दिन पहले खत्म हो गए?
1: जी, 15 दिन पहले खत्म हो गया। और
0: कौन सी वेराइटी थी?
1: मेरे पास थी नोनियो सीड्स का आता है, सरस्वती और जन्नत,
0: हाँ,
1: दो प्रजातियां थी।
0: क्या खासियत है इसकी महसूस करते हैं?
1: मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की है।
0: तो कुल मिला जुला करके केला, अमरूद और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे चूंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा मुझे केला में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और केला के विकल्प में जहाँ पर केला नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, चाहे फंगस के कारण या अन्य कोई कारण, तो उसके विकल्प में ताइवान पिंक अमरूद या तरबूज, खरबूजा, इनकी खेती मेरे हिसाब से उपयुक्त।
0: पूरे साल की लागत की बात करें तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है केला, अमरूद और तरबूज में?
1: डॉक्टर साहब, इन तीनों चीजों को मैं अलग अलग करके बता सकता हूँ, साल भर में तो नहीं बता सकते। केला में लगभग

0: लगभग 1.25 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है। अगर औसत दर्जे का मुझे रेट मिल जाए तो लगभग 3 साढ़े 3 लाख का बिक जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, लेकिन ये 15 महीने में होता है। तरबूज की बात करें तो तरबूज की फसल 70 से 90 दिन की होती है और इसमें करीब 1 एकड़ पर 50 से 60 हज़ार रुपये लागत आती है और ये बिक्री लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है। अगर आप 50-60 हज़ार रुपये आप अपने लागत के निकाल लें तो लगभग आप 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो सकता है प्रति एकड़ 3 महीने में।
1: और अमरूद में?
0: अमरूद में लगभग 1 एकड़ की लागत एक साल में प्रथम वर्ष होगी लगभग 50 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये, और द्वितीय वर्ष में इसकी आधी हो जाएगी। चूंकि अमरूद में एक काम ज्यादा होता है, हर साल उसकी कटिंग करना, और जितना आप कटिंग करोगे, जितनी अच्छी आप कटिंग करोगे, आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा। फल का साइज और उसका स्वरूप दोनों बेहतर होंगे।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि अगर वो केला उत्पादन करते हैं तो केला में जो उनको लाभ हो रहा था, जैसे उनको काम करने में अच्छा लग रहा था, तो अगर किन्हीं कारणवश केला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आकर्षण इधर अगर होता है तो उसके विकल्प स्वरूप अच्छी चीज़ है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 800-900-2122, 800-900-2122, 800-900-2122।
1: हरीश कुमार वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप केला के लाल तो है ही हैं, आपने नई शुरुआत की है अमरूद उत्पादन की और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं, कुल मिला जुला करके जो आपकी सफलता की कहानी थी उसको आपने सुनाया और किसान भाई आपसे सीख लेंगे आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सफलता की कहानी के क्रम में अभी आप केला, अमरूद और तरबूज उत्पादक श्री हरीश कुमार वर्मा के साथ की गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। 2:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कोई ही व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। श्री ओमपाल, पुत्र श्री रामसरन, निवासी एमापुर, थाना अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद से हमें सूचित करते हैं कि शिवम, जिसको उम्र 26 वर्ष है, कद 5 फीट 8 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। शिवम पिछले 26 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को शिवम के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री ओमपाल, पुत्र श्री राम सरन, निवासी ग्राम एमामापुर पूर्वी, थाना अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद। श्री सर्वेश, पुत्र श्री राम, निवासी ग्राम द्यूरिया कल्याणपुर, थाना सिधौली, जनपद शाहजहाँपुर से हमें सूचित करते हैं कि सुमित, जिसको उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। सुमित पिछले 22 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को सुमित के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। सर्वेश, पुत्र श्री राम, निवासी ग्राम देवरिया कल्याणपुर, थाना सिधौली, जनपद शाहजहाँपुर। श्री भोगपाल, पुत्र श्री बाबूराम कश्यप, निवासी हैदलपुर पुलिस थाना पर और जनपद शाहजहाँपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, अरुण, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, ऊंचाई 3 फुट 5 इंच, रंग सांवला है। अरुण पिछले 6 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को अरुण के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री भोगपाल, पुत्र श्री बाबूराम कश्यप, निवासी हैदलपुर पुलिस थाना परौर, जनपद शाहजहाँपुर।

श्री सुनील पुत्र श्री बालक राम निवासी ग्राम खजूरी पुलिस थाना परौर शाहजहाँपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा कुमारी जिसकी उम्र 16 वर्ष है, रंग गोरा, चेहरा गोल है। पूजा कुमारी पिछले 23 मई 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को पूजा कुमारी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री सुनील पुत्र श्री बालक राम निवासी ग्राम खजूरी पुलिस थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। लीजिए अब कुछ कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुनिए। आज अपराह्न 3:55 से आप सुनेंगे हुगली में तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का सजीव प्रसारण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले किया जाएगा। समय याद रखिएगा 3:55 से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 11:10 पर। आज का विषय है संस्कृति। समय याद रखिएगा 11:10। रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8 राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज रात 8:00। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। वीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। दिन के 2:45 हुए हैं। लोक माधुरी लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अवधि युगल लोकगीत। स्वर सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा के हैं। आइए पहले सुनते हैं एक देवी गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं अवधि युगल लोकगीत। आज कलाकार हैं सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा। इस देवी गीत के बाद अब सुनिए ये गंगा गीत।

ये गंगा गीत अभी आप सुन रहे थे। लोक माधुरी में आज कलाकार हैं सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा। आइए अब अंत में एक नकटा।

0: अभी आप सुन रहे थे अवधि युगल लोक गीत। कलाकार थे सुमिता श्रीवास्तव और श्रद्धा। आपके साथ ढोलक पर संगति की थी इफ्तिखार आलम ने। हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी। बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर थे संजय श्रीवास्तव। इसके साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न होता है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपराह्न 3:55 पर हमारा अगला प्रसारण होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी लखनऊ है। अपराह्न के 3:55 होने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा अब आरंभ हो रही है। कृपया हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय

0: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल व्हेन द कंट्री डेवलप्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that

0: Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Sone ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. Yeah. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव।

0: और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So

0: each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है, और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
1: Even is tarah ki jo takniki hai Vaibhav, aaj se ek jaisa ki tumne kaha ki ek dashak pehle is tarah ki parikalpana bhi aap nahi kar sakte the ki iske माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे बीच
0: मंच
1: में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और वो
1: हार्दिक स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने के
0: ये लोगों की
1: अलावा
0: आवाजें,
1: आज माननीय
0: उनको अभिवादन करते
1: प्रधानमंत्री
0: हुए,
1: श्री
0: उनका
1: नरेंद्र मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: की
0: हुए
1: कई
0: हैं, और माननीय
1: परियोजनाओं का
0: प्रधानमंत्री महोदय
1: शुभारंभ
0: ने अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण कर
1: तथा
0: लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसोगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसोगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
1: सिद्धार्थ, यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, ऑफ लेगेसी, ऑफ हेरिटेज, ऑफ स्वीटनेस, ऑफ all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लौह प्रणाम। भारत केसरी, लौह प्रणाम। स्वामी प्रणवानंद, लौह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has

0: been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने.
0: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is of course of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
1: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई. आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं.
0: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है. बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है. यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है. आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है. बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं. आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है.

ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में

कोलकाता में ही हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को

तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है।

मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती

आत्मा को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है।

0: जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: मीडियम वी पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग।

युवा तरंग के सभी साथियों को अविनाश का नमस्कार। मित्रों, ये हम भलीभांति जानते हैं कि 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज कुछ बात हम आपसे उसी विषय पर करते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय शैली और विज्ञान है जो मन, शरीर और आत्मा को आपस में जोड़ता है। संस्कृत में योग शब्द का अर्थ है जुड़ना या एक होना। यह व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन है। इसमें मुख्य रूप से शारीरिक मुद्राएं यानी कि आसन और श्वास नियंत्रण यानी कि प्राणायाम शामिल है। साथ ही यह तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और मानसिक शक्ति शांति प्रदान करता है। साथ ही यह केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि अनुशासन, नैतिकता और स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। तो योग अपनाइए

0: स्वस्थ रहिए।
1: छोरी है, समझ के लड़ियो।
2: बस छोरी समझ के ना लड़ियो।

मित्रों, योग को अभ्यास और जीवन शैली के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वर्तमान में स्वास्थ्य और फिटनेस को के अपनाने के लिए जो योग के साथ प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें सबसे पहले हठ योग की बात करते हैं। यह सभी प्रकार के शारीरिक योगों का आधार है। इसके मुख्य रूप से शारीरिक मुद्राओं और श्वास नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है। यह धीमी गति से होता है, इसीलिए शुरुआती लोगों के लिए यह बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद विन्यास योग, इसे अक्सर फ्लो योग भी कहा जाता है। इसमें हर मुद्रा को श्वास के साथ जोड़ा जाता है, जिससे एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में नियंत्रण, निरंतर और सहज प्रवाह बना रहता है और काफी सक्रिय और गतिशील रहता है। इसके बाद आता है अष्टांग योग। यह एक बहुत ही गहन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण योग की शैली है। इसमें आसनों का एक निश्चित और कठोर क्रम होता है और सांस के साथ तालमेल बैठाकर तेजी से किया जाता है। आयंगर योग, ये एक ऐसा योग है जिसका नाम एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा। BKS आयंगर द्वारा इसे विकसित किया गया। इस शैली में शरीर के सटीक संरेखण पर बहुत जोर दिया जाता है। सही मुद्रा हासिल करने के लिए इसे विशेष उपकरणों जैसे ब्लास्क, स्पेक्टस और कुशन का उपयोग किया जाता है। अब बारी आती है कुंडलिनी योग की। यह योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति, मंत्रोच्चार, ध्यान और श्वास प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य शरीर की सोई हुई ऊर्जा यानी कि अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होता है। एन योग, यह एक योग ऐसा है, यह एक बेहद धीमा और ध्यान मग्न करने वाली शैली है। इसमें शरीर के संयोजी ऊतकों,

में खिंचाव लाने के लिए किसी एक मुद्रा या आसन को कई मिनटों तक शांत अवस्था में रोककर रखा जाता है। फिर होता है हॉट योग। यह शैली लगभग 105 डिग्री फॉरेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गर्म स्टूडियो में की जाती है। उच्च तापमान के कारण शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और लचीलापन बढ़ता है। तो मित्रों, योग को अपनाना हमें अपने शरीर को शुद्ध करना होता है।

जो जिन्हें व्यवस्थित किया गया है, वह उचित व्यायाम, उचित श्वास प्रक्रिया, उचित विश्राम, उचित आहार और सकारात्मक सोच, साथ ही ध्यान। अगर इन सबको आप निरोगी रह पाएगा, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ अविनाश को अनुमति दीजिए आज की युवाणी से।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का नई उड़ान कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ आज की शाम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे पारंपरिक क्षेत्र आज भी उम्मीद जगाए हुए हैं आने वाले कल की हमारे खास सेगमेंट इंडिया अनप्लग्ड में, और साथ ही होगा खूबसूरत से गीतों का। लेकिन इसके पहले हमारा आज का मुद्दा, आज तारीख है 20 जून और दिन है विश्व शरणार्थी दिवस। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर किसी सुबह आपको यह कहा जाए कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, अपना आंगन, अपनी गलियां, अपने पड़ोसी और यहां तक अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं और जाना होगा, और आप सिर्फ उतना ही सामान कहीं ले जा सकते हैं जितना कि आपके हाथों में आ जाए। सिर्फ ये सोचकर ही मन कितना भारी हो जाता है ना? दुनिया में लाखों लोग ऐसे ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं या उत्पीड़न उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों को ही हम शरणार्थी कहते हैं। यहां पर एक बात यह समझने की है दोस्तों कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से बना मकान नहीं होता है। घर वो जगह होती है जहां हमें अपनापन मिलता है। घर वो जगह होती है जहां हमारी यादें बसती हैं, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां किसी से उसका घर छीन लेती हैं, तब सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ रोटी या कपड़ों की नहीं बल्कि इंसानियत और भरोसे की होती है। आज का दिन हमें यही संदेश देता है कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है, लेकिन दर्द और उम्मीद की भाषा हर जगह एक जैसी ही होती है। हम सब शायद किसी शरणार्थी की जिंदगी तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने व्यवहार से दुनिया को थोड़ा बेहतर जरूर बना सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील होना, भेदभाव न करना और मानवता को सबसे ऊपर रखना, यही आज के इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है। तो चलिए अब सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और गीत के उस पार, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था, हमारा आज का विशेष कार्यक्रम है जो पारंपरिक क्षेत्रों से उठती उम्मीदों के बारे में जानकारी देगा। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नई उड़ान में, और अब समय है हमारे आज के सेगमेंट इंडिया अनप्लग्ड के अंतर्गत हमारा OB रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम सुनने का, जिससे

0: आज तैयार किया है हमारे कंपियर साथी अभिषेक शर्मा ने और विषय है पारंपरिक क्षेत्रों से उठती उम्मीदें। तो आइए सुनते हैं।
1: किसी भी शहर, गांव या समाज की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों और चमकती सड़कों से नहीं होती। उसकी असली पहचान उन हाथों से होती है जो पीढ़ियों से अपनी कला, मेहनत और परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, नई उड़ान की विशेष श्रृंखला इंडिया अनप्लग्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आज हम बात एक ऐसे विषय की करेंगे जिसमें हमारी परंपराएं सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी लोगों की आजीविका, सम्मान और सपनों का आधार है। वो कुम्हार जो मिट्टी को आकार देता है, वो बुनकर जो धागों में संस्कृति बुनता है, वो कारीगर जिसके हाथों में वर्षों का अनुभव छिपा है, ये सभी हमारे पारंपरिक क्षेत्रों की ताकत है। दोस्तों, बदलते दौर में चुनौतियां भले बढ़ी हों, लेकिन इन्हीं क्षेत्र से नई उम्मीदें भी जन्म ले रही हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारी पुरानी विरासत आज नए अवसरों और नए सपनों का रास्ता बना रही है। जैसे थोड़ा सा डिजाइन बदल देने से, थोड़ा सा नया लुक दे देने से, क्या जो हमारी पुरानी चीजें हैं उस पर जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है?
2: जी बिल्कुल बढ़ता है।
1: अच्छा, वो लोग कितने खुश हैं जिनसे आप बनवा करके लेके आते हैं, क्योंकि उनको तो घर बैठे काम मिल रहा है, तो मतलब जो प्रॉफिट होता है उसमें वो खुश हैं?
2: जी बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उनको उनकी कारीगरी मिलती है, उनका मेहनताना उनको दिया जाता है और उससे उनका परिवार चल रहा है।
1: आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपनी परंपराओं से, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है? कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं?
3: ये करीब हो रहे 30-35 साल से हम लोग को।
1: जैसे लोग कहते हैं कि जो पहले के समय के काम थे अब वो थोड़ा फीके पड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा उसमें रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं, तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर?
4: हमारे बाप दादा से बनता आ रहा है, वो हम भी पैदा हुए बचपन में सीखे, सीखते सीखते तब अपना सीख लिए पूरा, हम ही लोग तक है जब तक है। हाँ, आगे कहीं कभी बच्चे है, आगे नहीं अब सीख रहे हैं।
1: समय बदल रहा है, बाजार बदल रहे हैं और लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। लेकिन एक चीज जो आज भी कायम है वो है हमारे पारंपरिक क्षेत्रों की पहचान। कभी सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित रहने वाले ये व्यवसाय आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं के माध्यम से देश विदेश तक पहुंच रहे हैं। अब एक छोटे से गाँव का कारीगर भी अपने हुनर को दुनिया के सामने ला सकता है। इन क्षेत्रों से जुड़ी सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ रोजगार नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत को बचाए रखने की भी है। जब कोई युवा अपने परिवार के पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो वो सिर्फ एक काम नहीं करता बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करता है। आज जरूरत है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कलाकारों का सम्मान करें और उनके प्रयासों को पहचान दें, क्योंकि जब परंपरा आगे बढ़ती है तब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। क्या नाम है भैया आपका?
2: मोहम्मद वसीम।
1: ये बताइए, जब हम पारंपरिक व्यवसायों की बात करते हैं तो आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपनी परंपराओं से, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं?
2: बहुत सी चीजें हैं, जैसे अरहर की लकड़ी की डलिया है, बांस की लकड़ी की डलिया है, और सीख वाला सूप होता है, एक बांस का सूप होता है, पंखा होता है हमारा खजूर का, बांस का पंखा होता है, और उसी तरीके की जो है रंगीन डलियाएं होती हैं, और मूंछ की बनी डलिया होती है, और प्लास्टिक की होती है।
1: तो ये भैया आप अपने हाथ से बनाते हैं या लेकर के आते हैं?
2: नहीं, ये गाँव में बनवाते हैं, उसके बाद में उसको शहर में लेके आते हैं। जी,
1: गाँव में कहाँ?
2: गाँव में जैसे आपका लोकल में कहें तो आजमगढ़ में बनती है और रायबरेली में बनती है, और जो है इधर आपका सीतापुर साइड में बनती है, उन एरियो में, और पंखा वगैरह जो होता है वो आपका गोंडा में बनता है और कर्नलगंज में बनता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनसे जो है काम करवाते हैं, उसके बाद में उसको यहाँ लेके आते हैं, फिर उसको बेचते हैं। इससे 4 पैसे का प्रॉफिट हमें, मुनाफा हमको होता है और उन गांव वालों को होता है, जिससे उनकी दिनचर्या जो है चालू रहती है।
1: अच्छा, जैसे थोड़ा सा डिजाइन बदल देने से, थोड़ा सा नया लुक दे देने से, क्या जो हमारी पुरानी चीजें हैं उस पर जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है?
2: जी बिल्कुल बढ़ता है। जैसे कोई डलिया होती है, अगर वो बहुत बड़े साइज में मोटी बिना भी बनी हुई है तो उस पर इंसान उतना गौर नहीं करता है, और वही अगर डलिया महीन बनी हो, खूबसूरत, थोड़ी छोटी कर दी जाए तो उस पर जो है कस्टमर ज्यादा रुझान करता है कि हाँ इसको जो है घर में भले उसका यूज ना हो पर उसको लेके रखा जाए घर में, ऐसा होता है।
1: अच्छा, हम जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं कि जो हमारी देसी चीजें हैं, जो हमारी

0: खेती से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बीच में रहते हैं जो हुनरमंद लोग उसको बनाते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ये बहुत सही चीज़ है जो चल रही है, नहीं तो प्लास्टिक की चीज़ें आजकल चल रही हैं, कहाँ उतनी सक्सेस होती हैं। उनसे जो है ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, अपनी प्रकृति से लगी हुई, जुड़ी हुई, और जो हमारे गांव क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं उनको भी उससे फ़ायदा मिलता है।
0: अच्छा, वो लोग कितने खुश हैं जिनसे आप बनवा करके लेके आते हैं, क्योंकि उनको तो घर बैठे काम मिल रहा है, तो मतलब जो प्रॉफिट होता है उसमें वो खुश हैं?
1: जी बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उनको उनकी कारीगरी मिलती है, उनका मेहनताना उनको दिया जाता है और उससे उनका परिवार चल रहा है।
0: और पूरा परिवार एक साथ बैठ के काम करता होगा?
1: हाँ, वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब एक साथ बैठ के बिनती हैं और आपस में जो है काम करती हैं।
0: चलिए, आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप इस तरह के व्यवसायों को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप जो मुनाफा पा रहे हैं उस मुनाफे से जो इस तरह के कारीगर हैं जो अपने मिट्टी से जुड़े हुए काम को कर रहे हैं उनको भी आप लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
1: जी थैंक यू।
0: दोस्तों, जब हम पारंपरिक व्यवसायों की बात करते हैं तो मिट्टी के बर्तन का जिक्र सबसे पहले आता है, और एक मिट्टी के बर्तन के कारोबारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो चाहे वो मिट्टी के घड़े हों, गुल्लक हों, या और भी सजावटी सामान हो, वो सब बेचने का काम करते हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका?
2: मनोज कुमार हमारा नाम है।
0: भैया, आपके यहाँ पे जो मिट्टी से बने हुए सामान है वो क्या क्या अभी है, और कैसे आप लोग इसको खुद बनाते हैं या लेकर के आते हैं?
2: हम लोग ये अपना सामान बनवाते हैं, अपना खुद घड़े हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन है, सारे सुराही है, ये सब पूरा सामान बनाते हैं, कलश अलग सब पूरा बनवाते हैं हम लोग। ये
0: तो किसी से बनवा करके लेकर के आते हैं?
2: हाँ, बनवाते हैं हम लोग, ऑर्डर देते हैं इसको।
0: कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं?
2: ये करीब हो रहे 30-35 साल से हम लोग का।
0: जैसे लोग कहते हैं कि जो पहले के समय के काम थे अब वो थोड़ा फीके पड़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा उसमें रोजगार की संभावनाएं नहीं है, तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर?
2: अब सब घरों में फ्रिज आ गई है, घड़े अब ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो बीमार इंसान होते हैं वही घड़े लेते हैं ज्यादातर।
0: और सजावटी सामान की अगर बात करें तो?
2: सजावटी सामान के लिए बाकी जो पूजा पाठ में जो लगता है वो तो लगता ही है, जैसे कलश है और ये सब शादी के बर्तन है सारे, ये सब लगते रहते हैं।
0: तो जैसे आप खरीद करके लेके आते हैं और बेचते हैं, तो इसमें जो भी आपका एक मुनाफा होता होगा थोड़ा बहुत भी, तो उससे मतलब जीवन यापन बढ़िया होता है?
2: हाँ, दाल रोटी भर का चल जाता है बस, और इसमें क्या है, जितना बिका बाकी तो रखा ही रहता है।
0: कभी टूट फूट भी हो जाती है, नुकसान भी होता है?
2: हाँ, टूटता तो बहुत है, बर्तन आने में भी टूट जाता है, लगाने में भी टूटता है, हम लोगों का नुकसान तो ज्यादा होता है इसमें।
0: जैसे बच्चों के लिए गुल्लक है या और भी खिलौने भी हैं कुछ मिट्टी के, हम देख रहे हैं आप
2: दीपावली में वो सब खिलौने लौने ज्यादा बिकते हैं, तो उसमें उस समय ज्यादा बनते हैं हम लोगों के, अभी तो कोई खिलौने का कोई काम भी नहीं है।
0: तो ये व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
2: अब हम लोग का पारंपरिक जो परिवार से चला आ रहा तो हम लोग तो करते ही हैं, बाकी और कोई कर पाए या ना कर पाए, हम लोग को तो पुराना ही है धंधा ही है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करें, धन्यवाद
2: आपका।
0: अभी हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो लखनऊ के कैसर बाग इलाके में रहते हैं, और आप एक छोटे से मकान में अपने इस व्यवसाय को चला रहे हैं, और अपने हाथों से ही बांस की जो चीजें हैं, चाहे वो जूता चप्पल रखने का रैक हो या शादियों में इस्तेमाल किया जाने वाला मोर हो, उन सभी चीजों को बनाने का काम करते हैं। तो फिलहाल हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन और क्या क्या चीजें भैया बनाते हैं उनसे जरा सा बातचीत करेंगे। थोड़ा अपना नाम बताइए भैया।
3: बुझारत।
0: क्या उम्र होगी आपकी?
3: 57 साल।
0: अच्छा, क्या क्या काम आप करते हैं?
3: हम बहुत सा काम करते हैं, रक्से पे पर्दा बनता है, जो पर्दा लगाते हैं उसको पंजा बोलते हैं, जो खोंचा बेचने वाले बेचते हैं, जो नीचे रख कर उसको तन्ना बोलते हैं वो बनाते हैं, बहुत सा आइटम, 50 आइटम हम बनाते हैं, जैसा ऑर्डर आता है वैसा बनाते हैं।
0: अपने हाथ से
3: ये बास्केट बनाते हैं, जो फूल उल सजता गुलगस्ता, रैक बनाते हैं, छितनी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, दौरा बनाते हैं, दौरी बनाते हैं, ये सब जो आइटम जितने हैं 50 आइटम का हम कारीगर हैं, हम ये बनाते हैं, जैसा ऑर्डर आता है उस तरह काम हम करते हैं।
0: तो कैसे सीखा ये बनाना आपने?
3: ये हमारा ये खानदानी काम है, हमारे बाप दादा से बनता आ रहा है, वो हम भी पैदा हुए बचपन में सीखे, सीखते सीखते तब अपना सीख लिए पूरा आइटम, हम जब सीख लिए तो अपना काम धंधा अलग करने लगे। अपना हमारा घर है आजमगढ़।
0: अच्छा।
3: यहाँ हम 27 साल से हैं।
0: आजमगढ़ में कहाँ घर है चाचा आपका?
3: कटरा आनंदपुरा घर है हमारा, और यही काम करते हैं। अब आपके पीढ़ी आगे नहीं बस सीख रहे हैं, सब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, ये काम नहीं करने चाहते हैं, कहा कि ये काम कुछ रंग उंग भी का काम होता है, तो उनको रंग उंग नहीं लगना चाहिए, बड़े अब दूसरे हिसाब से है, हम ही लोग तक है जब तक है।

0: हाँ आगे कहीं कभी बच्चे हैं, आगे नहीं नहीं अब सीख रहे हैं। और
1: अभी कौन कौन लोग साथ में काम करते हैं आप?
0: हमारे बच्चे करते हैं जो मतलब सीखे हैं तनी मनी, हमारी वाइफ करती है, हमारी जो बूढ़ा है वो करते हैं, हम करते हैं और कोई ना जो हमारे घर में है वो करते हैं मतलब।
1: अच्छा तो अगर चाचा हम ये जानना चाहें कि जो आने वाली पीढ़ी है, आपने कहा कि हालांकि वो सीखना नहीं चाहते हैं या इस व्यवसाय में नहीं लगना चाहते हैं, तो क्या इस व्यवसाय को और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर सोचिए कि मौर बनना बंद हो जाएगा तो जब शादियाँ होंगी तो लोग अपने सिर पर क्या रखेंगे, ये सवाल है कि नहीं?
0: उसके लिए अब हम क्या समझाते तो हैं बच्चों के कि भैया आप सीखो करो, जब वो नहीं कर रहे उनको इनके मेहनत ज्यादा लगता है इसमें। आप दुकान पे कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो एसी के नीचे कर रहे हैं, उनको लिए ये आराम है, हम लोग उतना मेहनत कर चुके हैं, अब वो उतना मेहनत नहीं आप करने चाहते हैं बच्चे,
1: मतलब हेडक नहीं लेना चाहते हैं ना, उनको सीधा जाइए कि सुबह 10 to 5 नौकरी चाहिए,
0: आराम से अपना काम किए, समय से अपना घरे चले। हम लोग हैं बनाते हैं, बेचते हैं, ले जाके बेचते भी हैं, कहीं ऑर्डर रहता दे भी देते हैं, वो सब ये काम उनको झंझटी लगता है।
1: तो मतलब किसी के अंडर में होकर के काम करना ठीक है या थोड़ा हेडक लेकर के अपने लिए राजा बनकर के काम करना ठीक है?
0: नहीं अपने लिए, हम लोग के लिए तो अपने लिए, जब घर में बैठ के पंखे के नीचे आराम से कर रहे हैं, अब किसी के आधार पर काम करेंगे वो कैसे करवाएगा, कहाँ बैठाएगा?
1: कभी छुट्टी मिली कभी नहीं,
0: कभी नहीं मिली, इसलिए हम लोग बहुत कम दूसरे के नौकरी उकरी पसंद करते हैं, अपना काम खुद हम लोग के ऑर्डर हर सीजन में ऑर्डर आता रहता है, काम करते रहते हैं।
1: अच्छा एक चीज बस और पूछना चाहेंगे कि जो लागत होती है और जो इनकम होती है उसमें जो जो मतलब पैसा बचता है उससे घर का खर्च चलता है या समस्याएं आती हैं?
0: नहीं खर्चा तो चल जाता है आराम से, बात नहीं है, खर्चा जो चल जाता है, अगर 100 रुपये की लागत में 500 रुपये काम हो जाता है तो 400 रुपये में खर्चा चल जाता है।
1: दोस्तों उम्मीदें हमेशा नई चीजों से ही जन्म नहीं लेती, कई बार वे उन पुरानी राहों से भी निकलती हैं जिन पर हमारे पूर्वज वर्षों से चलते आए हैं। पारंपरिक क्षेत्र केवल रोजगार का साधन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे आत्मसम्मान की नींव हैं। यदि हम इन्हें सजो कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि गर्व करने लायक विरासत भी सौंपेंगे। इन्हीं उम्मीदों और सपनों के साथ मैं अभिषेक लेता हूं आपसे विदा। याद रखिए, अपनी जड़ों से जुड़कर ही हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: दोस्तों कार्यक्रम में अब समय है आपको विकास समाचार और रोजगार अवसर की जानकारी देने का। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगभग 1,766 करोड़ रुपए की लागत वाली 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। साथ ही युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में नए प्रयास तेज किए हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देना है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, पेयजल और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार और लघु उद्यमों से जोड़ने के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्यमी बनाना है। और अब रोजगार अवसर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने विधान भवन में अग्निशामक, फायरमैन सहित कुल 170 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत और चर्चा गीत के उस पार जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा

0: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम नई उड़ान अपने समाप्ति की ओर आज बढ़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आपके सुझाव और फीडबैक हमारे कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम आपके हिसाब से आप तक जानकारियों को पहुंचा सकें। और आप सुझाव देने के लिए हमें पत्र लिख सकते हैं, और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। तो आप अपने सुझाव और फीडबैक हमें इस पते पर लिख करके भेजते रहिए और अगले कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना सुनिए। रविवार 21 जून 2026 को प्रातः 10 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के मेहमान। इसमें मेहमान होंगे श्री रंजन कुमार, प्रमुख सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश, और इनसे बातचीत करेंगे सुभाष खन्ना। तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम आज के मेहमान 21 जून 2026 को प्रातः 10 बजे FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी। रविवार 21 जून 2026 की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य सुनिए कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम होगा और विशेषज्ञ होंगे योगाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी श्री कृष्णदत्त मिश्रा। आप इनसे जुड़ सकते हैं इन फ़ोन नंबरों के माध्यम से। फ़ोन नंबर हैं 0522-223-8845 और 0522-223-8852 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस 21 जून 2026 की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर। सूचना समाप्त हुई। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ट्राई लेते हो, और वही के साथ साथ देखो तमाम चीज़ें और भी हुई जाती हैं, और जैसे बाहर वहर निकले के यहाँ है, बाहर के भी काम का तमाम होती हैं। तो जावत भाई लौटत भाई यू प्रयास रहा थे कि 11 बजे तक लौटे हो, अगर बाई चांस कभी ज़्यादा देर हुई गए तो 12 बजे ही जाती है
1: भाई। देखो ये तो गृहस्थी है, समय है, अपन कहूँ कहूँ निकलो तो देर हो जाता है, लेकिन सावधानी रखो भाई। देखो गर्मी बहुत है, लू बहुत चलत है, और इमें बीमारी आजारी के डर रहता है, अगर घाम लग ही गया तो जान लो कि जौन बा खोपड़िया पकड़ ही लेता है और दर्द करे लागत है, ये लू लग जाए तो भाई और तो दिक्कत हो जाए, तो सावधानी रखा अपन।
0: बिल्कुल भैया, देखो हम पंचे अपनी बदकही में अधिकतर गर्मी के बारे में यहाँ लू बचत रहे कैसे बचत रहे सब चीजन के बारे में यहाँ अधिकतर देखो बदकही कीन करी थी कि जैसे भैया देखो हम पंच भी स्वस्थ रही और जो हमारे पंच भाई हैं वह स्वस्थ रहे। और देखो निकरत पहले जैसे बताओ ना कि अंगोछा ना अगर वो करो तो भैया देखो अंगोछा लगा लें, चश्मा पहन लें, पानी की बोतल अपन साथे में यहाँ रखें, और अपन देखो घर में है या बाहर है, छाछ है, पना है, भैया ये सब चीजन का सेवन जरूर करती रहे।
1: बिल्कुल, देखो अपने शरीर के अनुसार अपने व्यवस्था के अनुसार आप
0: हाँ
1: निकलो, ज़्यादातर तो यू करो कि भाई देखो निपटा लो काम जौन बा दोपहरिया से पहले,
0: हाँ
1: अगर वो ज़्यादा निक है तो भाई देखो बचे रहो, तब भाई अपन जौन बा घर गृहस्थी निक रहे और सबके बचाए रहो। और कल देखो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जब स्वस्थ रही हो तब तो काम करियो। कल कौन काम है बहनी?
0: भैया देखो कल है 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाते है, तो देखो भैया सब जने आज तेरे तैयारी कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर कल मनाया जाए, आज भी कर रहे हैं। तो भैया देखो योगा दिवस मनावा जाते है, हर साल मनाया जाते है 21 जून की, दिन भी निश्चित तारीख भी निश्चित कह रखा है। वही देखो एक समूह में यहाँ रह के सब लोग योगा करते हैं और यह संदेश देते हैं कि देखो सब जने अपन रोज केरी दिनचर्या करे अपने जीवन में यहाँ एक योग जरूर शामिल करें।
1: बिल्कुल भाई, ये योग जौन बा अपने दिनचर्या में है, और यो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पहल पे विश्व जौन बा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जौन आप कह रहे हो मनावा जाता है।
0: हाँ
1: अब भाई देखो योगा तो जौन बा हम कह जाए कि जौन बा सवेरे उठो तब भाई सांस ऊपर नीचे करो, अब जौने कहिया तो प्राणायाम करो, जौन बा अनुलोम विलोम करो।
0: हाँ
1: अब कुछ ऐसा योगा है कि अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करो, काहे कि अगर स्वस्थ रहे है तो
0: हाँ
1: हमें पंचन की योगा रोज करे है। देखो योगा दिवस तो मनावा जाते हैं के लिए कि भाई देखो आओ लोग प्रेरित हों,
0: बिल्कुल भैया,
1: लेकिन
0: देखो
1: सब लोग
0: वही
1: एक
0: सब लोग
1: जरूर
0: जागरूक हैं वे खातिन यह एक संदेश है देख मारे है कि देखो योग बहुत जरूरी है अपने शरीर खातिन और स्वस्थ रहे खातिन। तो भैया वही का अपन
1: कि
0: हाँ
1: कहो करो योग रहो
0: रहो
1: निरोग।
0: निरोग हाँ
1: हाँ तो बहनी देखो जौन बा योग जरूर करो, अब अपन शरीर नगद रखे रहो, अपन शरीर नगद रहे तो कहूँ डॉक्टर वोक्टर की यहाँ जाए जरूरत ना पड़ी।
0: बिल्कुल भैया, देखो सरकार तो अपन देखो हर चीज की व्यवस्था भी करत रहा है कि कैसे अपन गांव के लोग कैसे अपन पंच भाई कैसे अपने क्षेत्र के लोग कैसे देखो सुखी रहें संपन्न रहें और कोनो चीज के दिक्कत परेशानी का उनका सामना ना कर उठावे के यहाँ पर है, और कैसे सब देखो चीजें बढ़िया चीजें होते रहें, कोनो बीमार आजार ना हो जाते कि भैया देखो सब जने अपन काम धाम निकी तरह तरह करते रहें।
1: बिल्कुल भाई, देखो जब शरीर स्वस्थ रही तो सारी गृहस्थी स्वस्थ रही, और अपन
0: हाँ
1: शरीर जोन बा खराब भाई तो सारी गृहस्थी माटी हो जाता है। यू एकदम से पुरनिया का कहावत है,
0: बिल्कुल
1: और
0: भैया,
1: भाई
0: देखो
1: देख
0: बड़े बुजुर्ग रहते हैं घर पर रहते हैं तो देखो वही पहले कोनू कोनू बात करो कोनो काम करो कोई चीज करो देखो वही रोंका टोंका जरूर करते रहे, वही के पीछे एक यह कारण रहे कि देखो सही समय पर देखो कामों करे सवेरे होते रहे तो सवेरे जल्दी ही उठावे लगते रहे, उठो जल्दी उठो, देखो भाई बाबा हमारे तो अधिकतर उठावा कर रहे हैं हमका तो हमका याद ही है और सवेरे 4 ही बजे उठा देते रहे।
1: हाँ, वो तो भाई देखो पहले लोग अपने नियम संयम से रहत रहे, अपन
0: हाँ
1: समय का उनका सदुपयोग करत रहे तब तो स्वस्थ रहे। आज के लोगन के देखो चश्मा पहले लग जाए, दांत पहले टूट जाए, और
0: हाँ
1: जौन बा तरह तरह की परेशानी आवत है। पहले के लोग देखो जौन बा चना चबाई डालत रहे, बुढ़वा हो जात रहे,
0: बिल्कुल
1: अब तो
0: भैया,
1: पता चल रहा है दांत जौन बा टूट गया, दूठों में कैप लगा है, वो
0: भाई देखो
1: डॉक्टर
0: तब
1: लगावत
0: के
1: है।
0: टाइम तेरे और अब के समय में देखो भैया कितना परिवर्तन आ चुका है, तब के लोग देखो बूढ़े भी रहे चना तो आप चबा एक बात को और लोगन के जीवन भी लंबा रहते रहे,
1: हाँ
0: तो
1: भाई देखो उनका नियम सही
0: देखो
1: अलग
0: नियम
1: रहा।
0: सही रहे और सब खुद भाई खुद भी उठत रहे सवेरे और लड़का बच्चन जो भी घर परिवार में रहते हैं कि सवेरे के जो दिनचर्या वाले काम काज रहे वो 4-5 बजे के बीच में हो ही जाते रहे।
1: चलो ठीक है, अगर बीमारी जारी हो ही गई भैया, देखो हो ही नहीं चाहिए, अगर कोनो तरीके से भगवान रूठे ना हो ही गई तो सरकार देखो अपन खड़ी रहा करत है अपने साथे में,
0: हाँ
1: कहा करत है कि वो आयुष्मान कार्ड जो ना ही बनत है वो
0: हाँ
1: आयुष्मान कार्ड के लिए जोन बा आप जाए के बनवा लो जल्दी ते, और बनवाई के जौन बा अगर कौनो भगवान न करें कि भाई बीमारियां जारी हो और
0: भैया
1: आइए तो कस फायदा जरूर उठा।
0: बिल्कुल भैया, देखो यू आयुष्मान कार्ड जब ते बन गया है हम तो लोगन के बीच में है देखो बैठा करी थे और सब

0: चर्चा बात भी कीन करी थी। तो इमा देखो भैया, ये जब ते कार्ड बन गया है तब ते लोग बहुत खुश हुई गए हैं। देखो 5 लाख तो एक तो रुपया मिला थे, पहले बीमारी अजारी अगर आ जाते रहे तो जैसे मानो कि पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत संकट आएगा है।
1: हाँ,
0: तो वही का कैसे वो करे, व्यक्ति बहुत घबरा जाते रहे।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो 5 लाख रुपया तक का उनका इलाज हो था, रुपया ना मिले तो यू ध्यान ना रखा तो अच्छा। चलो देखो एक चीज और है अपने गांवन में ना, अब देखो जो उन सबके हाथ में बड़का वाला शीशा वाला मोबाइल है, ऐसे ऐसे कई गाँवरी देखा कर रहती है वो अपने गाँवन में, अब देखो सबके पास हो गया। हम देखा थे वो बैठ के ना सब पैसा वाला जोन काम पहले बैंक तरे जाते रहे, और हमारे पापा तो जाते है ना, वो जोन बा ऐसे झोरा दबाए रहा कर रही कांखे में तो उन्होंने ले ले। लेकिन हम सिखाए दे, हम कहे नहीं बापा अब ऐसी मोबाइल से पैसा ले लो, तू कहते हमें चोर और तो ना लागे, हम कहे नहीं लागे तो लेकिन सावधानी से। तो डिजिटल बैंकिंग अपने गाँव में अब खूब हो लागे।
0: बिल्कुल भैया हो लागे हो, तो यही तरह जुड़ी भाई देखो अपने पंचन अरे बतकही माँ को नई चीज देखो लेके आवा करा जावा करा थे। तो अपनी बतकही माँ एक वार्ता है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल भुगतान जी के वार्ता कर रहे हैं यशोवर्धन तिवारी जी। तो भैया आओ ये वार्ता का सुना जाए और समझा जाए।
1: बिल्कुल।
2: तेजी से डिजिटल नवाचार से प्रेरित दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी आर्थिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य सहित अनेक क्षेत्रों के लिए आधारशिला बन गई है। बैंकिंग का क्षेत्र भी इसमें प्रमुखता से शामिल है। डिजिटल भुगतान प्रणाली इसका महत्वपूर्ण घटक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है। डिजिटल भुगतान के अंतर्गत एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से धनराशि को भेजा जाता है। इसके लिए मोबाइल फोन, POS टर्मिनल या कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक लेन देन के विपरीत इसमें नकद धनराशि का आदान प्रदान नहीं किया जाता। डिजिटल भुगतान के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें एकीकृत भुगतान इंटरफेस अर्थात UPI, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम के अलावा UPI 123 पे, UPI लाइट, रुपे तथा डेबिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवाएं अर्थात IMPS और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली शामिल हैं। भारत ने हाल ही में डिजिटल लेन देन में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, खास तौर पर UPI की सफलता के कारण। 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया UPI 10 वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। 1 दशक से अधिक के संचालन में UPI ने असाधारण विस्तार का प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में मात्र 2000 करोड़ लेन देन की संख्या वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई। यह लेन देन की मात्रा में लगभग 12,000 गुना की बढ़ोतरी दर्शाती है। इसी के साथ साथ लेन देन की कीमत जो वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए थी, वह वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गई। लेन देन के मूल्य में यह 4,000 गुना से अधिक की बढ़ोतरी है। इस सफलता में जैम ट्रिनिटी अर्थात जनधन खातों, आधार तथा मोबाइल फोन की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पूरे देश में 46 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इन खातों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का वित्तीय लाभ जरूरतमंद तक सीधे पहुंचाया जाना संभव हुआ। आधार और मोबाइल फोन जैम ट्रिनिटी के अन्य 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। लगभग सभी वयस्क भारतीयों के पास आधार के रूप में एक बायोमेट्रिक पहचान संख्या उपलब्ध है। इसी के साथ मोबाइल फोन की पहुंच में भी भारी विस्तार हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात DBT ने सब्सिडी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की वित्तीय सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। यह व्यवस्था डिजिटल भुगतान विधियों को अपनाए जाने के एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण

0: रेगुलेटेड इलाकों में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ा है। भारत की ग्रामीण महिलाएं अब डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। यूपीआई के जरिए वे न केवल लेन देन कर रही हैं बल्कि नए निवेश विकल्पों की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। बैंक खाते को खुद से संभालना हो या फिर घर के लिए ज़रूरी बचत हो, अधिकतर वित्तीय फैसले महिलाएं स्वयं कर रही हैं। विमेन फाइनेंशियल इंडेक्स 2026 सर्वे के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में 38% महिलाएं हर हफ्ते कम से कम एक बार यूपीआई का इस्तेमाल कर रही हैं, जो डिजिटल भुगतान को अपनाने में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। सर्वे के अनुसार 71% महिलाएं अब अपना बैंक खाता खुद ही संचालित करती हैं, जिनमें से अधिकतर की उम्र 18 से 40 साल के बीच है। यह महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और वित्तीय समझ को दिखाता है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4,49,795 बैंकिंग केंद्र उपलब्ध हैं। इसमें 20,952 बैंक शाखाएं, 4,09,652 बैंक मित्र और बीसी सखी तथा 19,191 एटीएम शामिल हैं। इनके माध्यम से महानगरों से लेकर 98,047 राजस्व ग्रामों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। औसतन एक बैंकिंग केंद्र प्रति 0.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य की सभी 57,695 ग्राम पंचायतों में 2,33,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात CSC संचालित हैं। इनके माध्यम से अन्य सेवाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग डिजिटल भुगतान करने में सक्षम हो रहे हैं। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए बीसी सखी योजना लागू की गई है। अब तक बीसी सखियों द्वारा 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया है। कमीशन के रूप में इन्होंने 109 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश कमाया है। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य विद्युत सखी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। उपभोक्ताओं के बिजली के बिल डिजिटली जमा कराते हुए इन महिलाओं ने 2,867 करोड़ रुपए का कार्य किया है। ब्रॉडबैंड आज की आवश्यकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल भुगतान की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इंटरनेट की स्पीड जितनी तेज होगी, विकास की गति भी उतनी ही तेज बनेगी। डिजिटल विभाजन विशेष रूप से ग्रामीण भारत में एक गंभीर चुनौती थी। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने भारत नेट परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। संचार मंत्रालय की यह पहल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। भारत नेट केवल बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, यह वास्तव में डिजिटल राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा की रीढ़ है। भारत नेट ने ग्रामीण भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है और कई तरीकों से सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दिया है। गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तथा ग्राम सचिवालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुँचाने के लिए भारत नेट के साथ साथ निजी ऑपरेटर्स का सहयोग भी लिया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। यह परियोजना डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंडिया अभियान को गति देगी। परियोजना के अंतर्गत राज्य में 20 लाख से अधिक परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा प्रथम चरण में 8,000 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर तैयार करने का लक्ष्य है। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्थानीय युवा अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित एवं संचालित करेंगे। इससे वे डिजिटल उद्यमी बनकर ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देंगे। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की संभावना रखती है। यह व्यवस्था अधिक समावेशी और कनेक्टेड भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल माध्यम से बढ़ रहा लेन देन ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक शुभ संकेत है।
1: बिल्कुल बहनी, देखो जौन बा शुभ संकेत है कि देखो हम पंच जौन रुपया पैसा लेके चलत रहे, डर लागत रहा, अब डिजिटल के माध्यम से ऐसा ना रहा।
2: बिल्कुल तो भैया, अब जहाँ पर
1: निश्चिंत हो गए।
2: हाँ देखो, निश्चिंत हो गए और जब जहाँ पर जितनी जरूरत होते हुए पर

0: रास्ता निकल सकते हो। अब भैया देखो, अपने झोरम बांध के चले की जरूरत नहीं है।
1: हाँ सही बात है कि देखो विकास तो होता है। उस जौन बा इतनी अच्छी जानकारी के लिए यशोवर्धन तिवारी भैया के बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: अब बनी देखो जौन बा आम यह समय खूब आ गया है, विशेष करके
0: हाँ
1: देखो
0: भैया
1: जहाँ
0: देखो,
1: देखो वहीं दशा
0: आम आ गए
1: है, तो
0: अपने
1: खूब
0: बागन
1: खाओ।
0: में है, रौनक
1: हाँ
0: छा गए
1: अब
0: हैं। वो
1: खूब
0: आम का
1: खिलाओ
0: सीजन चला
1: हम सब पंच भाई इनके। तो बहनी देखो जौन बा आम से संबंधित काहे ने लोकगीत सुना जाए।
0: बिल्कुल भैया सुना जाए तो सुनो, कहरवा गीत है लक्ष्मी जोशी और नवनीत जफा जी की आवाज में, तो अब भैया इका सुना जाए।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के

रूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट ज्योतिष योग विधि एग्रीकल्चर बीसीए फार्मेसी इंजीनियरिंग कला ललित कला विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: अनुराधा बहनी।
1: हाँ भैया।
0: देखो अपन खेती पाती का हाल चाल है और यहाँ समय जौन बा खेती पाती में कहा कह रहे हो। हम तो जौन बा अपन तैयारी वारी कही के बैठे देखते हैं बदरा के तरफ।
1: बिल्कुल भैया, देखो हम पंचे का सबे जने अपने खेती पाती की तैयारी, धान लागे बरिया आ गए हैं तो अपनी नर्सरी तैयार करे हम लाग हैं सब जने।
0: अब तो हमारा तैयार हो गया है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बादर देवता कब आवे और बरसाएं। अब कब जौन बा अपन नर्सरी उपार के ले चला जाए, लगावा जाए।
1: बिल्कुल
0: अब
1: भैया,
0: भैया देखो बरखा को तो कोनो रास्ता ही नहीं दिखाता है और जौन बा इतना घाम होता है कि ट्यूबवेल तो चलाए की हिम्मत ही नहीं पड़ता है लगावा।
1: बिल्कुल भैया, देखो आज 20 जून हुई गए है और भैया सब बदरा निहार रहे हैं कि कब कोने दिन हुए जो बरसात शुरू हो और हमारे सबके धान लगब शुरू हो जाए।
0: भैया देखो हम पंच तो हैं किसान, हम पंच जौन बा अपने बादर के अपन मित्र माना करी था कि भैया जल्दी आओ बरसो, अपन खेती पाती काम शुरू हो। आओ अगर न बरसे ही तो फिर क्या होता कि हम पंचन के लेट हुआ करा, देर होता अपन काम करें।
1: बिल्कुल भैया, देखो रास्ता देखत देखत देर तो हो ही रही है लेकिन अब उम्मीद यह करी जा सके थे कि बहुत जल्दी हमका लागत है बरसात आवे वाली है। जैसा कि एक दो दिन में सुना जा रहा है कि बहुत जल्दी बारिश होने वाली है, तो भैया तुरंत तैयार रहो अपने बेड़ लगावे एक तई।
0: बेड़ तो तैयार है, महू तैयार है, खेत तैयार है, सब तैयार है। और जौन बात यू है कि दर्श हम पंचन का है कि जौन बार देखा था कि अगर जौन बार ट्यूबवेल से लगाई दे तो इतना घाम होता है ना कि ट्यूबवेल से उतना पानी अधहन हो जावत है गर्म
1: बिल्कुल
0: हो के,
1: भैया,
0: तो फिर नगद ना बेर चलत तो यही देर हम रुके ना।
1: देखो भैया ट्यूबवेल के पानी से और देखो कुदरती जो चीज आवत है, देखो भैया तो अपन एक तो माटी खेत तो सब भैया देखो एक तो तृप्त हो जाते हैं, दूसरा बात है नीचे तक पानी पहुंचत है तो देखो बढ़िया लगा वाला बढ़िया भी। और जो भैया पौधा अपन लगाए थे देखो वह पूरी तरह से बढ़िया हरियाए के हैं, बढ़िया चलत है।
0: हाँ भैया
1: और ऐसे गर्मी में अगर ट्यूबवेल तरह पानी भर के ऊपर एक तो वो सुखाए रही, दूसरा बात फिर दोबारा भरवे तो भाई देखो है तो दिक्कत।
0: और दूसर बात यू है ना कि अगर जौन बा वही खेते में लगावे चलो या जौन बा मजदूर करो तो वही अवते ना है कि भैया इतना घाम होता है ऊपर थे और खेते में कूद लगाइए भाई। अब अगेती जौन है कुछ पंच भैया हम देख रहे हैं हिम्मत कही के जेकर पास नहरिया है अगल बगल, नहरिया थे पानी या ट्यूबवेल के पानी थे तो अगेती वाला लगा दे रहे हैं अब। लेकिन जौन बा हमार तो वही हिम्मत ही नहीं पड़त है लगावे।
1: बिल्कुल भैया, देखो हम पंच खेती पाती के काम तो करबे करित रहे थे मूल, देखो एकरे साथे साथे कबो कबो कमाए धमाए के तई देखो अपन कुछ औरों काम काज करे पड़ जाते हैं, तो वही में देखो अगर खेती पाती से जुड़े हैं तो यही में एक काम एक और भी है कृषि वानिकी, जहिमा कि हम पंच अपने खेती पाती के साथे साथ पेड़ पौधा लगा सकी थे।
0: बिरवा तो देखो पुराना अपन जौन बा परंपरा रही, हम पंच पहले थे जौन बा बगीचा लगावत रहे और बगीचे में जौन बा बोई के और चीज पैदा करत रहे। लेकिन जैसे आप बता रहे हो खेती के साथ अगर वानिकी करो तो बड़ा नीक है भाई, देखो दो चीज करो और दोनों चीज के मुनाफा उठाओ।
1: बिल्कुल भैया, तो देखो जैसे पेड़ पौधा लगाए ना अपने पंचन के पास, देखो हर जगह जमीन भी रहती है, देखो पीछे कहीं कहीं देखो पीछे भी खेती मतलब अपने घर के पीछे खाली पड़ा रहा थे या अपन कोनो फुलवारी है हुआ पर यहाँ हो सकत या अपने देखो खेतन की मेड़ है तो हुआ पर भी देखो अपन पौधा लगा सके थे। तो जिमा भाई देखो अगर खेती पाती फसल में अगर कोनो नुकसान हो रहा है तो हमारे देखो पेड़ पौधा या ये सब चीजें फलन के लगा ली ना तो ये सब चीजें ते देखो मुनाफा हो सके।
0: बिल्कुल देखो तो देखा करी था बहुत पंच भैया ऐसे हैं कि अब अपने मेड़ के आरी आरी जौन बा जौन बा लगावा थी, पहले तो सफेदा लगावत रहे लेकिन अब और दूसर दूसर बिरवा लगावत थी, वो बिरवा ऊपर चला जाता है और बगली बगली थे अपन खेती करा कर थी। अब हमारे बगल तो देखो बहुत बड़ा आम का बगीचा है और एक बाद आंवला का है, तो पंच भैया जौन बा अगर बिरवा वाली काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि भाई खेती के साथ साथ अगर बागवानी करो, बागवानी के साथ साथ खेती करो तो दोनों निक होता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो बहनी देखो खरीफ के फसल में हम पंच जौन अपन तैयारी कर रहे हैं
1: हाँ
0: तो मैं जौन बा कैसे कैसे कुछ पंच भैया

0: हो ऐसा होते ना कि वो सीधे सीधे बोआई कह देवा करे थी, बेहन निकाले और ले जाए के बोआई कह देन।
1: हाँ
0: लेकिन जौन बा ओके शोधन करे चाहे हमारे पंचन के अपने माटी शोधन करे चाहे, ये सब जानकारी जौन बा अपने बैठकी में आज देखो देवाई दो।
1: बिल्कुल भैया, अपनी बैठकी में देखो भेंट वार्ता है और नई नई बढ़िया बढ़िया जानकारी भी हम पंचे लेके आवा करे थे। ऐसे देखो किसान भाई भी अपन जाने और हमहू पंचे अगर कोई चीज भूली तो भैया वही का देखो सुनत रही और समझत रही। तो अपने अपने कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता है खरीफ भूमि शोधन बीज शोधन और पौध जड़ उपचार जी के वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम, भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो भैया आओ ई जानकारी का सुना जाए और समझा जी।
0: बिल्कुल सुना जाए, खरीफ में भूमि शोधन बीज शोधन और पौध जड़
1: पौधरो
0: उपचार।
1: बिल्कुल भैया
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ में जहां आप बुआई या रुपाई करने जा रहे हैं तो भूमि शोधन बीज शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच फर्स्ट से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर सीपीएन गौतम साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो भी बीज बोया जा रहा है खरीफ में उसका एक एक दाना बीज शोधन हो, जिस खेत में बोया जा रहा है उसका भूमि शोधन हो, और पौध जड़ उपचार जहां रोपाई के पहले पौध जड़ उपचार कैसे करें किसान भाई बहन, इसके फायदे क्या क्या हैं।
3: किसान भाई और बहनों नमस्कार। भरपूर फसल उत्पादन हेतु स्वस्थ मृदा और बीज एवं पौध आवश्यक होते हैं और उनको बहुत सारी फफूंदियों जीवाणुओं विषाणुओं फाइटोप्लाज्मा सूक्ष्मजीवियों द्वारा बहुत सारे समय समय पर उनको प्रभावित करते रहते हैं। जब मिट्टी में इनको हम लगाते हैं तो मिट्टी में मौजूद ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव हर प्रकार से उनको हानि पहुंचाते हैं। जब हम भूमि उपचार बीज उपचार और पौध जड़ उपचार की बात अगर हम करते हैं तो इसके माध्यम से जो भी हमारी फसलें हैं जो भी हमारी बीज हैं जो भी हमारे पौधे हैं उनमें रोग लगने की संभावना कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
2: यानी एक सुरक्षा कवच है।
3: एक सुरक्षा कवच है और इसको कह सकते हैं कि टीकाकरण भी कहते हैं बीज उपचार कहते हैं। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो शुरू में ही वो जो हमारे मुख्य रूप से जो बीज जनित रोग हैं मृदा जनित रोग हैं इन रोगों से हम अपनी फसल को बचा पाते।
2: डॉक्टर साहब जहाँ खरीफ में मुख्य रूप से धान की बुआई करनी है या धान की रोपाई करनी है या धान की नर्सरी अभी भी डाल रहे हैं किसान भाई बहन, तो बीज शोधन कैसे करें।
3: किसान भाई इसके लिए धान में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे हम धान का झुलसा रोग की अगर हम बात करें या धान के ब्लास्ट रोग की बात करें या धान में हमारा जो है कि जीवाणु गंभारी रोग की अगर हम बात करें, तो इसके लिए भूमि शोधन के लिए 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके इसको रख देते हैं और 1 हफ्ते बाद उसको तोड़ करके दोबारा हल्का सा पानी का छींटा मार करके जूट के बोरे से ढक देते हैं। जब खेत में अंतिम जुताई के बाद अब धान का नर्सरी लगाते हैं या नर्सरी डालते हैं या पौध लगाते हैं तो उसी में पलेवाल के दौरान उसको खेत में बिखेर करके मिट्टी में मिला देते हैं, रोग हैं वो रोग नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार में एक तीर से कई शिकार जिसको कहते हैं बीज उपचार, ये बहुत ही अच्छा सस्ता एवं सुलभ तरीका है और यह इको फ्रेंडली भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसके लिए टाइकोडर्मा 10 ग्राम टाइकोडर्मा और 1 किलोग्राम बीज की दर से हम जैसे 1 एकड़ हमारा है तो 1 एकड़ में लगभग 10 किलोग्राम से 16 किलोग्राम बीज हमारा लगता है धान की सामान बुआई के लिए। 20 ग्राम टाइकोडर्मा या 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम 40 ग्राम तक भी रख लेते हैं और 20 लीटर पानी में यानी कि 40 ग्राम टाइकोडर्मा 20 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं और घोल बनाने के बाद में हम उसी पानी में टाइकोडर्मा के साथ हम धान का बीज भिगो देते हैं। भिगोने के बाद में वह हमारा धान का बीज 12 घंटे तक उसी पानी में डूबा रहता है, फिर उसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में उसको जब पानी उसका जब निथर जाता है तो उसको हम पुनः जो है कि मेन खेत में ले जाके उसकी बुआई कर लेते हैं या अगर उसको सूखा करना है तो धान का बीज समान रूप से हम पानी में भिगो देते हैं। 12 घंटा भिगोने के बाद में पानी से छान के अलग कर लेते हैं, जब पानी उसका निथर जाता है तो 10 ग्राम टाइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसके

0: पर भुरभुरा करके, हाथ में पॉलीथीन बांध के, मुंह पे कपड़े बांध करके उसको मिला देते हैं, या फिर मुख्य खेत में नर्सरी में ले आके डाल देते हैं,
1: या सीधी बुआई कर ले,
0: सीधी बुआई कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा बीज शोधन धान का। भूमि शोधन में आपने बताया कि 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, जो मित्र फफूद है, प्रति एकड़ के हिसाब से 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके उसको खिला करके और तब अंतिम जुताई के समय प्रयोग करें, ये काम सभी फसलों के लिए कर सकते हैं?
0: हाँ, ये फसल मुख्य रूप से जो भी हमारी खरीफ की जो फसलें हैं, जैसे धान है हमारा, मूंगफली है, अरहर है, ज्वार है,
1: दलहन
0: बाजरा,
1: तिलहन, सब्जियां, सबके लिए,
0: सभी के लिए उपयुक्त है और बहुत ही अच्छा है।
1: बहुत सारे भूमिगत कीट भी हैं, उनसे बचाव के लिए भूमि शोधन में कुछ खास?
0: उनके लिए हम, जैसे हमारा भूमि शोधन के लिए बिवेरिया बैसियाना है, जो खासकर हमारे मिट्टी में रहने वाले जो हमारे कीट हैं, जैसे आपका दीमक की अगर हम बात कर लूँ,
1: या भूमिगत कीट,
0: या भूमिगत कीट हमारे जैसे सफ़ेद गिटार की बात कर लूँ तो बिवेरिया बैसियाना है, हमारा ट्राइकोडर्मा है, के अलावा हमारा मेटाराइजियम है और हमारा राइजोबियम भी हमारा है, तो राइजोबियम से तो हम कल्चर कर देते हैं, जिससे दलहनी फसलों के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन खासकर जो बदलते इस समय जो उभरते हुए जो हमारे कीट फसलों में निकल के आ रहे हैं, जो भूमिगत कीट हैं, जैसे सफ़ेद गिडार है, दीमक है, तो इनके लिए बिवेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम बहुत ही मुफीद है। इसको बिल्कुल ट्राइकोडर्मा की तरह 1 एकड़ में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 100 किलोग्राम गोबर में मिला करके उसको 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं, हल्का पानी का छींटा मारते रहते हैं, अपना खेत की जब अंतिम जुताई होती है उसी दौरान मिट्टी में हम मिला देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा भूमिगत कीटों के प्रबंधन के लिए भूमि शोधन और फफूंद जनित बीमारियों के लिए भूमि शोधन। धान की बात आपने बीज शोधन कर दिया, अब जहां दलहनी और तिलहनी फसलें बोनी हैं तो वहां बीज शोधन में क्या कुछ खास है?
0: जहाँ पे जैसे जो हमारी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में तो सबसे पहले तो हर किसान भाई को राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम जैव उर्वरक भी बोलते हैं, और इससे क्या है कि जो भी, इसके अलावा जो हमारे फास्फेटिक जो हमारे फर्टिलाइजर, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो ऑलरेडी जो हम दलहनी और तिलहनी फसलों में हम जो भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं, तो जब हम राइजोबियम कल्चर और या हम फास्फेटिक कल्चर का उपयोग करने से जो मिट्टी में हमारे जो उर्वरक पड़े हुए हैं उनकी उपलब्धता को हमारी पौधों को बढ़ा देते हैं और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर पाता है।
1: लेकिन जो भी जीवाणु खादे हैं उनसे बीजोपचार के पहले फफूंद जनित बीमारियों से फफूंदी नाशक से भी तो बीज शोधन करना होगा?
0: फफूंदी नाशक से हाँ, बीज शोधन करना होगा। जैसे आपने जैसा बताया कि बिल्कुल जैविक हमारा जो उत्पाद है ट्राइकोडर्मा से कर लेते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे हमारे जो चूषक कीट हैं, जो चूषक कीट बहुत सारे हैं जो लगते हैं हमारे तरह तरह के फसलों में भी लगते हैं, तो उसके लिए हम बीजामृत का प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत से भी हम भूम का बीज का हम शोधन कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में कई सारे जैसे जो गंभीर उन फसलों में जो कि मुख्य रूप से जो बहुत ही हमारे हानिकारक रोग हैं, जैसे उकठा रोग लगता है, अरहर में उकठा रोग लग जाता है, मूँगफली में जड़ विगलन, तना विगलन, शीर्ष विगलन, ये रोग लग जाते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको भूमि उपचार के साथ साथ बीज उपचार भी करना होगा। तो भूमि उपचार हमने ट्राइकोडर्मा से कर लिया, लेकिन बीज उपचार की जब बात आती है तो बाज़ार में कई सारी हमारी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे कार्बोक्सीन प्लस थीरम जो बाज़ार में आता है, कॉम्बिनेशन आता है,
1: या कार्बेंडाजिम।
0: कार्बेंडाजिम तो मुफीद है, लेकिन जो बेहतर जो इसका परिणाम देखने को मिला है अनुसंधान के माध्यम
1: प्लस
0: कार्बोक्सीन 37.5% और थीरम 37.5% कॉम्बिनेशन दवा है। 1 किलोग्राम दलहन का बीज हो या 1 किलोग्राम मूंगफली का बीज हो, उस पे हम 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रति 20 किलोग्राम बीज की दर से अगर बीज का अगर हम शोधन करके अगर लगाते हैं, तो खासकर जो दलहनी फसलों में उकठा रोग है, तिलहनी फसलों में शीर्ष विगलन, जड़ विगलन, तना विगलन, ये जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो रोग नहीं लगते हैं और ना के बराबर लगते हैं।
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे आपने धान में ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन कराया, कोई ऐसा फफूंदी नाशक रसायन जिससे, या जीवाणु नाशक रसायन जिसका उपयोग जरूरी हो बीज शोधन के लिए?
0: बीज शोधन के लिए, इसके लिए जैसा कि हमने बताया कि एजोटे वेक्टर भी हमारा होता है, और खासकर जो हमारी धान फसलें हैं, जो तिलहनी है, मोटे अनाज हैं, हमारी सब्जियां हैं, इनके लिए जो है कि हम एजोटो वेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं अपनी भूमि में।
1: एक जीवाणु खाद है,
0: जीवाणु खाद है, जो कि प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में इसको गोबर के साथ जब हम मिलाते हैं,
1: यानी एकड़ में दो किलो

0: आप
1: आपको।
0: देखिए, हमें 2 किलो पर्याप्त होता है, और खेत की अंतिम जुताई के समय में अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो मिट्टी हमारे जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं उसको पौधों की जड़ों को सुगमता पूर्वक उपयोग में ला सकता है।
1: डॉक्टर साहब, बीज शोधन, भूमि शोधन की बात हो गई, अब पौध जड़ उपचार, जहां धान की बिहन तैयार होगी तो रोपाई के पहले क्या पौध जड़ उपचार आवश्यक है, या सब्जियों में जो खरीफ की सब्जियां हैं उनमें भी रोपाई के पहले पौध जड़ उपचार आवश्यक है?
0: पौध जड़ उपचार बहुत ही आवश्यक है, और मुझे लगता है कि पौध जड़ उपचार से बहुत सारे हमारे जो फसलों में जो लगने वाले जो हमारे मुख्य रूप से जो रोग हैं, जैसे हमारा डंपिंग आप बोलते हैं, बैंगन वगैरह की नर्सरी में लगता है, टमाटर की नर्सरी में लग जाता है, हमारे जो है कि मिर्च की नर्सरी में लग जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारा जो धान है, धान की फसल में सूत्रकृमि लग जाता है, निमेटोड लग जाता है। तो अगर हम इन सब्जियों का जड़ अगर हम उच्चारित करके, जैसे हमारा टाइकोडर्मा है, टाइकोडर्मा से भी कर सकते हैं, इसके अलावा कई सारी दवाइयाँ जैसे इमिडाक्लोरपीड है, जो कि हमारा थाइनोक्सिजाम है, जो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके, और इन जड़ों को उसमें अगर रख देते हैं 10 से 15 मिनट अपना जो है कि मुख्य खेत में लगाते हैं, तो सब्जियों में जो शोषक की हमारे कीट हैं उनका प्रकोप कम हो जाता है। धान के केस में धान में सूत्रकृमि का प्रकोप कम हो जाता है, सब्जियों में भी आप प्राय देखने को मिलता है सूत्रकृमि आजकल लग रहा है हमारी, उसको भी उसका भी प्रकोप कम हो जाता है। तो पौध जड़ उपचार बहुत ही अच्छा है, और पौधे के लिए ये बहुत ही एक रामबाण तरीका है कि हम बीमारी को पौधे में लगने से रोक पाएं और कीट को पौधे में लगने से रोक पाएं। तो इस प्रकार से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने रोग और कीटों का प्रबंधन बीज उपचार, पौध जड़ उपचार और भूमि शोधन से कर पाते हैं।
1: यानी जहाँ पौध जड़ उपचार करना है तो ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और जड़ों को कम से कम आधा घंटे तक डुबो लें,
0: आप 15 से 20 मिनट तक डुबो लेंगे तो भी अच्छा।
1: और जहाँ चूसक कीट हैं वहाँ आपने इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथग्जाम से पौध जड़ उपचार की सलाह दी,
0: आप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके उसमें पौधों को अगर 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं तो चूसक कीट का जो प्रकोप है कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 8858423073, 8858423073।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार के बारे में डॉक्टर साहब?
0: किसान भाई और बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि बीज उपचार एक तीर से कई शिकार, जिसको कहते बीज उपचार, और हमको प्राकृतिक खेती को बढ़ाना है क्योंकि हमको जीवन में सफलता पाना है। तो प्राकृतिक खेती हेतु हमको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना होगा। ट्राइकोडर्मा का मतलब है कि ट्राई करो काहे को डरना, जिसको कहते ट्राइकोडर्मा। ये बहुत ही मुफीद है, अच्छा है, किसानों उपयोगी है, वातावरण के लिए फ्रेंडली है, इसलिए ट्राइकोडर्मा का किसान भाई बहनों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अपने खेतों में रोग कीट के प्रबंधन हेतु अवश्य करें।
1: यानी जहाँ खरीफ में बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो जिस खेत में बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं उसका भूमि शोधन, और जो बीज बोने जा रहे हैं उसका बीज शोधन, और जो रोपाई करने जा रहे हैं उसका पौध जड़ उपचार अवश्य करें। डॉक्टर CPN गौतम साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अनुराधा भाई नहीं?
3: हाँ भैया।
2: देखो जौन बा, अगर जौन हम पंचापन पूरी मेहनत करे हैं,
3: हाँ?
2: तो अगर जैसे भाई भूमि शोधन कह लो, बीज शोधन कह लो,
3: हाँ?
2: और जड़ शोधन ना करो तो देखो कैसे डॉक्टर साहब बताए कि भाई देखो जड़ शोधन कह लो तो जड़ बिलगन रोग है और बहुत सारा।
3: बिल्कुल भैया, बहुत देखो बढ़िया तरीके तरह, बिल्कुल छोटी छोटी चीजन पर देखो बारीकी तरह बहुत बढ़िया बताएं कि जोनी चीजन पर यहाँ बहुत जल्दी मतलब अपन दिमाग नहीं जावा करे थे वही सब चीजन को बताए दे, तो भैया बहुत बढ़िया जानकारी दी।
2: अब देखो जानकारी तो अच्छी है, बस हाँ। जानकारी के अमल में लिया चाहिए ना। हम लोग का करा करी था कि जोन बा अपने नर्सरी से बेहन निकाले,
3: हाँ?
2: और निकाल के सीधे खेते तरह पहुंचावा देवा करी था, उकर शोधन जड़ के शोधन तो हम ना ही करत रहे,
3: हाँ?
2: लेकिन अब देखो जानकारी हो गई और दवाई भी बताए दे कौन दवाई से शोधन कर लो।
3: बिल्कुल भैया देखो यही मारे तो नई नई बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके आवाज आवा करे थे, जिमा को अगर जैसे नहीं पता है।

0: मुंह पंचे भुलाए गए हैं या जुनी चीजें नहीं पता है वे सब ये देखो अपनी बतकही के माध्यम तेरे सब चीजें आए जाएं। और जब अपने दिमाग में रही है तो भैया देखो, एक तो सब पंच भाई भी सुन रहे हैं और हम मुंह पंच सुन रहे रहन। अगर तुम भुलाए गए तो हम बता दें, देखो अपन ये सब काम खेती पाती करे पहले, देखो चर्चा पानी तो नहीं करते।
1: बिल्कुल भाई, देखो जौन बा अपन खेती होत है तो अपन खेती अच्छी होए, मजबूत होए, अपन जौन बा लागत मिले, मुनाफा 4 पैसा हो, यही कारण तो हम पंच जौन बा अपन खेती करा करी थे।
0: हाँ
1: और जौन अपने पंच भाई यहाँ है वह जल्दी जल्दी का करे थे कि नर्सरी उखाड़े उखाड़ के लई गए खेते तरे पटक दे। तो
0: बिल्कुल
1: भाई देखो जरूर करो, हम तो जौन बा यू बात सुने कि जौन बा जड़ शोधन जरूर करो, तो
0: हाँ
1: वो दवाई भी बताए। तो भाई देखो ऐसी बुवाई करो तो अपन बड़ा फायदा होता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया
1: डॉक्टर साहब लोग इतनी निक जानकारी दे, और राय साहब सुशील कुमार राय साहब तो नगर नगर जानकारी लाई नहीं आवती, तो
0: हाँ
1: को धन्यवाद ना दे सकते भैया।
0: बिल्कुल भैया दे सके थे। देखो भैया इतनी बढ़िया जानकारी दीन डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम भैया, और उनसे उतनी नीक बतकही कीन। और भैया देखो ये वार्ता का लेके हैं, ये जानकारी का लेके हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो ये दोनों जनेन का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय जो रहा एक बार सुन लें पंच भैया, खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार।
0: उपचार
1: तो बहनी देखो ये तो हो गया अपन खेती पाती की बात कही, अब कुछ गाँव नहीं सुनाए तो फिर तब आगे बात कही किया जाए।
0: तो भैया देखो, जब इतनी सब चीजें की बातें हुई रही कि अपनी खेती पाती की बात हुई रही कि सब बढ़ावक बातें हुई रही, तो अपने विकास के भी गांव घर के विकास के भी हम पंचे बात की ने, तो यश जुड़ा हुआ विकास गीत सुनाई रही हैं। स्वर है राजेश कुमार गौतम व साथी, तो भैया आओ इका सुना जाए।

0: चलो बहनी, बड़ा नीक राजेश गौतम और उनका साथी भैया लोग गौनई सुनाया। देखो कितना संदेश रहा गौनई में।
1: हाँ।
0: कि जौन बा भैया अपन घर द्वार और उस खेती गृहस्थी सब संहारो और साधारण जीवन जियो।
1: बिल्कुल।
0: अब देखो दूसर बात यू है कि जौन बा मौसम आप लेके बैठी हो तो जल्दी ते मौसम की जानकारी बता दो और हम देख ले कि बरखा उरखा हो कुछ बता रहे हो कि ना। हम तो देख रहे हैं कि जल्दी ते कुछ बताओ कि बरखा उरखा हो।
1: बिल्कुल भैया, बरखा एक तो इंतजार है तो वही मारे तो मौसम पहले पकड़े बैठी हैं तो बताए रही हैं। भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार आवे वाले अगले 7 दिनन का वर्षा पूर्वानुमान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 तारीख अर्थात आज से लेके 26 तारीख तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। 21 से लेके 25 तारीख तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 26 तारीख का पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूं कहूं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोनो चेतावनी नहीं है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक कुछ स्थानों पर लू चले के संभावना है। तो भैया यू रहा मौसम का हाल।
0: बिल्कुल, तो हमारे कहा कि यू मतलब है कि कहूँ बरखा करना है बताओ, थोर को बताओ कि लू चले तो चलो ठीक है।
1: हाँ।
0: लेकिन गरज चमक के साथ जौन बौछारे पड़े की संभावना है, बारिश ज्यादा तेज ना हो संभावना है।
1: हाँ।
0: तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जौन बा अपन खेती पाती करत रहो, देखत रहो और भाई देखो अपन तैयारी करत रहो।
1: बिल्कुल भैया।
0: और हम पंच देखो घड़ी से बंधे हैं, समय से बंधे हैं, तो पंच भाइयों से लीन जाए विदा।
1: जय हिंद, हिंद।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है, शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित

0: किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
2: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह, 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी

0: राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।

0: नमस्कार, विज्ञान तकनीक और पर्यावरण से जुड़े विज्ञान जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। आज के इस अंक में हम जानेंगे विज्ञान तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे क्या है आकाशीय बिजली का सच विषय पर भेंट वार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
1: भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी लंबी दूरी के स्वदेशी कॉमिकेज वन वे अटैक ड्रोन विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ये ड्रोन भारतीय उद्योग के सहयोग से तैयार किए जाएंगे। वायुसेना ने वन वे अटैक अनमैंड एरियल सिस्टम के लिए भारतीय कंपनियों के चयन हेतु सीमित टेंडर जारी किया है। ये कॉमिकेज ड्रोन परियोजना तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर स्थित 5 बेस रिपेयर डिपो द्वारा संभाली जाएगी, जिसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के मुख्य इंस्ट्रूमेंट विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ से मिले डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे ठोस सबूत खोजे हैं जिनसे पता चलता है कि सूरज का बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना उसकी दिखाई देने वाली सतह से सैकड़ों गुना ज्यादा गर्म कैसे हो जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से खगोलविदों को उलझन में डाल रखा था। शोध दल के अनुसार कोरोना को गर्म करने के लिए मुख्य रूप से सूर्य के वायुमंडल में उलझे हुए चुंबकीय क्षेत्रों का लगातार आपस में जुड़ना और फिर से जुड़ना यानी रिकनेक्शन इसके लिए जिम्मेदार है। ये स्थानीय चुंबकीय क्रियाएं सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन जैसी जबरदस्त सौर घटनाओं के दौरान खर्च हुई भारी मात्रा में ऊर्जा की लगातार भरपाई करती रहती हैं। भारतीय मूल के फिजिशियन और नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अपने जीवन के पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर लगभग 8 महीने यानी 240 दिन का लंबा समय बिताएंगे। ये मिशन मंगलवार 14 जुलाई 2026 को कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा। अनिल मेनन और उनका दल वसंत 2027 तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा। इस दौरान वे कई ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जो भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे।
0: और अब बात आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग की। मानसून का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि यह सिर्फ गर्मी से राहत ही नहीं दिलाता बल्कि आज भी यह भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। मानसून के आते ही आसमान में बादलों की एक ऐसी हलचल शुरू होती है जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग की। अक्सर हम और आप इसे प्रकृति का प्रकोप मान लेते हैं लेकिन विज्ञान की नजर में यह एक अद्भुत विद्युत प्रक्रिया यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है। आज के कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह बिजली आखिर बनती कैसे है और इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखें। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग के बारे में बचाव हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकारें क्या कुछ खास कर रही हैं। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ स्थित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक सैनी जी। स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद
0: जी। तो जैसा मैंने अभी बताया कि लाइटनिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले यही बताएं कि आकाशीय बिजली होती क्या है।
2: जी, आकाशीय बिजली प्राय हम देखते हैं कि जब गरज के साथ बादल बरसते हैं और ये प्री मानसून सीजन में या जब जल्दी मानसून आता है या उसके साथ साथ जब तूफान वाली हवाएं चलती हैं तो उस दौरान प्राय हम देखते हैं कि आकाश से धरती की तरफ बिजली कड़कती हुई आती है। ये बिजली प्राय जब बादलों के बीच में गड़गड़ाहट होती है और उन बादलों में

0: जो बादल बने होते हैं उनमें पानी की बूंदें और बर्फ और उसके अलावा जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, जब इनमें आपस में घर्षण पैदा होता है तो बिजली उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। उस विद्युत आवेश के कारण जो बादल हैं उनमें ऊपरी भाग में पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक चार्ज पैदा होता है और निचले भाग में नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। और इन्हीं के कारण जब धरती पर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है और जब ये घर्षण इतना अधिक हो जाता है कि बादलों के और धरती के बीच का जो विद्युत आवेश है वो काफी ज्यादा अंतर आ जाता है, तो वो बिजली धरती की तरफ कड़कड़ाहट के साथ फैलती है या धरती पे आती है, जिसके कारण प्राय हमें जानमाल की हानि भी होती है और इसके कारण काफी नुकसान भी होते हैं, लेकिन इससे बचाव हो सकता है।
1: जी, तो आखिर जो बादल से बिजली जो बनती है
0: जी,
1: उसका अगर हम लोग वोल्टेज में मापने की कोशिश करें तो कितने वोल्ट आता होगा उसमें
0: जी, विद्युत आवेश? वो बहुत ही ज्यादा विद्युत आवेशित होती है क्योंकि इसके अंदर बादलों के और धरती के आवेश में बहुत अधिक अंतर होने के कारण ही ये बिजली धरती की तरफ आती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट से लेकर के 100 करोड़ वोल्ट तक का आवेश हो सकता है वोल्ट के रूप में अगर देखा जाए, और एम्पियर्स में अगर देखें तो हम देखेंगे कि 10,000 से 2 लाख एम्पियर तक। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसमें जो तापमान पैदा होता है
1: जी,
0: वो बहुत ही अधिक होता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि सूरज की धरती पर जो तापमान है वो करीब 550 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है और इस आकाशीय बिजली के कारण जो तापमान उत्पन्न होता है वो करीब 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, मतलब उससे भी 6 गुना
1: जी,
0: अधिक,
1: तो बहुत ज्यादा
0: अंतर होता है। लेकिन उससे इतना घबराने की इसलिए नहीं आवश्यकता होती क्योंकि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही ये आकाशीय बिजली धरती पर आती है, इससे बचाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए सजग और जागरूक रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और बाद में गड़गड़ाहट की आवाज आती है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो इसके पीछे का वैज्ञानिक वजह क्या होती है?
0: जी, दोनों चीजें अगर हम इसको देखेंगे कि कड़कड़ाहट के साथ जो उसकी गरज है वो दोनों चीजें एक ही साथ उत्पन्न होती है, लेकिन जो विद्युत जो गति है वो करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति है और ध्वनि की गति करीब 340-343 के करीब मीटर प्रति सेकंड की। तो आप इसको अगर अंदाजा लगाइए कि उन दोनों में कितना अधिक अंतर है। इसी कारण से हम धरती पर पहले बिजली को देख पाते हैं क्योंकि उसकी गति बहुत अधिक है और आवाज की ध्वनि की जो गति है वो बहुत कम होने के कारण उसको हम थोड़ी देर से सुन पाते हैं, लेकिन दोनों घटनाएं एक ही साथ होती
1: है। जी, तो क्या हर चमकने वाली जो बिजली उत्पन्न होती है आकाश में, क्या हर बिजली खतरनाक होती है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। कि प्राय हम अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्राय दो प्रकार की बिजलियां हैं। एक शीट, जिसको हम बोलते हैं शीट लाइटनिंग, जो आपने कभी कभी देखा होगा मानसून सीजन में जब तूफान वगैरह आते हैं तो आकाश में एक रोशनी सी रहती है, हर रोशनी जमीन तक नहीं आती, तो इनको हम शीट लाइटनिंग कहते हैं, जो बादलों के बीच में या दो बादलों के बीच में भी होती, लेकिन ये धरती तक नहीं आती है इसलिए ये नुकसानदायक नहीं है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, जब ये बिजली का आवेश बहुत अधिक हो जाता है तो फॉर्क लाइटनिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम जो धरती तक आती है आप उसमें प्राय देखते होंगे कि बहुत जैसे पेड़ों की शाखाएं हैं उस तरीके की शाखाएं निकलती हैं, तो उसको हम फॉर्क लाइटनिंग बोलते हैं और यही धरती तक आती है और यही जब किसी चीज के ऊपर गिरती है तो अत्यधिक आवेश और तापमान के कारण वो नुकसान पैदा कर।
1: जी, तो आकाशीय बिजली सबसे ज्यादा किसके और आकर्षित होती है, पेड़ पौधे या?
0: जी, ऐसे कोई भी चीज जहां से उसको कंडक्टर मिलते हैं जैसे पेड़ पौधों के, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी खुले में खड़े होना, पेड़ों के नीचे खड़े होना ये नुकसानदायक है। ऐसी अगर आप किसी छत वाली बिल्डिंग के नीचे आप जाते हैं तो वहां पर उस बिल्डिंग के माध्यम से या ऐसी कोई भी मेटलिक चीज है जिसके नीचे आप खड़े हैं सुरक्षित हो, तो उसके माध्यम से वो जमीन के अंदर उसका प्रवाह हो जाता है जिसके कारण आपको नुकसान नहीं होगा
1: जी।
0: तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है और इसके लिए जागरूकता अभियान वगैरह भी चलाए जा रहे हैं।
1: जी, जब आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग इतना खतरनाक है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ खास कर रही है ताकि आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि को कम किया जा सके?
0: जी, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि प्रदेश सरकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसमें बचाव के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। जैसे इनकी अभी हम लोग

0: इसरो IMD या उसको मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में देख सकते हैं, एवं अन्य वैज्ञानिक जो प्रतिष्ठान है उनके साथ मिलकर अर्ली, जिससे कि हम उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम एक डेवलप किया जा रहा है। और अभी आपने अगर देखा होगा तो मोबाइल एप्लीकेशंस में आपके पास में एक अलर्ट्स आ रहे हैं, तो उन अलर्ट्स के द्वारा भी लोगों को ये दिया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में कब और कितने बड़े एरिया में लाइटनिंग का या गरज के साथ तूफान का, इस तरीके की सारी चीजों का हम पहले से ज्ञान दे रहे हैं। लोगों को ये भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि लाइटनिंग के क्षेत्र में किस किस तरीके से उसके बचाव करने चाहिए, कहाँ उनको पहुंचना चाहिए अगर आपके क्षेत्र में लाइटनिंग आ रही है, बाहर खुले में ना निकले, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे बिजली के उपकरण जिनमें लाइट जो कनेक्शंस वायर्ड हैं उनको या तो हमें वायर हटा देना चाहिए या उनका उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसे समय में,
1: यानी प्लग से निकाल दें।
0: बिल्कुल, उनको प्लग से निकाल दें जिससे कि उपकरणों का भी नुकसान ना हो और आपके घर के भी अंदर उसका प्रकोप ना आए। इसके अलावा जैसे अब भारत सरकार के मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा एक दामिनी ऐप चलाया जा रहा है जिससे आपके क्षेत्र में कहाँ पर लाइटनिंग का इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले समय में या अगले 2-3 घंटों में, उसका भी अलर्ट जारी किया जाता है जिससे आप खुद भी उससे ऐप से जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कब लाइटनिंग और कितने बड़े क्षेत्र में होने वाली है।
1: जी, तो क्या कोई ऐसा खास मौसम या भौगोलिक स्थितियां भी हैं क्या जो बताते हैं कि इस क्षेत्र में ही गिर सकती हैं या इस मौसम में ही हो सकता है ऐसा
0: बिल्कुल,
1: लाइटनिंग?
0: जनरली जो इस तरीके के हैं या तो तूफान वाले समय में जब बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला हो उनमें इस तरीके के काम होने की संभावना ज्यादा होती है, या जब मानसून आने वाला है जैसे अभी का समय है तो इस समय अगर कोई भी बारिश वगैरह होती है तो लाइटनिंग की ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब धरती का तापमान इस समय अधिक रहता है, और अगर आप देखेंगे तो यूपी के क्षेत्र में जैसे बुंदेलखंड एरिया है या सोनभद्र मिर्जापुर वाले एरिया हैं, इन एरियाज में यूपी के क्षेत्र में लाइटनिंग की घटनाएं ज्यादा हैं।
1: जी
0: और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी 100-150 प्रति वर्ष की लाइटनिंग के कारण मृत्यु दर अभी भी यूपी में बनी हुई है, जिसको काफी हद तक कम किया गया है पहले से और आगे भी इसको कम करके बिना मृत्यु की लाइटनिंग के सीजन्स को प्राप्त करने की कोशिश है सरकार की।
1: जी, तो क्या कुछ स्पेशल प्रयास किए जा रहे हैं?
0: इसके लिए अभी इसरो चेयरमैन जब यहाँ आए थे तो सीएम साहब से मुलाकात के बाद में सीएम साहब ने उनसे इसरो का सहयोग मांगा है इसके कार्य के लिए, और इसरो और मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा इसमें संयुक्त रूप से इसके बचाव के उपाय, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जिससे हमें पहले से मालूम हो और इसके क्षेत्र को हम मिनिमाइज कर पाएं जिससे लोगों को पहले से इसके बारे में जानकारी दी जा सके, और साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि लोगों को ये मालूम हो कि हमें अगर अलर्ट्स आ रहे हैं तो क्या करना है और अगर हमने कभी इस तरीके का मौसम हमें दिखाई देता है तो हमें क्या क्या बचाव करने हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में उनको जानकारियां दी जा रही हैं।
1: जी, तो क्या बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल फोन टीवी का इस्तेमाल करना सुरक्षित
0: देखिए
1: है?
0: मोबाइल फोन को इस्तेमाल किया जाना सुरक्षित है क्योंकि इसमें वायर, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया, जो चीजें अब टीवी है, टीवी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपको वायर्ड आ रही है, तो वायर्ड जहां पर भी होगा उसका इस्तेमाल करना नुकसानदायक है, और जो जिनमें वायरलेस है जैसे मोबाइल फोन है उसमें वायर का कोई नहीं है, अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं तो वो चार्जिंग से हटा दें, लेकिन अगर सिंपल तौर पे अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नुकसानदायक नहीं है।
1: जी, और सर समाज में एक और बड़ी अफवाह है कि जिस पर बिजली गिरती है उसे छूने से दूसरे को भी करंट लग सकता है।
0: नहीं, ये मैंने आपको जैसा पहले बताया कि ये बिजली की जो घटना है ये इतने मिली सेकेंड्स के लिए होती है कि उसको छूने से उसके साथ ही उसको नुकसान पहुंचाते हुए जमीन में समाहित हो जाती है, तो इसलिए किसी व्यक्ति को छूने से आपको बिजली करंट लगने की संभावनाएं नहीं है।
1: जी बिल्कुल, तो और सर कार्यक्रम के अंत में यह जानना चाहेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए बरसात के सीजन में ताकि ये आकाशीय बिजली की घटनाओं से बचा जा सके?
0: जैसा मैंने आपको कहा कि एक तो हमें जो मौसम विज्ञान के और डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स जो यूपी सरकार की हैं उनके द्वारा समय समय पर अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं, तो आप उनके प्रति सजग रहें, उनको देखें और उनमें दिए गए आपके सुझाव जो हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। खुले में ना जाएं, खेतों में अगर पानी दिया जा रहा है या खेतों में गीला कहीं भी है चीजों, उन जगहों पे ना जाएं उस समय के दौरान, तो इस तरीके के, और किसी पक्की इमारत के नीचे खड़े हों, तो इन सब चीजों के उपायों से आप बिजली के प्रकोप से बचा जा सकते हैं।

0: लाइटनिंग के।
1: जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। प्रकृति के इस विज्ञान को समझना और मौसम के पूर्वानुमान के प्रति सतर्क रहना ही आकाशीय बिजली से बचने का एकमात्र उपाय है।
0: जी,
1: लाइटनिंग अलर्ट यानी संदेशों पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें। आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज के विज्ञान जगत कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विज्ञान के किसी और रोचक पहलू और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामे अवध। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आवाज एसपी बालासुब्रमण्यम की और फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार सानू को, फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

0: इस गीत के साथ ही शामे अवध कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिए।
1: हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में हम यह पाते हैं कि जब कोई बड़ा हमें आशीर्वाद देता है तो यही कहता आयुष्मान भव। यह आयुष्मान भव की परंपरा हमारी पुरातन परंपरा में से एक है जो आज तक चली आ रही है। गुरुओं द्वारा देवी देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं तब भी यही अपेक्षा करते हैं आयुष्मान भव का हमें आशीर्वाद मिले। और इसी आयुष शब्द से जो हमारे ऋषि महर्षि प्रतिपादित किए हैं एक स्वस्थ रहने की कला और स्वस्थ रहने की उपायों को जड़ी बूटियों के माध्यम से या उनके निकले हुए अर्क से हमें प्राप्त होते रहे हैं और हम दीर्घायु होने के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय भी अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। और दयालु जी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे मंत्री के रूप में, उससे पीछे की थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री धारक हैं बॉटनी में। इस पीएचडी बॉटनी करते समय भी आपने आयुष के क्षेत्र में यानी आयुर्वेद के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें काफी कुछ कार्य किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के साथ साथ आप शिक्षा को प्रगति का मूल मानते हैं। शिक्षाविद के रूप में आपकी जो पहचान है उसे भी हम लोग बखूबी जानते समझते हैं। इसी बीच स्वागत करते हैं मंत्री साहब आपका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे श्रोताओं के लिए कि आज हमारे बीच हैं, आपके शब्दों आपकी वाणी से हम दो चार होने की कोशिश के क्रम में आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आयुष की अपने प्रदेश में।
2: सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका नारा है विरासत भी विकास भी।
1: जी,
2: आयुर्वेद हमारी विरासत है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आयुष की जितनी भी विधाएं हैं ये सब बिखरे हुए थे। बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्होंने आयुष के रूप में एक माला पिरोने का काम किया। 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है इस देश की, कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जन्मस्थली है भगवान लोगों की। सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में, और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग दिवस को मान्यता प्रदान किया, और

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग दिवस को मान्यता प्रदान किया और आज भारत की एक उस विधा को योगियों की ऋषियों की महर्षियों की मुनियों की साधकों की तपस्वियों की इस विधा को जिसको कहते थे योग योगियों की चीज है उसको सारी दुनिया ने स्वीकार किया। हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और उत्तर प्रदेश का तो गौरव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी योगी हैं। तो इन 12 और 9 वर्षों की यात्रा प्रदेश के लिए हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि एक सब कुछ बिखरा था। हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो है लोग काम करते थे, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनने के बाद से हमारे भी सपनों को पंख लगे और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3959 से ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास है, 2111 अस्पताल हमारे आयुर्वेद के हैं जिसमें 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के। और मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के जो पुराने अस्पताल हैं। जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था, अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो, तो वह जो परिवर्तन, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं, तब फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा, तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं। 8 हमारे अस्पताल जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन नए परिसर में बना चुके हैं और जगह की अपने मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं
1: वैसे
0: हम अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती थी।
1: इस विश्वविद्यालय से क्या जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग?
0: 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ हो गया,
1: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह से,
0: सब एक जगह हो गया। और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा, तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका।
1: जब आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपने पहले बता दिया और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहाँ रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने के, कहने को तो सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
0: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोलते, इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और उद्घाटन कर दिया, एक गोवा में बन चुका है। तो आयुर्वेद के नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना लगातार हो रही है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कलकत्ता में है, उसकी सब ब्रांच दिल्ली में खुल गई, उसकी एक सब ब्रांच

0: लखनऊ में खुल गई और एक केंद्रीय संस्थान आयुर्वेद का, वो पहले से झांसी में काम कर रहा है आयुर्वेद का। हम सबका प्रयास ये है, अखिल भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, वो गाजियाबाद ने बन के काम करना शुरू कर दिया। तो हर विधा के शोध पर लगातार काम हो रहा है और शोध के बगैर दुनिया आजकल प्रमाण चाहती है। लेकिन जिस विधा का जन्म वेदों से हुआ हो, अथर्ववेद की उपशाखा मानते हैं आयुर्वेद को, हम महर्षि सुश्रुत से दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का। तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है, महर्षि सुश्रुत को। वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनकी शरीर ही प्रयोगशाला थी। समाज पे काम किया वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद। सिद्ध हमारा एक विषय है जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है। तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध
1: जी।
0: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने, वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की, वर्षों की साधना। योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन, ध्यान, इन सब का वो सहारा लेते थे, प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मान्यता मिली है।
1: और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव-गांव में बने हुए, उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से भी अलग से है?
0: तो पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून। और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वारिप्पा का जन्म माना जाता है, जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, इसको स्वारिप्पा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वारिप्पा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिलके समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है। और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। अब जैसे सप्ताह व्यापी, इसके पहले हम लोग एक महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना है, योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा, लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा। क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं,
0: ये हजारों साल की विरासत है,
1: इसीलिए तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया।
1: अब काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे

0: साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं, और लोगों से भी अपेक्षा अपने श्रोताओं से कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
1: करें, योग रहे निरोग का नारा देते।
0: बिल्कुल, आपका ये नारा पहले से भी चल रहा है, आप द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
2: सुनिए कहानी कविताएं नाटक मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी लीवर हार्ट कॉर्निया इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है बढ़ रही है जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है व्यर्थ मनुष्य डरता है एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए कबीर वाणी। कलाकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में कबीर वाणी। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म शिकारी के इस गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना फारूक कैसर के और संगीत जीएस कोहली का है।

0: विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम ससुराल, शब्द रचना शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी

0: ब्लैक कैट फिल्म के लिए यह आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत जानिसार अख्तर का और संगीत एन दत्ता का। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर

0: से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन रु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में

0: किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
5: हम अपने सेमीकंडक्टर

0: मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल है और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती है।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2020

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

प्रस्तुति शेष में नमन, जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने।

गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आसम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना गा
0: और दूसरा गाना था

1962 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन दिग दिग।
0: वी शांताराम ने सन 1964

0: क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही।

0: स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरे भैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरे भैया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है, लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: सूरज
2: इतना

सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक कर्महे।
2: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है, डॉक्टर विवेक कर्महे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Kar-mahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
2: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh,

0: the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek कर रहे अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्वित रचना तीन ताल में है जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
0: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल हैं कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।

बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: nation while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, that is NTA, has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. At least 5 devotees lost their lives and 40 others were injured today after a portion of the temple structure collapsed in Manvat Taluka of Maharashtra's Parbhani district. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue operations were launched immediately following the collapse, with 20 to 25 people rescued from the debris. Around 15 injured devotees are currently undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Phadnavis expressed deep sorrow over the tragedy and announced financial assistance of Rs 5 lakh each for the families of those who lost their lives in the accident. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai today. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing 1 wicket. India Meteorological Department has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं. हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए.
2: ये आकाशवाणी है. 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
3: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां. तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है. अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है. और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं. इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं. सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम.
4: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
5: बहुत बहुत धन्यवाद.
3: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी. जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं.
4: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है. और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है. अगर महिला सशक्त है, अगर महिला

0: समृद्ध, समृद्ध मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं। अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशन मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी,
0: तो इस तरह की जो योजना। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है, तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट सशक्तिकरण का
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब

0: अब देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजन जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की 50,000 और बढ़ने वाली हैं। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो हैं वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो

0: बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है।
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो

0: उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी, जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है, वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था, उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो

0: देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट है IIT है IIM उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर है वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती या, और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष,
0: 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही
0: हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर

0: आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको, वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए,

0: जो पैदावार हो रही है। अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई भी, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए 4 लेबर कोड आए हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है।
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें,

0: या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
1: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ। जहां मैं अभी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था। नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था। अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
0: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई।
1: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
0: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
1: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
0: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे।
1: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल को कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो खोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
0: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
0: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
0: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
2: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने

0: गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब युवा अन्नदाता और नारी उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
5: मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।